100.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी की एफएम प्रसारण सेवा का ये लखनऊ केंद्र है। आज दिन मंगलवार है। शक संवत 1948 वैशाख मास की 22वीं तिथि तदनुसार आज 12 मई 2026 है। इस समय सुबह के 5:56 होने वाले हैं। अब हमारी आज की ये सभा आरंभ होती है।

0: पुष्प सा सुगंधित मन, ओस की बूंदों का आचमन, प्रातः काल की सुमधुर बेला,
1: वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ,
0: सृष्टिकर्ता की आराधना भक्ति संगीत की साधना,
2: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है।

सुप्रभात। मन में सकारात्मक ऊर्जा और आचरण में भक्ति भाव के साथ आइए अपने आज के दिन की मंगलमयी शुरुआत करते हैं। ईश्वर वंदना से परिपूर्ण कार्यक्रम पुष्पांजलि का आरंभ हो चुका है और अपने इस मंगलमयी दिन की शुरुआत करते हैं विघ्नहर्ता श्री गणपति की वंदना के साथ।

भगवान गणेश जहां हमें बुद्धि, विवेक, सरलता और सौम्यता का आशीर्वाद देते हैं, तो वहीं भोले भंडारी यानी भगवान शिव की आराधना भी हमें जीवन में तप, त्याग, संतोष और संयम की सीख देती है। नीलकंठ हमें सिखाते हैं कि जीवन में कितनी ही परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो जाएं, बस धैर्य धारण रखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि विपदाएं भी तो हमारे जीवन चक्र का एक हिस्सा हैं।

ईश्वर आपका हमेशा जन्म जन्म का ही साथ देते हैं, हर जन्म हर पल आपके साथ रहते हैं। हम ही हैं जो ईश्वर को कभी ना कभी भूल जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं या जीवन में सब कुछ बड़ा ठीक चल रहा होता है ना, तो हम कहीं ना कहीं उस ईश्वर को याद करना या उसे धन्यवाद देना भूल ही जाते हैं। वैसे ईश्वर भक्ति के बहुत सारे स्वरूप होते हैं, और जब जीवन में भक्ति का अलग अलग स्वरूप की बात आती है तो उनमें से एक स्वरूप दान का भी होता है, सेवा का भी होता है। पर दान की जब बात आती है तो दान केवल धन का नहीं होता। किसी की जरूरत पर अगर

आपका साथ, आपका समय, आपकी हिम्मत आप उसे देते हैं तो वो भी बहुत बड़ा दान होता है और वो भी ईश्वर भक्ति के समान ही होता है। आपकी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो भी भक्ति है, और किसी के दर्द जब आप अपना समझ के बांट लेते हैं तो वो भी सच्ची ईश्वर भक्ति है। और जैसा कि मारुति नंदन ने हमें सिखाया है कि सेवा अगर आप लगातार सच्चे भाव से करते हैं तो ईश्वर तक पहुंच आपकी बड़ी ही सरल हो जाती है।

और जैसा कि मारुति नंदन ने हमें सिखाया है कि सेवा अगर आप लगातार सच्चे भाव से करते हैं तो ईश्वर तक पहुंच आपकी बड़ी ही सरल हो जाती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना, भक्ति संगीत की साधना, कार्यक्रम पुष्पांजलि।

जिस दिन जीवन में ये समझ में आ जाता है कि जो हो रहा है वो इस ईश्वर की वजह से हो रहा है, चाहे हम सफल हो रहे हैं, चाहे हम कितनी ही कामयाबी क्यों ना पा रहे हो, हमारे पास आज जो कुछ भी है, स्थिति परिस्थिति जैसी भी है, वो उस ईश्वर की कृपा से है। तो यकीन मानिए, ये सच जब आप अपना लेते हैं अपने जीवन में तो हर भ्रम दूर हो जाता है और जीवन से अहंकार दूर हो जाता है। क्योंकि जब हम भगवान को अपना साथी मान लेते हैं तो हमारे मन में अहंकार स्वतः ही दूर हो जाता है। क्योंकि देखिए, जहां अहंकार रहता है वहां हरि नहीं रहते, और जहां हरि रहते हैं वहां अहंकार नहीं होता। जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं।

दुनिया तेरे राम हवाले, लहर लहर हरी आंच संभाले। भक्ति में शक कभी भी लेश मात्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका ईश्वर पग पग पर आपके साथ है और आपको देख रहा है। जब ये विश्वास होता है ना, तो जीवन की हर परिस्थिति को सुलझाने का, उससे निकलने का मार्ग आपको खुद ही मिल जाता है। तो बस निश्चिंत हो, पूरी ईमानदारी से अपने कर्म मार्ग पर चलते रहिए और ईश्वर को याद रखिए और यकीन मानिए कि वो ईश्वर आपके हर दिन को और आपको संभाल लेगा।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना। कार्यक्रम पुष्पांजलि।

हम सभी अपने अंतर विरोध होते हैं। हमारे अंदर अच्छाइयाँ भी होती हैं और बुराइयाँ भी, यानी अच्छी बातें भी हैं और खामियां भी, और यही हमारी कमजोरियां और शक्तियां होती हैं। ईश्वर से जुड़ाव हमें सतमार्ग को अपनी कमजोरियों पर विजय पाने की हिम्मत देता है, तो वहीं अपनी शक्तियों को प्रबल बनाने की भी ताकत देता है। तो ईश्वर भक्ति का स्वरूप कोई भी क्यों ना हो, बस

ईश्वर भक्ति सच्ची होनी चाहिए, आपका कर्म ईमानदार रखिए और आचरण शुद्ध रखिए और राह में आगे बढ़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि वीणा वादिनी माँ सरस्वती आपको इतनी सद्बुद्धि दे कि आप हमें शतमार्ग पर चले और आपका दिन मंगलमय हो। इसी कामना के साथ आज पुष्पांजलि की इस आखिरी सरस्वती वंदना के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं।

कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्ट बीट 102.2 एफएम रेनबो से कनेक्ट हो चुके हैं आप। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

आज मंगलवार है। शक संवत 1948 की वैसाख मास की 22वीं तिथि, तदनुसार 12 मई सन 2026। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। हमारे कानपुर केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों में आप सभी का स्वागत है।

गुड मॉर्निंग कानपुर, मस्त सुबह की ताजी हवा का लुत्फ लेते हुए अपने रेडियो सेट के साथ हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आ चुके हैं आपकी सुबह को फील गुड बनाने वाला प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर। तो चाय की प्याली के साथ हो जाइए तैयार, सारी थकान भुलाकर अगले एक घंटे हमारे साथ एंजॉय करने को। वैसे आज के एफएम रेनबो कानपुर के दिन भर के प्रोग्राम से भी होने वाले हैं कुछ खास, जिन्हें आप करेंगे हमारे संग एंजॉय। किशोर दा के योडलिंग सॉन्ग्स आप एंजॉय करेंगे सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में सुबह 8:30 से। सुबह 9 बजे से रसबहार गुलजार होगा वीएफएक्स फिल्मों के साथ। विभिन्न रागों पर आधारित होगा आज का विविधा प्रोग्राम राग रंग, सुनना ना भूलिएगा सुबह 9:45 से। वृंदा रहेगी आपके साथ।

आपका फेवरेट प्रोग्राम हमनवा लेकर आएंगी वृंदा और शिप्रा सुबह 11 बजे से। और आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ खास बातें आपसे शेयर करेंगे। आज के कुछ खास दिन की इंटरनेशनल नर्स डे हम सेलिब्रेट करेंगे। यूएन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक चल रहा है 8 मई to 14 मई, उसके बारे में भी करेंगे बात। और इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ की भी होगी बात। और साथ ही साथ शेयर करेंगे एक बढ़िया सी रेसिपी, तो सुनना ना भूलिएगा सुबह 11 बजे से। दोपहर 3 बजे शिप्रा के साथ एंजॉय कीजिएगा प्रोग्राम म्यूजिक आर, और आपके पसंदीदा नगमे सुनवाएंगी शिप्रा शाम 4 बजे से आपकी पसंद प्रोग्राम में। तो सुनना न भूलिएगा आज के हमारे एफएम रेनबो कानपुर के खूबसूरत प्रोग्राम्स को। और अभी गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के सफर में वृंदा है आपके साथ, एक बढ़िया से गाने से करते हैं प्रोग्राम का आगाज़।

जी हाँ, जब हमारे लिसनर्स का प्यार और साथ मिलता है तो हमारे चेहरे खुद ब खुद खिल जाते हैं। इस खुशनुमा एहसास का सफर मुस्कुराते किस्सों संग कब 90 वर्ष का हो गया पता ही नहीं चला, तो जिंदगी को यूं ही हल्का फुल्का बनाते जाइए, रेडियो के संग मुस्कुराकर हर पल बिताते जाइए और सालों साल हमारा साथ यूं ही निभाते जाइए। जैसे कि फेमस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन का कहना है कि लिव लाइफ टू द फुलेस्ट, यू हैव टू कलर आउटसाइड द लाइंस वंस इन अ व्हाइल इफ यू वांट टू मेक योर लाइफ अ मास्टरपीस। लाफ सम एवरी डे, कीप ग्रोइंग, कीप ड्रीमिंग, कीप फॉलोइंग योर हार्ट, यानी कि जीवन को भरपूर जियो। अगर आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो कभी कभी लीक से हटकर सोचना भी जरूरी है। हर दिन थोड़ा हंसिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने सपनों को देखते रहिए और अपने दिल की सुनते रहिए। तो चलिए हम भी अपने दिल की सुनते हैं और दिल से दिल तक एक बढ़िया सा गाना पहुंचाते हैं।

गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में सोशल मीडिया की खबरें भी आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, तो क्या है सोशल मीडिया पर खास, से चलिए डालते हैं एक नजर। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया के जरिए देशवासियों से अपील की है कि जितना पॉसिबल हो वर्क फ्रॉम होम करें, एक साल तक सोना चांदी ना खरीदें, कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कम करें, मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत कम की जा सके, केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भरता कम करें और नेचुरल फार्मिंग अपनाएं, विदेशी वस्तुएं कम खरीदें और स्वदेशी अपनाएं, एक साल तक विदेश यात्रा अवॉइड करें, नेशन फर्स्ट ड्यूटी अबव कंफर्ट। तो आइए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं।

माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स हैंडल पर जानकारी दी है कि दौरीघाट औड़ीहाल ट्रेन सेवा को कल हरी झंडी दे दी गई है। और इस मेमो ट्रेन सेवा का शुभारंभ मऊ और गाजीपुर जिलों के यात्रियों की यात्रा को आसान और किफायती बनाने में भी मदद करेगा। साथ ही आपको बता दें कि कल सेहत मिशन के शुभारंभ के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कहा कि ये मिशन भारत की सेहत को बेहतर बनाने के संकल्प को दोहराएगा। ICMR इस मिशन के तहत प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर विशेष फोकस करेगा। ये थी सोशल मीडिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

वैसे दोस्तों आपको खबर है कि नहीं कि आज के दिन से कौन कौन सी खास बातें जुड़ी हुई हैं, क्या घटना घटी इतिहास में और कौन सी जानकारी आज के दिन को यादगार बना गई। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और नजर डालते हैं अतीत के आईने में। ब्लू सिटी कहे जाने वाले या सन सिटी कह लीजिए या फिर इसका ऐतिहासिक नाम ले लीजिए मारवाड़। जी हाँ, राजस्थान के जोधपुर की बात ही कुछ निराली है। अपने शाही महलों और किलों के लिए फेमस राव जोधा की ये जो सिटी है ना, इस नगरी जोधपुर का आज है स्थापना दिवस। साथ ही दोस्तों आज हम मना रहे हैं लोगों की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की बर्थ एनिवर्सरी पर इंटरनेशनल नर्सेस डे और फेमस फील्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला मरियम मिर्जा वानी की जयंती पर आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल विमेन इन मैथमेटिक्स डे।

दोस्तों, साइकिल या कार जैसे वाहनों की दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ओडोमीटर का आविष्कार, जी हाँ, आज ही के दिन हुआ था 1847 में, और ये आविष्कार किया था विलियम स्टेम्बल ने। और आज होती है भारत

0: भारतीय गुजराती भाषा के लेखक रमन लाल देसाई की जयंती और साथ ही साथ हिंदी सिनेमा के जाने माने निर्माता निर्देशक पटकथा लेखक विजय भट्ट की भी आज ही के दिन होती है जन्म जयंती। और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इंडियन बैडमिंटन नेशनल चैंपियन नंदू एम नाटेकर, इनकी जन्म जयंती भी आज ही के दिन मनाई जाती है। और 12 मई 1993 को हिंदी कविता के जाने माने कवि शमशेर बहादुर सिंह इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए थे। चुका भी हूँ नहीं मैं इस साहित्य के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 एफएम रेनबो कानपुर।
1: और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये।

वैसे दोस्तों, आज जो भी लिसनर्स अपना स्पेशल डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्हें एफएम रेनबो कानपुर फैमिली की ओर से हार्टियट कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
4: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

जी हाँ, धीरे धीरे करके हम भी पहुंच चुके हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। करते हैं रुख देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों पर। इस साल 19th मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 15th जून से 21st जून तक एनएफडीसी फिल्म्स डिवीजन कॉम्प्लेक्स मुंबई में आयोजित किए जाएंगे, जो भारतीय फिल्मों को एक नया इंटरनेशनल मंच देंगे। फोर्थ इंडियन अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 31 मई को आयोजित किया जाएगा। आईए स्पिरिट नवाचार ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भारत अफ्रीका रणनीति साझेदारी विषय पर आधारित होगा ये शिखर सम्मेलन। पंजाब में निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। 26 मई को होगी वोटिंग, 29 मई को आएगा रिजल्ट, नामांकन होंगे 13 मई से 16 मई तक। कल तमिलनाडु के 17वीं विधानसभा के पहले सत्र में सीएम सी जोसेफ विजय ने विधानसभा के सदस्य के रूप में ली शपथ। वहीं बंगाल के नए सीएम शुभेंदु अधिकारी को मिला गॉड ऑफ ऑनर। सुप्रीम कोर्ट में डेटा सिस्टम की कर दी गई है शुरुआत। सीजेआई सूर्यकांत ने लॉन्च की नई व्यवस्था और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट से जिला अदालत तक जुड़ेगा डेटा। वैश्विक संकटों के बावजूद अर्थव्यवस्था की मजबूत उड़ान। वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी दर 6.6% बढ़ने की उम्मीद। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन

ग्रामीण अधिनियम 2025 की कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी गई है और ये अधिनियम 1 जुलाई से देश भर में लागू भी हो जाएगा। कल गुजरात के वडोदरा में एक कार्यक्रम के दौरान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पाटीदार समुदाय द्वारा सरदार रत्न सरदार गौरव रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रख्यात शायर और गीतकार कैफी आजमी की साहित्यिक विरासत को सम्मान देने के लिए डाक विभाग ने उनके नाम पर विशेष कवर जारी किया है। सीबीएसई 12th का रिजल्ट आज हो सकता है घोषित। भाजपा नेता हिमांता बिस्वा सरमा आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं मौसम विभाग ने गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। ये थी देश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास खबरें। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

वैसे ऐसा कोई भी राज नहीं है, ऐसी कोई भी खबर नहीं है जो हमारे लिसनर्स से छुपी रह सके। जी हाँ, कानपुर शहर में क्या होने वाला है खास, एफएम रेनबो कानपुर है ना जानकारी देने के लिए आपके पास। तो चलिए शहर के इम्पोर्टेंट अपडेट्स पर डालते हैं एक नज़र। कानपुर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के तहत शहर भर में सफाई अभियान जारी रहने की बात कही है। नगर निगम ने शहरवासियों से सहयोग करने की भी अपेक्षा की है। कानपुर यूनिवर्सिटी CSGMU ने डिजिटल शिक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ी पहल करते हुए अपना पहला स्वदेशी AI नारद लॉन्च किया है। ये AI असिस्टेंट प्रवेश प्रक्रिया से जुड़ी हर जानकारी तुरंत उपलब्ध कराएगा। अब CSA में जल्द ही गेस्ट फैकल्टी की जगह सहायक आचार्य नियुक्त किए जाएंगे। 12 जून से शुरू होने वाली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के जरिए अब कानपुर के श्रद्धालु 7 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकेंगे। IRCTC ने कानपुर सेंट्रल को बनाया विशेष स्टॉपेज। कानपुर में 90% स्मार्ट प्रीपेड मीटर हुए पोस्टपेड। जून से SMS व्हाट्सएप पर आएगा बिजली बिल। उपभोक्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है और ये नंबर है 8287835233 और टोल फ्री नंबर भी हम आपको बता दें 1912 एंड 1800410-1912। ये थी हमारे कानपुर शहर से जुड़ी कुछ खास खबरें। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

0: आवश्यक सूचना सुनिए। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।
1: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
0: शहर की म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्टेड हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कानपुर।

वैसे दोस्तों आप भी ये नहीं मानेंगे कि कल हारता हुआ मैच दिल्ली कैपिटल्स ने जीत लिया है। जी हाँ, अब हम आपको बताने जा रहे हैं खेलों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें अपने गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम में। आपको बता दें कि आईपीएल में कल धर्मशाला के स्टेडियम में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। एशियन मुक्केबाजी अंडर 15 चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत के 6 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के साथ फाइनल का टिकट पक्का किया और वहीं 7 मुक्केबाजों को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी की मेंस ओडीआई रैंकिंग में भारतीय टीम ने एक बार फिर अपनी बादशाहत कायम रखी है। जी हां, वार्षिक अपडेट के बाद भी भारतीय टीम दुनिया की नंबर 1 ओडीआई टीम बनी हुई है और 2nd नंबर पर है न्यूजीलैंड। कानपुर शतरंज एसोसिएशन की ओर से हुई रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में जूनियर खिलाड़ियों ने दम दिखाकर जीत हासिल की है और कल कानपुर के साउथ मैदान में खेले गए इंटर एकेडमी क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में आईवीएस एकादश ने क्रिक आईटी एकादश को 3 विकेट से हराकर जीत हासिल की। गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम आप एंजॉय कर रहे हैं ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो कानपुर।

दोस्तों बताना तो हम भी चाहते हैं आपको आज के मौसम का हाल, गर्मी करेगी बेहाल या हवाएं देंगी राहत फिलहाल, तो आइए जानते हैं मौसम का हाल। चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर और भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आने वाले 5 दिनों में हल्के बादल छाए रहने के आसार हैं, लेकिन वर्षा की कोई संभावना नहीं है। पर दोस्तों, इस बदलते मौसम में रखें अपनी सेहत का ख्याल, खूब पानी पिएं, खाली पेट घर से बाहर ना निकलें, बुजुर्गों और बच्चों का रखें इस मौसम में खास ख्याल। एंड हाँ, आपके मूड का ख्याल रखने के लिए हम है ना कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट ओनली ऑन 102.2 FM रेनबो।

गुड मॉर्निंग काउंटर प्रोग्राम से अब दीजिए इजाजत, मिलूंगी आपसे 8:30 से अपने प्रोग्राम्स के साथ। और अभी थोड़ी ही देर में हम आपको लेकर चलेंगे देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे दिल्ली केंद्र।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम ऑनलाइन कक्षा

0: और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97,00,000 मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2,500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलु मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों की एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
5: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
4: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8 करोड़ 85 लाख

0: से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
2: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
3: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
1: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
4: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ। और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
1: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज परिसंपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और हुर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
5: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन

0: मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
2: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
3: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges people to save fuel and reduce use of foreign products in a bid to save forex amid West Asia crisis. Senior BJP leader Himanta Biswa Sarma to be sworn in as Chief Minister of Assam in Guwahati today. 4 ministers, 2 from BJP and 1 each from AGP and BPF to also take oath. EDRS former West Bengal Minister Sujit Basu in connection with South Damdam Municipality Recruitment Scam. Prime Minister Narendra Modi to be on a 6-day visit to UAE, Netherlands, Sweden and Norway and Italy beginning Friday. US President Donald Trump says ceasefire with Iran is at its weakest and on massive life support. And Bangladesh forms committee to probe reason behind national cricket team's withdrawal from ICC Men's T20 World Cup in India. Prime Minister Narendra Modi has urged people to save fuel and reduce the use of foreign products to save foreign exchange amid West Asia crisis. Addressing a function in Vadodara, Gujarat yesterday evening, Mr. Modi reiterated his earlier appeal to revive COVID-era methods such as work from home, online classes, virtual meetings and reduced consumption of petrol and diesel.

केएल सहगल और एसडी बर्मन जैसे दिग्गजों की आवाज को फॉलो करने वाले किशोर दा ने जिस अंदाज से अपनी गायकी को बदला उसका कोई सानी नहीं है।

अगला गाना इसी अंदाज को बयां करता अंदाज फिल्म से ही आप सभी के लिए पेश खिदमत है। किशोरदा की आवाज में शंकर जयकिशन का संगीत है और हसरत जयपुरी ने

अपने यूनिक स्टाइल से फैंस का दिल जीतने वाले किशोर साहब का अगला गाना आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक पहुंच रहा है ज्वेल थीफ फिल्म से। और ये किशोर दा की खूबसूरत आवाज भी गाना एसडी बर्मन ने संगीत से सजाया और मजरू सुल्तानपुरी ने गीत के बोल लिखे। एंजॉय कीजिए आज के सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में, वृंदा है आप सभी के साथ और हम आप सबको सुनवा रहे हैं योडलिंग सॉन्ग्स ऑफ किशोर दा।

नए जमाने की नई तस्वीर। अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें। ले आए आज ही दूरदर्शन का डीडी फ्री डिश। इसमें है आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स। इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका डीडी फ्री डिश।

सुरों की पुरानी महफिल में आप इंजॉय कर रहे हैं किशोर दा के योडलिंग सॉन्ग्स और किशोर दा की खूबसूरत आवाज में अभी आपने सॉन्ग इंजॉय किया चलती का नाम गाड़ी फिल्म से। सचिन देव बर्मन का संगीत था और गीत के बोल लिखे थे मजरू सुल्तानपुरी साहब ने। और इसके बाद अब आपको लेकर चलते हैं बॉम्बे टू गोवा, बॉम्बे टू गोवा फिल्म के गाने की ओर। तो चलिए किशोर दा की खूबसूरत आवाज में आपको सुनवाते हैं ये खूबसूरत नगमा, आर डी बर्मन का संगीत और गीत के बोल लिखे राजेंद्र किशन ने।

0: அருமான்.
1: हिंदी सिनेमा में योडलिंग को इंट्रोड्यूस करने वाले किशोरदा की आवाज़ में अगला योडलिंग सॉन्ग आप एंजॉय कीजिए मेरे जीवन साथी फिल्म से। किशोरदा की तो आवाज़ है ही, साथ ही संगीत से सजाया है फिर एक बार आरडी बर्मन साहब ने, और गीत के बोल लिखे हैं मजरूह सुल्तानपुरी साहब ने। एंजॉय कीजिए प्रोग्राम का ये आखिरी खूबसूरत नगमा।

तो दोस्तों हम भी चलते हैं सुरों की पुरानी महफिल से विदा लेते हुए अपने अगले प्रोग्राम की तरफ। VFX के रस से फिल्मों में आई बहार की होगी बात, सुनवाएंगे थोड़ी ही देर में प्रोग्राम रस बहार। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM रेनबो कानपुर। एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार पद्मश्री पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

102.2 की फ्रिक्वेंसी पर आप हैं एफएम रेनबो कानपुर के साथ एंड नाउ इट्स टाइम फॉर प्रोग्राम रस बहार। हेलो एंड वेलकम टू रस बहार। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे फिल्मों में यूज किए जाने वाले उस इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की जो फिल्मों का स्टैंडर्ड हाई कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं VFX मूवीज की। दोस्तों, पहले की फिल्मों में जो लोकेशंस हम देखते थे वो शूटिंग प्लेसेस आज भी कहीं ना कहीं देखने के लिए हम सभी एक्साइटेड रहते हैं। बट आजकल VFX के कमाल से लोकेशंस को, फाइट सीन्स को एंड ऐसे न जाने कितने हाई वैल्यू सीन्स को इमेजिनरी क्रिएट किया जाता है। और देखा जाए तो VFX यानी कि विजुअल इफेक्ट्स के इम्पैक्ट ने किन मूवीज को दिया है अलग ही रूप और कितना अलग रूप दे रहा है। और इन कुछ चुनिंदा मूवीज की आज हम करेंगे बात और किन मूवीज की कमाई को कर दिया है दोगुना। तो आज के प्रोग्राम में वृंदा लेकर आई है इंडियन सिनेमा की टॉप VFX फिल्मों को।

क्रिश 3 का ये सॉन्ग जितना पॉपुलर हुआ था उतने ही पॉपुलर हुए थे इस मूवी में यूज किए गए VFX। जी हाँ, क्रिश 3 का VFX साल 2013 में आई फिल्मों से काफी बेहतर था। फिल्म के टोटल बजट का काफी बड़ा अमाउंट VFX के सीन्स में खर्च किया गया था। और दोस्तों, इतने बड़े अमाउंट का रिजल्ट आप देख ही सकते हैं। 2012 की शुरुआत में ही शूटिंग खत्म हो गई थी, लेकिन 1 से 1.5 साल लगा था शाहरुख खान की कंपनी में इस VFX को तैयार करने में। बेस्ट VFX मूवीज में अगला नाम आता है शाहरुख खान की फैन फिल्म का, और इस फिल्म में फैन और स्टार दोनों का किरदार खुद शाहरुख खान ने ही निभाया था। वैसे एक ही पर्सन जब दो किरदार निभाएगा तो VFX अपना कमाल तो दिखाएगा ही। फैन बने शाहरुख के फेस पर जो प्रोस्टेट का यूज किया गया था वो काफी बखूबी किया गया था, और प्रोस्थेटिक का यूज करते टाइम उसमें एडवांस VFX का यूज देखने को मिला था, और इसके जरिए बॉलीवुड में पहली बार एडवांस VFX को इंट्रोड्यूस करवाया गया था।

वैसे अगली मूवी के बारे में सुनते ही आप भी उसके फैन हो जाएंगे, वैसे इनफैक्ट आप हो गए थे जब आपने ये मूवी देखी थी। अगेन एक डबल रोल वाले वीएफएक्स की कहानी हम बताने जा रहे हैं आपको। मूवी को एक लेवल पर ले गया था आमिर खान के जुड़वा भाइयों का किरदार, जिसमें चार चांद लगाए एडवांस वीएफएक्स ने, और थिएटर में मिस्टर परफेक्शनिस्ट के इस किरदार ने धूम मचा दी। वैसे मेरी इतनी सारी दी हुई हिंट से आप समझ ही गए होंगे कि दिस मूवी इज नन अदर देन धूम 3। इतने क्रिएटिव तरीके से दोनों आमिर खान को दिखाना एक अच्छे वीएफएक्स के साथ एक अच्छी क्रिएटिविटी का भी एग्जाम्पल है, और इसके लिए सेम कद काठी वाले शख्स को डॉट मार्क्स लगाए जाते हैं और फिर उसे वीएफएक्स से रिप्लेस कर दिया जाता है। ऐसा इफेक्ट वैसे आपने देखा होगा, शाहरुख खान की एक फिल्म आई थी डॉन, डॉन जो पुरानी वाली थी अमिताभ बच्चन की, उसका रीमेक, उसमें भी ये चीज़ आपने ज़रूर नोटिस की होगी। और हाँ, आपको बता दें कि धूम 3 फिल्म के कुछ स्टंट्स में भी आमिर खान के बॉडी डबल को इन्हीं इफेक्ट से नेचुरल दिखाया गया था। तो चलिए, धूम 3 की बात हो रही है और उसी फिल्म का एक खूबसूरत सा गाना आ रहा है, पहुंच रहा है आप सभी के रेडियो सेट तक। एंजॉय कीजिए रजबहार प्रोग्राम में, वृंदा है आप सभी के साथ।

0: वहीं दोस्तों तमिल हिंदी बाइलिंगुअल स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म विश्व रूपम के एक्शन सीन्स से लेकर बैकग्राउंड चेंज तक अच्छा खासा वीएफएक्स का यूज देखने को मिला था। अच्छा, विजुअल इफेक्ट्स दिखाने में हमारा टॉलीवुड किसी से भी पीछे नहीं है। विश्वरूपम के अलावा सूर्या की 2016 की फिल्म 24 में भी टाइम ट्रेवल की थीम को साइंस फिक्शन इफेक्ट्स के साथ रोमांटिक सीन से लेकर बैकग्राउंड डिटेलिंग तक कमाल का रिप्रेजेंटेशन दिया गया था। अब की बॉलीवुड फिल्मों में जो हम देखते हैं ना, ये एडवांस वीएफएक्स टाइम फ्रीज इफेक्ट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, वो 24 मूवी में सबसे सही ढंग से यूज़ किया गया था। और कई ऐसे टॉप वीएफएक्स मूवीज हैं जिसमें आज इसका यूज़ किया जाता है। करेंगे आपसे शेयर ऐसी बहुत ही ढेर सारी बातें, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए एफएम रेनबो कानपुर।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन, रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, आर पी

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

आकाशवाणी के कानपुर केंद्र से इस टाइम कनेक्टेड हैं आप और एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम रसबहार वृंदा के साथ। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं VFX मूवीज की।

होंगे कि हम बात कर रहे हैं रा वन फिल्म की। ये पहली ऐसी बॉलीवुड फिल्म थी जिसका कॉन्सेप्ट वीडियो गेम्स के कैरेक्टर्स पर बेस्ड था, तो ऑब्वियस ही बात है कि ढेर सारा वीएफएक्स का यूज तो होना ही था। और इस मूवी से बेस्ट नहीं, हाँ, बट एटलीस्ट हॉलीवुड पर चलने की राह की शुरुआत बॉलीवुड ने जरूर कर दी थी। वैसे वीएफएक्स की बात हो और रोबोट फिल्म का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? एथरीन यानी कि द रोबोट के चिट्टी को भला कौन भूल सकता है। आज भी हर बच्चा रजनीकांत के इस डबल रोल को फॉलो जरूर करता है।

वैसे VFX की बात हो और रोबोट फिल्म का नाम ना है, ऐसा कैसे हो सकता है? एथरीन यानी कि द रोबोट के चिट्टी को भला कौन भूल सकता है, आज भी हर बच्चा रजनीकांत के इस डबल रोल को फॉलो जरूर करता है। दस में इतने एडवांस इफेक्ट्स के साथ फिल्म को लाना ऑडियंस को ट्रेलर देखते ही अट्रैक्ट कर गया था और इन इफेक्ट्स को बनाने में लगे 6 महीने के वक्त ने फैंस के अप्रिसिएशन से मेहनत को सार्थक कर दिया। वैसे आपको पता है, कहते हैं कि वो जो ट्रेन वाला सीन था ना इस मूवी में, उसे बनाने में उसे रीटेक्स पता है कितने लगे थे? 2000 से भी ज्यादा रीटेक्स लेने पड़े गए थे। और 2018 में आया रोबोट फिल्म का अगला सीक्वल 2.0, जो बनी 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म।

एक्शन पैक्ड अजय देवगन स्टारर फिल्म की अब हम बात करेंगे, जिसके ट्रेलर को देखते ही पता चल गया था कि इस मूवी में बड़े लेवल का VFX वर्क जरूर देखने को मिलेगा। जी हाँ, और वो मूवी थी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो थी शिवाय। हाई लेवल VFX वर्क फिल्म में देखने को मिला, पर फिल्म एक्सपेक्टेशंस पर उतनी खरी नहीं उतर पाई। एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी हो या ना उतरी हो, बट आपको बता दें कि इस फिल्म को बेस्ट VFX वर्क के लिए 3 अवार्ड्स तो ज़रूर मिले थे। एंड इवन फिल्म की ओपनिंग देखते ही पता चल गया था कि इसमें अव्वल दर्जे का VFX वर्क ज़रूर देखने को मिलेगा। और पूरी मूवी में देखा जाए तो ये वर्क देखने को मिला भी। और चलिए, शिवाय मूवी की बात हो रही है तो उसका एक खूबसूरत सा गाना है, प्ले कर रही हूँ आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए रसबहार प्रोग्राम में, वृंदा है आप सभी के साथ।

0: वैसे शंकर के डायरेक्शन में बनी एक फिल्म थी जिसके हाई लेवल इफेक्ट्स को देखकर सारी ऑडियंस ये कह बैठी थी कि भाई हम तो दुनिया को भूल ही गए। जी हाँ, जिस शंकर के डायरेक्शन में बनी फिल्म की मैं बात कर रही हूँ वो थी तमिल फिल्म आए, और इसमें ऐसा हाई लेवल के इफेक्ट्स का यूज़ किया गया था, यानी कि VFX ऐसे यूज़ किए गए थे कि आपको लगेगा कि हम कोई ओरिजिनल फिल्म जो है या ओरिजिनल कैरेक्टर्स इस पर दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों अगले जिस फिल्म की बात करेंगे उस फिल्म के डायलॉग्स आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। कौन सी है वो फिल्म, क्या है वो डायलॉग्स, करेंगे बात इस मूवी के बारे में, बट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये PM ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी, यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कॉल।

0: बाहुबली द बिगनिंग का ये खूबसूरत गाना भी आपने सुना। हॉलीवुड की बराबरी करने वाली ये फिल्म अपने भव्य सेट से रियलिस्टिक इफेक्ट्स के साथ बनी उस साल यानी कि 2015 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। फिल्म में ऐसा वीएफएक्स यूज किया गया जो सच में लोगों को सोचने पर मजबूर कर गया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो रियल है या फेक। बट एक्चुअली वो फेक ही था, वो एक इफेक्ट था, बट लोगों को लग रहा था कि वो रियल चीजें जो हैं वो उनके सामने चल रही हैं। अच्छा, बाहुबली द बिगनिंग ने जो बेंचमार्क सेट किया था ना ऑडियंस में, जो उम्मीद जगाई थी, उसका सेकंड पार्ट स्क्रिप्ट, डायलॉग, सेट, सॉन्ग्स, वीएफएक्स हर चीज में जबरदस्त होगा, और ऐसा वो उम्मीद भी जता रहे थे और हुआ भी। बाहुबली द कंक्लूजन ने वीएफएक्स के मामले में अपने फर्स्ट पार्ट के स्टैंडर्ड को बिल्कुल भी कम नहीं होने दिया। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये जो डायलॉग था ना, इसके जवाब के लिए तो पहली फिल्म से लोगों को एक चांस था और एक उम्मीद थी कि सेकंड पार्ट जो आएगा उसका इंतजार तो हमें करना ही पड़ेगा, भाई मूवी देखनी बहुत जरूरी है। और फिर क्या था, फिल्म देखकर सभी ने माना यही था बाहुबली का वापस आना।
1: गली गली तेरी लाज जली।

दोस्तों आजकल तो VFX पर बेस्ड ज्यादातर फिल्में आपको देखने को मिल ही जाएंगी, बट ये VFX का शुरुआती दौर था इंडियन सिनेमा में जब इसको इंट्रोड्यूस कराया गया था, और इनमें से चुनिंदा टॉप बेस्ट फिल्म्स की आज हमने बात की है अपने प्रोग्राम में। वैसे ये था मेरा नज़रिया VFX फिल्मों को देखने का। हो सकता है आपकी कोई फेवरेट VFX मैंने ना इंक्लूड की हो तो आप मुझे बता सकती हैं। शामिल करूंगी आपके जवाब हम नवा प्रोग्राम में 11 बजे से। आपको करना क्या होगा, हमें सिर्फ एक छोटा सा ईमेल करना होगा। हमारी ईमेल आईडी है aarkansomedia@gmail.com। अभी फिलहाल लूंगी इजाजत रसबहार प्रोग्राम से और थोड़ी ही देर में सुनवाऊंगी विभिन्न रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग। कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए FM रेनबो कानपुर।

विविध भारती के कानपुर केंद्र से प्रस्तुत है ये एक अगला कार्यक्रम विविधा के अंतर्गत राग रंग, और हम बोल रहे हैं एफएम रेनबो कानपुर 102.2 एफएम रेनबो से, और आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला विभिन्न रागों पर आधारित कार्यक्रम राग रंग में पहली प्रस्तुति दादरा राग में।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI Life, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI Life की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।
4: कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट से इस टाइम

पंडित सी आर व्यास की इस प्रस्तुति के साथ थे, अब दीजिए इजाजत राग रंग प्रोग्राम से। मिलूंगी आपसे 11 बजे से हमनवा प्रोग्राम में अपनी हमनवा शिप्रा के साथ, और अगला प्रसारण होगा हमारे लखनऊ केंद्र से। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 20 मई तक यूएई, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 5 देश की यात्रा पर रहेंगे। पहले चरण में वह शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स जाएंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी 19 मई को इटली की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। वे इटली के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दोहरीघाट औढ़ियार यात्री पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। इससे मऊ और गाजीपुर जिले के यात्रियों को किफायती और सुरक्षित रेल सेवा उपलब्ध होगी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस रेल सेवा का विस्तार जल्द ही वाराणसी तक किया जाएगा। रेल मंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कई प्रमुख रेल अवसंरचना परियोजनाओं पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि एक प्रमुख 4 लेन का गलियारा गंगा के दक्षिण में प्रयागराज, कानपुर, आगरा, दिल्ली मार्ग के साथ विकसित किया जा गया है। उन्होंने कहा कि 4 लेन के रेलवे कॉरिडोर को विकास गंगा के उत्तर में किया जा रहा है। यह गलियारा गाजियाबाद, मुरादाबाद होते हुए दिल्ली से जुड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 157 अमृत भारत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने बताया कि लगभग 58 नई रेल सेवाओं की शुरुआत कोविड के बाद उत्तर प्रदेश में हुई है। असम में आज हेमंत

बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसी के साथ ही श्री शर्मा लगातार दो बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। चंदौली में 24 घंटे के भीतर दो अलग अलग ट्रेनों में दो व्यक्ति और अस्पताल में भर्ती एक महिला सहित तीन की हत्या करने वाला साइको किलर बीती रात पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। सीन क्रिएशन के दौरान वह एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागा और पुलिस पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में दो पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वह ढेर हो गया। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में साइको किलर ने अपने को पूर्व सैनिक होने और अमृतसर पंजाब का निवासी होने की बात बताई थी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इससे पहले कल रात धर्मशाला में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: शरीर में हॉर्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
4: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
5: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: तो 10:05 हो गया है और जिसका था इंतजार, यानी कि जिस प्रोग्राम का आप कर रहे हैं इंतजार, उसको लेकर मैं आ गया हूं। मेरा नाम है शिवम और ये प्रोग्राम कौन सा है? जी हाँ, ये प्रोग्राम है सुपर हिट सॉन्ग, जिसमें बजेंगे धमाकेदार सॉन्ग और एकदम फुल एनर्जी से भरे हुए। तो पहला गाना, उसके बाद दूसरा गाना, उसके बाद तीसरा गाना, बहुत सारे गाने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो आपको करना है सिर्फ इतना, वॉल्यूम थोड़ा सा आप कर लीजिए, क्योंकि अब हम मचाने वाले हैं बिल्कुल धमाका।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
1: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
2: शत्रुपा से माँ जी।
3: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
2: शत्रुपा से।
4: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब, कैसे मैनेज कर लेती हो इतना सब?
2: शत्रुपा से।
5: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैक्सी शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: जय श्री राम।
1: बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

कानपुर शहर के म्यूजिकल हार्टबीट से कनेक्ट हो चुके हैं आप। स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 11 एंड इट्स टाइम फॉर योर फेवरेट प्रोग्राम हम नवा।

0: नमस्कार अभिनंदन, वृंदा का स्वीकार कीजिए दिल से वंदन। लेकर हाजिर हो चुकी हूँ हमनवा प्रोग्राम अपनी हमनवा शिप्रा के साथ।
1: हेलो डियर रेनबो लिसनर, शिप्रा भी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है। शिप्रा और वृंदा की जोड़ी आज आपके लिए लेकर आई है बहुत कुछ खास। तो क्या है खास, बताएंगी वृंदा?
0: जी हाँ, होगी प्लांट हेल्थ से जुड़ी आज के प्रोग्राम में बात।
1: फिर मनाएंगे आकाशवाणी के 90 इयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं हम आकाशवाणी के।
0: और वृंदावन दास की प्रसिद्ध पंक्ति तेते पांव पसारिए जेती लंबी सौर के अर्थ को जानेंगे।
1: रोड सेफ्टी वीक पर सेफ्टी रूल्स की करेंगे बात और होगी एक बढ़िया रेसिपी जो वृंदा लेकर आई है आपके लिए।
0: सेफ्टी की बात कही है शिप्रा, तो पेशेंट्स की सुरक्षा उनकी देखभाल करने में सबसे बड़ा योगदान पता है किसका होता है?
1: बिल्कुल पता है, नर्स का होता है।
0: जी, तो इसीलिए दुनिया भर की नर्सों को सम्मान देने के लिए आज एक बहुत ही खास दिन हम मना रहे हैं,
1: अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग फॉरएवर फ्लोरेंस नाइटिंगल की जयंती पर उनकी याद में आज का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम। और आज का डे समर्पित है हमारी उन सभी नर्सेस को जो पेशेंट की बहुत दिल से सेवा करती हैं और उन्हें स्वस्थ कर रखती हैं।
0: जी, और इस शिप्रा हम बता दें कि इस साल की थीम भी कुछ यही इंडिकेट करती है, आर नर्सेज आर फ्यूचर, एम्पावर्ड नर्सेज सेव लाइव्स, यानी कि हमारी नर्सें हमारा भविष्य, सशक्त नर्सें जीवन बचाती हैं।
1: अच्छा, नर्सेज के आते कितनी अच्छी सी फीलिंग आने लग जाती है वृंदा, ऐसा लगता है ना इतने प्यार से डील करती हैं और लगता है कि हम इनसे अपनी सारी दिल की बात कह सकते हैं और जो कुछ मिस हो गया है डॉक्टर से वो भी इनको बता सकते हैं।
0: मतलब सेकंड मॉम कह सकते हैं।
1: तो ये कंटिन्यू कर देंगी डॉक्टर्स को। तो अगर आज की

0: इस खास दिन पर आप भी विशेष भेजना चाहते हैं तो हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर कोई भी विचार फीडबैक देना चाहते हैं और आकाशवाणी के 90 इयर्स पर बधाई संदेश पहुंचाना चाहते हैं हम तक, तो पहुंचाएं। हमारा ईमेल आईडी है
1: aarkansomedia@gmail.com।
0: और ये थी हमारी ईमेल आईडी, कर रहे हैं आपके मैसेजेस का इंतजार, तो फटाफट अंदाज में भेजिए अपने मैसेजेस। और फिलहाल हम आप तक पहुंचा रहे हैं एक खूबसूरत सा बढ़िया सा थिरकता हुआ गाना, ये रहा।

0: वृंदा बचना तो चाहिए रोड सेफ्टी के सबसे बड़े दुश्मन से भी। अच्छा जल्दी से बताओ कि कौन है रोड सेफ्टी का सबसे बड़ा दुश्मन?
1: ये जो हमारा मोबाइल फोन्स हैं, हमें लग रहा है कि वही है ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल, यही वाली बात मेरे भी दिल में आ रही थी। और साथ में वृंदा क्या होता है, ओवर स्पीडिंग है, रॉन्ग साइड ड्राइविंग है, तो ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं, है ना?
1: अच्छा एक चीज और मेरे माइंड में आ रही थी कि वो जो हम कहते हैं ना बस दो मिनट में पहुंच जाएंगे, ये जो सोच है ये भी इस चीज से भी बचना चाहिए।
0: बिल्कुल, दो मिनट वाली सोच जो आप बता रही हैं, दो मिनट में पहुंच जाएंगे, तो दो मिनट वाली सोच ही दो महीने का जो आपका इलाज है ना उसका कारण बन जाती है।
1: बिल्कुल सही कह रही है। और इसी को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए हम मना रहे हैं 8 मई to 14 मई UN ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक।
0: और बिल्कुल, और ये वीक खास तौर पर प्रमोट करता है वृंदा ये जो सेफ वॉकिंग है, सेफ साइकिलिंग है। बेसिकली साइकिल से चलने वाले लोग जो होते हैं, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, उनके लिए देखिए कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी

0: भीड़ है
1: जी
0: सड़कों पर, गाड़ियां चल रही हैं, तो इस तरह से क्या है स्पीड कंट्रोल और सीट बेल्ट और हेलमेट अवेयरनेस को सबको, ये जो वीक है ये सबको एक साथ लेकर के आता है कि हमें कैसे अपनी स्पीड को कंट्रोल करना है और कैसे खुद को सेफ रखना है और कैसे हमें पैदल चलने वालों को और साइकिल से चलने वालों को रास्ता भी देना है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं शिप्रा आप। और रोड एक्सीडेंट्स अच्छा देखा जाए तो मोस्टली केयरलेसनेस की वजह से होते हैं, और
0: बिल्कुल
1: ज्यादातर सड़क हादसों में अगर देखें हम तो 18 से 35 एज ग्रुप के लोग उसका शिकार बनते हैं। इसमें पेडेस्ट्रियन साइक्लिस्ट सबसे ज्यादा वल्नरेबल ग्रुप होते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल वृंदा, और कई बार लोग क्या होता है हेलमेट भाई हाथ में लिए हैं है ना, और बाइक की हैंडल पे भी लटक रहा है, कई बार क्या होता है पीछे वाले ने लगा रखा है आगे
1: हाँ
0: वाले ने नहीं लगाया है, तो हेलमेट कोई खिलौना, और देखा वो पुलिस वाला आ रहा है, वो ट्रैफिक वाली पुलिस खड़ी हुई है, तो फटाक से हमने पहन लिया। तो ये क्या है कि इसमें आपको थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। हेलमेट आपके लिए एक सेफ्टी जो पॉइंट है वो है हेलमेट से, हेलमेट का काम पुलिस से नहीं एक्सीडेंट से बचाना है, तो ये बात बिल्कुल जहन नशी कर लेना चाहिए हम लोगों
1: वाह
0: को।
1: क्या बात है शिप्रा, मुझे याद है जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आया था ना,
0: जी
1: तो फाइन्स बड़े थे और लोगों में अवेयरनेस नहीं बढ़ पाई थी, बट मोटिव था अवेयरनेस बढ़ाने का। और उसके बाद कई इनिशिएटिव सरकार की तरफ से लिए गए, जैसे रोड सेफ्टी ऑडिट्स, ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन, ब्लैक स्पॉट का मतलब
0: जी
1: है
0: जहां
1: कि
0: पे एक्सीडेंट्स ज्यादा
1: हाँ
0: होते
1: राइट,
0: हैं।
1: नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी, गुड सेमेटेरियन लॉ। सेमेटेरियन लॉ क्या होता है वो भी हम अपने लिसनर्स को बता दें।
0: बिल्कुल, सेमेटेरियन लॉ बहुत जरूरी है, और इसका मतलब है कि अगर आप एक्सीडेंट विक्टिम की मदद करते हैं और हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो आप को परेशान नहीं किया जाएगा कि भाई किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो हम सबसे पहले सोच रहे हैं कि अब क्या है, हम क्यों झमेले में पड़े, तो ऐसा नहीं सोच रखनी चाहिए। और इसी के लिए हम नवा से कनेक्ट हो रही हैं
1: IPS रवीना त्यागी, और आइए उन्हीं से बात करते हैं।
2: मैं रवीना त्यागी सभी शहरवासियों से ये अपील करती हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें, उल्टी दिशा में वाहन ना चलाएं, लेन ड्राइविंग का ध्यान रखें, हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें, हॉर्न का कम से कम प्रयोग करें, सिग्नल पर अवश्य ध्यान दें। ध्यान रहे कि आपके अधिकार वहीं तक हैं जब तक आप दूसरों के अधिकारों पर हस्तक्षेप ना करें। कानूनी रूप से एक गुड समैरिटन प्रैक्टिस होती है जिसमें यह होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को देखता है और उसकी मदद करता है, उसको अस्पताल लेकर के जाता है, पुलिस को 112 या अन्य माध्यम से सूचित करता है, तो उसको किसी भी कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी या उसको किसी भी रूप से परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि इसमें उनको प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार देने का और मोटिवेट करने के भी तमाम प्रावधान मौजूद हैं। तो सभी से, सभी शहरवासियों से, सभी लोगों से यह अपेक्षा की जाती है कि किसी भी व्यक्ति को यदि वो देखते हैं एक्सीडेंट का शिकार है, किसी परेशानी में है, तो बेझिझक निडर होकर के उसकी मदद अवश्य करें, शायद एक जान बचा ले जाएं आप, और पुलिस विभाग आपका इसमें 100% सपोर्ट करेगा और आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सुरक्षित रहें, सावधानी से चलें और बेहतर यातायात व्यवस्था देने में कानपुर पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद।
0: तो सुरक्षित रहना है जरूरी, और सिर्फ गाड़ी वालों को नहीं पैदल चलने वालों की भी सेफ्टी बहुत जरूरी है। हम लगातार आपको ये बात बार बार इसलिए बता रहे हैं कि कृपया सड़क पर चलते समय पैदल यात्रियों का और साइकिल से चलने वाले लोगों का भी ध्यान रखें।
1: जी बिल्कुल, और शिप्रा ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए, डार्क क्लोथ्स की जगह लाइट या रिफ्लेक्शन वाले कपड़े पहने, इन सब चीजों का भी ध्यान रखें।
0: और सबसे बड़ी बात क्या मुझे वृंदा लगती, आजकल मैं देखती हूँ कि बाइक आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके कान में ईयरफोन है ना,
1: ये सबसे गलत
0: और
1: है।
0: और ईयरफोन है आप चला रहे हैं या रेलवे क्रॉसिंग आप पार कर रहे हैं तो भी आप ईयरफोन का तो इस तरह से यूज होता है, वो समझ लीजिए सड़क पे जानलेवा है। तो ईयरफोन आप यूज करें लेकिन इतना करें कि आपको बाकी साउंड भी ट्रैफिक के सुनाई देते रहे, हॉर्न सुनाई देते रहे, जिसे कहते हैं हॉर्न ओके प्लीज
1: जी।

0: और देखिए हॉर्न ओके प्लीज, आपके मूड को फ्रेश करने के लिए हम लेकर आते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम्स और आपके फेवरेट सॉन्ग्स। और ये जो साथ है शिप्रा हमारा, ये 90 इयर्स का है और 8 जून को हम पूरे 90 वर्ष कंप्लीट करने वाले हैं।
1: बिल्कुल वृंदा, डे बाय डे बढ़ रहे हैं हम उस तारीख की ओर जबकि आकाशवाणी अपने 90 इयर्स कंप्लीट करके 91 इयर्स में प्रवेश करेगा और सेलिब्रेशन है बरकरार।
0: जी, और हर रोज ये सेलिब्रेशन यूं ही बरकरार रहने वाला है और आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, विशेष भेज सकते हैं और यहाँ तक कि आप चाहें तो अपने आसपास लोगों को भी रेडियो सुनने के लिए जागरूक करिए और साथ ही साथ उन्हें भी शामिल करिए हमारे प्रोग्राम्स में।
1: बिल्कुल, हमारे लिसनर्स की एक लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त में निरंतर क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है।
0: जी बिल्कुल, और 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी, आकाशवाणी का शाब्दिक अर्थ है आकाश से आने वाली आवाज, वॉइस फ्रॉम द स्काई।
1: अच्छा, अगर इसके

0: उसकी हिस्ट्री की बात करें वृंदा, तो 1956 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम आधिकारिक रूप से बदलकर क्या कर दिया गया,
1: आकाशवाणी।
0: तो ये नाम रेडियो की उस शक्ति को दर्शाता है जिसके माध्यम से इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट का संदेश देश के हर कोने तक पहुंचते हैं स्वस्थ मनोरंजन के साथ। ये स्वस्थ मनोरंजन कराता है, हर एज ग्रुप के लोग इसके साथ जुड़ते हैं और इससे क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट जानकारियों के साथ उन्हें मिलता है।
1: जी बिल्कुल, और आज आकाशवाणी 23 लैंग्वेजेस में और 189 बोलियों में प्रसारण कर रहा है और ये आकाशवाणी देश की लगभग 98% पॉपुलेशन को टच भी कर रहा है।
0: बिल्कुल, देश की 98% पॉपुलेशन को टच कर रहा है। और वृंदा, कहीं ना कहीं न्यूज ऑन एआईआर ऐप के साथ अब इसके दायरे तो इतने ज्यादा बढ़ गए कि देश और दुनिया को टच कर रहा है, ये भी साथ में कहना चाहिए। तो स्वस्थ मनोरंजन, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, ये है हमारा ध्येय वाक्य। हर उम्र के लिसनर्स, बच्चे, बुजुर्ग, यूथ सभी इसके साथ कनेक्ट होते हैं और प्रोग्राम एंजॉय करते हैं सुरीले गीतों के साथ, थिरकते हुए गीतों के साथ और जानकारियों के साथ। 90 ईयर्स बेसिकली एक माइल स्टोन है आकाशवाणी की मेमोरीज के साथ। तो वृंदा, अब मैं आपसे कुछ ऐसी बात करने वाली हूँ जिससे कि आप यादों की दुनिया में खो जाएंगी।
1: अच्छा?
0: हाँ बिल्कुल। तो वृंदा, आपकी कोई ऐसी मेमोरी जो आकाशवाणी से जुड़ी हुई है तो शेयर कीजिए आज आप हमारे साथ।
1: अच्छा, आप मेरे से पूछ रही हैं शिप्रा, तो अगर यादों की बात करें तो रात में 8 बजे याद है जो हवा महल प्रसारण आता था और उसके लिए हम सब बिल्कुल तैयार रहते थे और घर में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट हुआ करता था। जो नाटिका या प्रहसन आ रहा होता था उसका एक भी डायलॉग हमसे मिस ना हो जाए इसका हम पूरा ख्याल रखते थे।
0: जी बिल्कुल।
1: और नहीं तो ऐसा होता था ना, लगता था कि अरे मज़ा किरकिरा हो जाएगा अगर हमसे छूट गया तो। इनफैक्ट पता है शिप्रा, मैं सोचती हूँ कि इसमें ना कुछ चीज़ें जो हैं वो वाकई में हवाओं में, कहीं एक महल है जहाँ पर सभी बैठे हैं, राजा है, रानी
0: क्या
1: है
0: बात?
1: और ये नाटक उनके सामने खेले जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: एक इमेजिनरी दुनिया थी मेरी और हवा महल से जो मेरा लगाव था उस टाइम का वो आज भी कहीं ना कहीं बरकरार है।
0: बिल्कुल बरकरार है और बिल्कुल 8 बजे हम सब तैयार होके बैठे रहते हैं कि हवा महल आने वाला है और सुनने वाले और जो इसमें प्रहसन होते हैं वो तो बिल्कुल दिल को लुभा जाते हैं और जो नाटिकाएं होती हैं, नाटक होते हैं। तो आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की ये ही विशेषता है कि जितनी आंखें उतनी ही इमेजिनरी दुनिया सजती है आकाशवाणी के साथ। सभी डायरेक्टर हो जाते हैं, सभी हीरो हीरोइन हो जाते हैं और कितने ही रंग हो सजाते हैं इस संसार के अपनी इमेजिनरी दुनिया में। जैसे तुमने हवाओं का एक महल सजा लिया वृंदा, है ना? तो वृंदा, आपने हवा महल की बात की है तो अपने लिसनर्स को बता दे कि 1957 3 अक्टूबर ये तारीख है जबकि 3 अक्टूबर 1957 को हवा महल की शुरुआत हुई।
1: जी, और 15 मिनट का ये जो प्रोग्राम है वो दिल को छूने वाला होता है, जो हल्के पुलके रेडियो नाटकों, भारतीय लोक कथाओं और रोजमर्रा की जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों को संजोए हुए है। और ये भी हम बता दें शिप्रा कि 1972 में, यानी कि 25th अक्टूबर 1972 को इसका 1000वां एपिसोड भी प्रसारित हुआ था।
0: बिल्कुल, बहुत यादगार एपिसोड था वो। और देखिए, हम हवा महल की बात कर रहे हैं, नाटकों की बात कर रहे हैं, तो स्वस्थ मनोरंजन का जरिया है आकाशवाणी। हम जिन्हें वृंदा रंगमंच पर देखना पसंद करते हैं, उनको सुनना पसंद करते हैं, तो दोनों चीजें हम पसंद करते हैं। इसके लिए क्या होता है कि रंगमंच में हमें थिएटर का टिकट लेना होता है, जाना होता है, उतने घंटे हमें लगाने होते हैं, लेकिन बेसिकली हवा महल, हवाओं में है ये महल। तो ये आपके पास, आप काम करते जाइए और सुनते जाइए, एंजॉय करते जाइए, यूं ही चलते चलते काम करते नाटकों की महफिल में खो जाना, ये एक अलग सा कहना चाहिए खुशनुमा एहसास है।
1: बिल्कुल खुशनुमा एहसास है शिप्रा, और 90 वर्षों का हम सफर है हमारा आकाशवाणी। और अब जबकि हम नाटकों की, हवा महल की बात कर रहे हैं, तो हम नवा प्रोग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे ही कलाकार,
0: कानपुर के वरिष्ठ रेडियो, टीवी, फिल्म और रंगमंच कलाकार श्री राधे श्याम दीक्षित।
2: नमस्कार, मैं कानपुर से राधेश्याम दीक्षित, नाटककार और वरिष्ठ रंगकर्मी।

मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण करने के पश्चात मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आकाशवाणी का संबंध हमारा बहुत पुराना है। मुझे याद नहीं हो रहा कम से कम 50-60 साल पहले जब मेरे घर में पहली बार रेडियो आया तो सबने लेके उसके आगे बैठ गए और उसके जो झलकियां आती थी या जो मनोरंजन के कार्यक्रम आते थे उसे बड़े चाव से अगल बगल वाले भी आकर के सुनते थे। जैसे जब टीवी आया तो लोग जहां नहीं था तो लोग दूसरे आकर जैसे यहाँ होता था बैठ जाते थे, उसी तरह से रेडियो के समय में लोग अगल बगल के आके बैठते थे और मनोरंजन जो शाम को आते थे उसमें उसको वो सुनते थे। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, अब नहीं है, श्री कुमुद नागर जी लखनऊ के ड्रामा प्रोड्यूसर थे। उन्होंने, वो मेरे परम मित्र भी थे, उन्होंने कहा तुम नाटक करते हो, नाटक

के आके बैठते थे और मनोरंजन जो शाम को आते थे उसमें उसको वो सुनते थे। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र थे, अब नहीं है, श्री कुमुद नागर जी लखनऊ के ड्रामा प्रोड्यूसर थे। उन्होंने, वो मेरे परम मित्र भी थे, उन्होंने कहा तुम नाटक करते हो, नाटक लिखते हो, रेडियो के लिए क्यों नहीं लिखते हो। हमने कहा इस माध्यम पे मैंने कभी नहीं लिखा है, क्या बस ये समझ लो। उन्होंने उसको एक क्यों दिया कि आवाज के माध्यम से आप अपने पात्रों को दर्शाना है और आवाज के माध्यम से वो कहानी को आगे बढ़ाना है। हमने कहा ठीक है। तब मैंने पहली बार एक नाटक लिखा, आपका फोन है, और उसमें उसको मैंने किसी तरह से कई बार उसकी पांडुलिपि मैंने तैयार की, लिखी और उसको मैं लखनऊ भेजा। तो हमारे नागर साहब ने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा लिखा है, और फिर इसको करने के लिए उन्होंने आकाशवाणी में इसको रिकॉर्ड किया, और जब वो आकाशवाणी में द्वारा प्रसारित हुआ तो चूंकि मुझे पहले बता दिया गया था कि इस तारीख को आ रहा है, तो मैंने आसपास लोगों को बताया, लोगों ने सुना और बहुत खुश हुए, और मुझे जो हार्दिक प्रसन्नता मिली उसका तो कोई जवाब नहीं। फिर उसके बाद मैंने दूसरा नाटक लिखा, नौकर का चक्कर, वो भी बहुत सफल रहा। इससे आकाशवाणी में कई बार मुझे मौका दिया नाटक में अभिनय, रेडियो नाटक में अभिनय करने का, वो मैंने किया। ये ऐसा माध्यम है आकाशवाणी जिसे दूरदर्शन या फिल्म कभी पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि एक कलाकार को अपनी आवाज के माध्यम से एक बच्चे की आवाज निकालना, एक युवा की आवाज निकालना और एक वृद्ध की आवाज से अपने पात्रों को अपने अभिनय के माध्यम से श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें आकाशवाणी जो कार्य किया है, इससे फायदा ये हुआ कि आवाज के जो धुरंधर लोग थे उनको दूरदर्शन यानी दूरदर्शन में भी टीवी में मौका मिला, और वो कई यहाँ आकाशवाणी के कलाकार आज फिल्मों भी में भी सफलता पूर्वक काम कर रहे हैं। मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे लिखने की, रेडियो नाटक लिखने की प्रेरणा दी। उसके बाद मैंने कई नाटक लिखे जो अपना अलग अलग वो के मंच पे भी लिखे, मैंने दूरदर्शन के लिए फिल्म के लिए भी लिखे, लेकिन जो मजा रेडियो नाटक को सुनने में आता था, क्योंकि अपनी आवाज को विभिन्न तरीकों से श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करना तो बहुत कठिन काम है। मैं आकाशवाणी का बहुत बहुत ही आभारी हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आज 90 वर्ष की सफलता पूर्वक इस समारोह में मैं भी एक छोटा सा एक कार्यकर्ता समझिए, ये अभिनेता समझिए, एक साथी समझ करके मैं उसे बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

नमस्कार, मैं हूं सिंगर अभय जोधपुरकर एंड यू आर लिसनिंग टू 102.2 FM रेनबो कानपुर। सुनते रहिए और म्यूजिकली बने रहिए FM रेनबो कानपुर के साथ। थैंक यू।

0: सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट के साथ कनेक्ट हैं आप 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के साथ और शो चल रहा है हम नवा में। आज मेरे यानी शिप्रा चंद्रा के साथ हैं वृंदा मल्होत्रा।
1: तो शिप्रा, अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में और हमने अभी टॉपिक्स में एक बात कही थी, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, ये जो लाइन थी ना, ये किन की लाइन है और इसका अर्थ क्या है, उसको अब समझाने का मुझे लगता है वक्त आ गया है।
0: ये
1: बहुत ही गहन बात छुपी है उसमें, अर्थ छुपा है,
0: गहरी बात है
1: जी।
0: तो वृंदा, क्या है ख्वाहिशें, फरमाइशें, सपने, चाहते, जिंदगी में क्या होता है, हम सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और इसी कारण शायद हम तनाव में भी कहीं ना कहीं रहते हैं कि हमें अब आज के डेट में हमें हर चीज चाहिए और कहना चाहिए कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि ये सारी चीजें हासिल करने के लिए जो हम ख्वाहिशें हैं हमारी, बाहर घूमना और घर में भी सारे हाउस होल्ड के प्रोडक्ट्स हों, कई बार ईएमआई का भी शिकार बन जाते हैं।
1: और सही कह रहे हैं,
0: ये देखने वाले को तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई इन्होंने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम तो ईएमआई के बोझ में दबे पड़े हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या लगता है आपको?
1: हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा है, सब कुछ हासिल करने का जुनून अच्छी बात है शिप्रा, लेकिन जरा ध्यान से जल्दबाजी करनी ठीक नहीं होती है। वो कहते हैं ना कि हम आज में जीते हैं, कल की फिक्र नहीं करते, तो ऐसी सोच रखने वाले अक्सर ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं
0: जी,
1: और जिसमें उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
0: बिल्कुल वृंदा, आपने बड़ी गहरी बात कही और कवि वृंद की वाणी है कि तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर। कवि वृंद, जिनका पूरा नाम वृंदावन दास था, इनके लिखे दोहे वृंद विनोद सतसई में भी संकलित है। बड़े ही सुंदर दोहे हैं वृंदा, और रीतकालीन परंपरा में कवि वृंद का नाम आदर से लिया जाता है। तो कवि वृंद कहते हैं,
1: तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने हालात के हिसाब से जीना चाहिए, खर्चे भी उतने ही करने चाहिए जितनी कमाई हो, और ये ही जीवन का नियम है, और अपनी क्षमता से ज़्यादा चाहते अक्सर दिक्कत दे जाती हैं।
0: बिल्कुल, अभी हम लोगों ने एक एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल ये बात करी थी ईएमआई वाली, लेकिन लाइफ में ऐसा बहुत कुछ घटता रहता है कि मन ही मन में चल रहा है। और अब तो एक चीज़ और भी हो गई है वृंदा, कि पहले तो सोचना पड़ता था, एक एग्जांपल और दूंगी मैं, कि बैंक से पैसे निकालने हैं फिर आपको खर्च करने हैं, अभी क्या है कि आपने ऑनलाइन फटाफट काम, हाँ, मार्केट भी नहीं जाना है, आपने मंगाया, आपका काम हो गया। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इससे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वे फीलिंग्स को थोड़ा सा कंट्रोल में करके चले, ये भी सोच लें कि आज अगर हमने इतना ज़्यादा एक्सपेंसेस कर दिए तो कल हमारा क्या होने वाला है। तो ये फ्यूचर जो है, फ्यूचर प्लानिंग जिसे कहते हैं, वो करना चाहिए, है ना, और अपने हालात के हिसाब से जीना चाहिए, खर्च भी उतने ही करिए जितनी ही आपकी कमाई हो। और ये जो दिक्कत होती है, अभी जैसा आपने बताया कि यही जीवन का नियम है, तो नतीजा क्या होता है इसका, कि तनाव बढ़ता है और मन की शांति हो जाती है, क्या हो जाती है वृंदा
1: जी, उड़न छू हो जाती है। और मुझे लग रहा है कि शिप्रा, यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी, कई बार ना हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं कि उसके पास है
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: हमारे
0: जी.
1: पास क्यों नहीं है,
0: ऐसा क्यों है भाई, मन में शांति होनी चाहिए थोड़ी सी। और देखिए, वो शांति अगर आपके पास होगी तो आपकी लाइफ कितनी सुंदर और सरल हो जाएगी, है ना। तो ये जीवन के हर पहलू में लागू होता है, जैसे निर्णय लेते समय अधीरता से काम ना करें, और कई बार क्या होता है, बिग डिसीजन, तो बिग डिसीजन लेने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि भाई जितना वक्त है उतना ही काम करें। हम लोग क्या होता है, वक्त से मतलब इतना हमारा वर्किंग आवर है, लेकिन उससे भी ज्यादा हम काम करते हैं,
1: ओवर एग्जर्शन ले लेते हैं
0: और उसके बाद क्या होता है, फिजिकली हम कहीं ना कहीं
1: वीक
0: हो जाते हैं,
1: अपनी हेल्थ को हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो मतलब हमारा कहने का ये मतलब है कि बैलेंस बनाकर चलें हर चीज को, अगर आप संतुलन बनाकर चलेंगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। और इस कहावत का सार भी शिप्रा यही है,
0: बिल्कुल, और संतुलन बनाए रखना जरूरी है। और संतोष और अनुशासन जितना है उसी में खुश रहना सीखें, और जिंदगी में सुकून चाहिए तो भाई ये डियर रेनबो लिसनर्स है बहुत जरूरी। और यहाँ पर एक बात और ऐड कर दूं वृंदा
1: जी, जरूर ऐड करिए, क्या कहना चाह रही हैं आप? अच्छा मुझे एक चीज और याद आती है, पहले आप बता दीजिए फिर मैं बोलूंगी।
0: नहीं नहीं आप बताइए, आप फर्स्ट।
1: नहीं आप पहले अपनी बात कंप्लीट करिए फिर हम आप
0: देखिए। आप आपके चक्कर में तो नवाबों की दो ट्रेन छूट गई थी, लेकिन हम कनपुरिया हैं जनाब, तो हम पहले बताते हैं अपनी बात। बिल्कुल। तो संसाधनों की भी बात जो है, वो चीजें हम यूज करते हैं उस पे भी ये कहावत फिट बैठती है, जैसे कि पानी है, बिजली है, खाना है, जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करिए, वरना इनकी बर्बादी से हमारे समाज और हमारे पर्यावरण वरण पर भी बोझ बढ़ता है। तो कई बार क्या होता है, हमारे पास इतना है कि हम बिजली बेहिसाब जल रही है, पानी बेहिसाब बह रहा है, खाना ज़रूरत से ज़्यादा है तो वो डस्टबिन में जा रहा है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपका तो काम निकल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस संसाधन का बहुत बेदर्दी से इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो किसी की उतनी ज़रूरत के हिसाब से दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है, और साथ ही इसमें नेचर के साथ भी हम खिलवाड़ करते हैं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मिस यूज नहीं करना चाहिए चीजों का। और कवि वृंद का ये जो दोहा है वो हमें यही सीख देता है कि जिंदगी में जितना है उसी में खुश रहिए, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। और साथ ही साथ जो मैं अभी बात कहना चाह रही थी वो भी इसी से रिलेटेड ही है कि जैसे हमारे जो लिसनर्स हैं वो खुश रहते हैं जब भी वो रेडियो सुनते हैं, तो उतनी खुशी अगर आपको एक रेडियो पर मिल जाती है तो किसी और जगह क्या जाना।
0: बिल्कुल, क्या जाना। और बहुत ही खूबसूरत सा गीत है जो वृंदा ने आज हमनवा की प्लेलिस्ट में क्यों करके रखा है, पहुंचा रहे हैं आप तक, लीजिए सुनिए।

0: वृंदा, इस गीत को सुनते ही बिल्कुल ऐसा लगता है कि खूबसूरत नज़ारे हैं और खूबसूरत सा मौसम है और हम कहीं खो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है लता मंगेशकर की और दर्द फिल्म का गाना पहुंचा आप तक। और अगर हम बात करें वृंदा, हम टॉपिक पे आते हैं अपने वापस कि हम सीजन चेंज की बात करें
1: जी,
0: तो सीजन चेंज में अब देखिए क्या हो रहा है, धूप बहुत हो रही है, गर्मी वापस अपने उस पे आ गई है, चरम पे आ गई है। तो इसमें क्या है कि एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमको क्या होता है, प्यास लगती है तो हम पानी पी लेते हैं, हमको शेड चाहिए होता है तो हम पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको देख करके लगता है कि इन्हें हमारी नीड है। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो चीज़ें हैं हमारे प्लांट्स जो हैं। तो सुबह शाम जब आप शाम को जाइए तो वो कैसे खड़े रहते हैं कि भाई हमें भी पानी पिला दो थोड़ा सा मुरझाए से। तो सुबह और शाम ये दो टाइम है कि हमें अपने जो हमने प्लांट्स लगाए हैं, पौधारोपण किया है, उनका भी ध्यान रखें और अपनी हेल्थ के साथ साथ प्लांट हेल्थ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। साथ में पौधों को कीट फंगस और बीमारियों से बचाना भी ज़रूरी है।
1: सही बात है शिप्रा, और प्लांट हेल्थ बेहतर होगी तभी तो हमारी फूड सप्लाई मजबूत होगी। और इसी को ही तो ध्यान में रखते हुए हर साल हम आज के दिन यानी कि 12 मई को मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ।
0: बिल्कुल, और पौधों की बीमारियों का सीधा असर हमारी किचन पर पड़ता है। सोचिए वृंदा, अगर गेहूँ है, चावल है, ये जैसी ये फसलें हैं जिनसे हमारी भोजन की थाली सजती है, सब्जियाँ हैं, ये अगर कहीं ख़राब हो जाएं तो हमारा क्या होगा? तो फसलों को कीट फंगस वायरस बैक्टीरिया के साथ साथ इस जो बदल रहा है मौसम, इसमें इनके लिए इनको बचाना ज़रूरी है।
1: अच्छा शिप्रा, एक सबसे खतरनाक चीज़ होती है इन्वेसिव पेस्ट। अब ये होते क्या हैं ये भी हम बता दें।
0: हाँ,
1: यानी कि ऐसे कीट जो बाहर से आकर फसलों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे कुछ साल पहले आपने सुना होगा कि भारत में फॉल आर्मी वॉर्म आया था जिसने कई जगह पर मक्के की फसल को नुकसान पहुंचाया था।
0: बिल्कुल, और फसलों को बचाने के लिए क्या हुआ है कि ये जो अभी आपने बताया कि नुकसान पहुंचाया था, तो हमारे किसानों की मदद करते हैं वो, उसमें मददगार कौन सा आती है? हमारा साइंस यानी विज्ञान।
1: विज्ञान अब खेतों तक पहुंच चुका है और देखा जाए तो सॉइल टेस्टिंग है, ड्रोन स्प्रेइंग, वेदर फॉरकास्टिंग एप्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि IPM जैसे साधन भी तो अब अवेलेबल हैं।
0: बिल्कुल, इसके अलावा हमारी भारत सरकार ने कई स्कीम्स भी चलाई हुई हैं, जैसे सॉयल हेल्थ है ना, PM किसान है, नीम कोटेड यूरिया, परंपरागत कृषि विकास योजना और इस तरह की स्कीम्स हैं, और साथ ही ENAM यानी किसान सुविधा ऐप भी है जो फसल बीमा पोर्टल जैसे कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। तो आज भी किसान क्या है, घर बैठे इसकी हेल्प से अपना किसानी खेती कर रहे हैं, उनके तरीके जान रहे हैं, और बेमौसम जो ये आजकल बरसात हो जाती है और सारी चीज़ें, ये अलर्ट सुन तक पहले से पहुँच जाते हैं, तो ये एक अच्छी सुविधा है।
1: अच्छा,
0: हमारे
1: ये
0: किसान
1: जो अभी आपने किसानों की बात कही, लेकिन कई बार होता है हमारे घरों में जो पौधे होते हैं उनकी देखभाल हम नहीं करते हैं, उनकी देखभाल करना भी बहुत जरूरी है शिप्रा।
0: बिल्कुल,
1: तो रोज जरूरत के अनुसार पानी दें, और हाँ, पौधों में ज्यादा पानी भरने से जो है उनकी जड़ें सड़ जाती हैं, तो इस बात का भी खास ध्यान रखें।
0: अच्छा, कई बार हमारे दिमाग में आता है कि बहुत देर हो गई है, और जैसा कि अभी मैंने बोला कि देखिए पौधे मुरझा गए हैं, बिल्कुल बेचारे से लग रहे हैं, तो इनको पानी दे दे, तो हमने प्यार मोहब्बत में जरूरत से ज्यादा पानी डाल दिया, तो क्या होता है कि वो सड़ने लग जाते हैं। तो उतना ही पानी डालना है जितनी की उसको जरूरत है
1: जी।
0: तो इसमें इसके अलावा क्या है कि एक बार ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी डालें, और कीट लगने पर नीम की जो पत्तियां होती हैं उनका एक स्प्रे बना लें, उनको पानी जो होता है उससे जो है स्प्रे करें, और धूप और हवा, इसका खास ख्याल रखें, बहुत तेज धूप है वहां से, अगर आपके घर में जो आपके वास्क हैं, गमले हैं, उनको आप शिफ्ट कर दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा,

0: या कुछ शेड डाल दीजिए।
1: अच्छा,
0: उतनी देर
1: एक
0: के लिए।
1: और खास बात है शिप्रा कि अगर पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो आप समझ लीजिए कि उसे न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उस टाइम पे उन सब चीजों का आप खास ध्यान रखें कि भाई अब हमें उनको किस तरीके के जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाना है।
0: बिल्कुल, तो ये तो बात हुई प्लांट्स की और उसकी भी। वृंदा, एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगी कि सॉयल हेल्थ कार्ड भी होता है ना, जो मिट्टी की जांच में मदद करता है।
1: अच्छा, और साथ ही साथ शिप्रा हम बताएंगे, अभी आपने जैसे बताया था ना कि पीएम किसान जो योजना चलाई जा रही है, तो टोल फ्री नंबर है, उस पे भी हमारे किसान भाई जो हैं कोई भी जानकारी ले सकते हैं। और वो टोल फ्री नंबर है 1800-180-1551। यहाँ पर आप किसी भी तरह की क्वेरी जो अगर आपकी है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन, तो वो आप आसानी से ले सकते हैं।
0: बिल्कुल, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ पर आइए हम एक संकल्प लें कि एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल करेंगे। और इसी के साथ हम जो है प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

0: झूम रहे आप और झूम रहे हम 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के संग। कनेक्ट हो चुके हैं हम नवाजे मोनू सेठ अमेठी से और इन्होंने हमें एक संस्कृत में मैसेज किया है जिसका अर्थ हम बता रहे हैं आपको।
1: जी, ये जो मैसेज है उसका अर्थ है, जिस प्रकार वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, उसी प्रकार मनुष्य का यह शरीर, विशेषकर एक नर्स का जीवन, दूसरों की सेवा और भलाई के लिए है।
0: और वैसे देखा जाए तो इन्होंने लिखा है कि हर घर में अक्सर महिला होती है जो पूरी तरह से ख्याल रख पाती है, जैसे पहले माँ थी, बहन थी, और अब इन्होंने लिखा है कि अब पत्नी जी हैं। तो बिल्कुल पत्नी जी भैया मोनू सेठ का ध्यान रख रही हैं और बड़ी खूबसूरत सी बात कही है इन्होंने। और ये सुनकर कोई प्रसन्न हो या ना हो, इनकी पत्नी जी अवश्य प्रसन्न हो रही है।
1: बिल्कुल, और हमारी महिलाएं जो हैं वो हैं ही, घर को बांध कर रखती हैं।
0: बिल्कुल, और हमारी सखियों सहेलियों में एक स्पेशलिटी होती है वृंदा, मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, कि वो अपनी जो कहना चाहिए तारीफ, वो सुन करके भूल ही नहीं समाती है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं।
0: तो वृंदा ऐसा भी होता है, एक मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि चाहे हम खाने की बात करते हैं, है ना
1: जी,
0: तो एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि चाहे हम किसी भी अच्छे से अच्छे रेस्तरा में चले जाए, शादी ब्याह में खाना खा लें, जो डिशेज होती हैं वो कहीं ना कहीं कितना भी कुछ व्यंजन खा लें, लेकिन घर में जो अपनी माँ, दादी, नानी, इनकी रसोई में जो बात होती है, जो स्वाद होता है, वो कहीं नहीं मिलता।
1: अच्छा, इसे आप कह

0: सकती हैं फूड विद लव
1: जी,
0: यानी जो प्यार से बनाया हो, दिल से पकाया हो और ममता और अपनत्व से परोसा गया हो, शायद इसीलिए उस खाने में स्वाद आ जाता है और शिप्रा पेट भी उसी से ही भरता है। ऐसा फील होता है कि हाँ भाई अब हमने जो है जितना खाना था उससे ज़रूरत से कभी कभी हम ज़्यादा भी खा लेते हैं, माँ के हाथ में इतना स्वाद होता है।
1: बिल्कुल। और जबकि अब क्या होता है वृंदा की रोज़गार के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है, तो ऐसे में वो स्वाद हम जिसकी बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम मिस करते हैं, दादी नानी माँ की रेसिपी को, टेस्ट को हम मिस करते हैं।
0: सच है, लेकिन इसका एक ऑप्शन भी है शिप्रा।
1: क्या ऑप्शन है वो?
0: और वो ऑप्शन है हमारी ग्लोबल नानी।
1: ग्रेट ग्लोबल नानी जी, ग्लोबल नानी कौन है और इनके बनाए प्रोडक्ट हमें कहाँ मिलेंगे वृंदा, ये भी बताएं।
0: ये हम बताना चाहेंगे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इनके प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और इनके प्रोडक्ट्स आप आसानी से ले सकते हैं, सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ज़्यादातर जो हैं अवेलेबल मिल जाएंगे आपको। और साथ ही साथ इनसे हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है शिप्रा, क्योंकि इन्होंने अपना स्टार्टअप किया 90 ईयर्स में स्टार्ट।
1: क्या बात है,
0: और सोचिए कि इतनी एज में स्टार्टअप शुरू करना, ग्लोबल नानी के नाम से फेमस होना, चटपटे अचार और बर्फी की मिठास के साथ चंडीगढ़ की हरभजन कौर आज लोगों का दिल जीत रही हैं।
1: अच्छा 90 प्लस आपने जो बताया, तो 90 प्लस की है हमारी हरभजन कौर और इनके लिए एक क्लैप बनता है। और इस एज पर स्टार्टअप, अब मैं अब इमेजिन कर रही हूँ कि मैं इनकी एज पे पहुंचूं तो शायद वृंदा मैं ये वाला गाना गाऊं कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, और लेकिन इनको देख करके कि जैसा आपने बताया तो इनको देख करके मुझे इंस्पिरेशन मिल रही है और मेरा ये वाला गाना थोड़ा सा चेंज हो गया है, वो भी मैं बताती हूँ।
0: अच्छा।
1: कि चारों तरफ से घिरी हुई मुश्किल थी राहों में, चारों तरफ से घिरी हुई मुश्किल थी राहों में, मंजिल भी दूर और सांसों में थकान भी कम ना थी, लेकिन पंखों में अब भी जान थी क्योंकि हौसलों की उड़ान जो थी, आंखों में जो हौसलों की उड़ान जो थी।
0: सच है, ये जो आपने बात कही है ना, चंडीगढ़ की नानी हरभजन कौर पर बिल्कुल फिट बैठती है।
1: बिल्कुल।
0: और एकदम फिट बात ये अभी जो हम कर रहे हैं, ये जिंदगी से कई बार लोग जो है ना वो शिकायत करने लगते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कुछ था जो हम कर नहीं पाए, बन नहीं पाए, जी नहीं पाए अपनी जिंदगी। तो मुझे लगता है हमारी सखियों सहेलियों को अक्सर कहते यही सब सुना होगा, लेकिन अगर मौका मिलता है तो हम आज और अभी बहुत कुछ कर सकते हैं।
1: हाँ, ये शिकायत तो रहती है, बिल्कुल मैं कहूँगी हमारी सखियों सहेलियों को, हम सभी को रहती है कि उस समय हमें मौका मिला होता तो आज हम ये कर लेते। तो कुछ ऐसी शिकायतें थी जिंदगी से 90 प्लस की हरभजन कौर को, लेकिन उनके मन की बात उनकी बेटी रवीना सूरी ने उसे समझा और उन्हें बर्फी और अचार बेचने का सुझाव दिया, क्योंकि हरभजन कौर की बर्फी और अचार के स्वाद की कुछ अलग बात थी। तो उन्होंने क्या किया कि 5 किलो बेसन की बर्फी और 10 बॉटल करीब थी टमाटर की छटकारेदार चटनी बनाई और उसे मंडी में ले गई, उसे बेचा और कुछ ही घंटों में उनका सामान हाथों हाथ बिक गया।
0: और यहीं से उनको प्रोत्साहन मिला और घर के लोगों ने भी उनका साथ दिया, ये सिलसिला चल निकला। पहले वो जो थी प्रदर्शनियों में अपने स्टॉल्स लगाया करती थी, फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए अपने प्रोडक्ट्स लेकर आई और उनकी बनाई डिश की दीवानगी बढ़ती चली गई।
1: बिल्कुल बढ़ती चली गई, और स्टार्टअप मिला ग्लोबल नानी को के साथ हमारी सखियों और सहेलियों को भी रोजगार मिला। और बात हो रही है चटकारेदार चटनी की, बर्फी की, अचार की, तो अब मैं यहाँ पे एक और बात ऐड करना चाहूंगी कि आज वृंदा डियर रेनबो लिसनर्स आपके लिए लेकर आई है जो रेसिपी, उसको आप सुन करके और बना करके भी कहेंगे वाह क्या बात है।
0: जी, बहुत ही हेल्दी रेसिपी है ये, पीनट बटर बनाना स्मूदी। बनाना मतलब केले की स्मूदी है ये, उसको बनाना बहुत ही आसान है। और इसकी सामग्री क्या है शिप्रा, बता दीजिए हमारे लिसनर्स को।
1: बिल्कुल, सामग्री है इसके केले पके हुए 1 से 2 बड़े साइज के, और पीनट बटर 2 बड़े चम्मच, दूध 1 कप, दही 1/4 कप ऑप्शनल है, और शहद 1 चम्मच वो भी ऑप्शनल है, और आइस क्यूब्स 4 से 5, फ्लेवर के लिए ऑप्शनल है 1/4 चम्मच वेनिला एसेंस, और दालचीनी पाउडर भी इसके बदले आप ले सकती हैं एक चुटकी। तो ये है हमारी सामग्री।
0: और विधि भी बहुत इजी है, इंस्टेंट बन जाती है ये। केले को टुकड़ों में आप सबसे पहले काट लें, जो पके हुए केले लिए थे आपने। अब एक ब्लेंडर लें और उसमें केले के टुकड़े, पीनट बटर, दूध, दही, मिठास, जो भी आपने मिक्स करनी है वो डालें। सारी सामग्री को तब तक ब्लेंड करें जब तक कि स्मूदी एकदम स्मूद ना हो जाए और क्रीमी ना हो जाए। अब ग्लास में इस स्मूदी को डालें। आप चाहें तो चिया सीड्स होती हैं, आप उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मांसपेशियों के लिए अच्छी होती है। और बादाम के टुकड़ों से आप गार्निश करें। अच्छा, पीनट बटर भी आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। आपको उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पीनट्स, रोस्टेड पीनट्स लेने हैं और उसके बाद उसको ब्लेंड करना है। उसके अंदर आपको डालना है 1 से 2 चम्मच आप उसमें ऑयल मिक्स करेंगे
1: जी, जी।
0: और उसको अच्छी तरह चलाना है और वो बटर जैसा आपका स्मूद हो जाएगा। तो ये पीनट बटर आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें हल्का नमक डाला जाता है। अगर चाहें तो शुगर के लिए आप शहद भी मिक्स कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये ऑप्शन बताया, ये जो शहद वाला है, कि अब भी बहुत से लोगों को शुगर होता है तो उनके लिए मिठास की थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर आप चाहें तो शहद को ऐड करें, अदरवाइज ना करें। और शहद जो होता है वो क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाता है, स्किन को भी ब्राइट रखता है और ब्रेन को भी तेज रखता है। तो शहद तो बहुत अच्छी बात है और साथ ही कारगर है वजन घटाने में। और वृंदा, अब मैं यहाँ से आपसे एक बात और कहूंगी कि जरा घड़ी की तरफ भी देख लीजिए, जो हमसे कह रही है कि हम अपने लिसनर्स से लें विदा। तो आज के हम नवाज़े शिप्रा चंद्रा
0: और वृंदा को दीजिए इजाजत। शिप्रा रहेंगी आपके साथ 3 बजे से अपने प्रोग्राम्स के साथ। तो मैं लेती हूँ विदा आपसे। नमस्कार।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। हमीरपुर महोबा तिंदवारी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी सांसद अजेंद्र सिंह राजपूत द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शहर में विरोध प्रदर्शन किया और पुतले फूंके। भाजपा मीडिया प्रभारी सत्येंद्र प्रताप सिंह की शिकायत पर सपा सांसद व उनके समर्थकों के खिलाफ महोबा शहर कोतवाली में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। यह दिन रोगियों की देखभाल, सामुदायिक स्वास्थ्य और आर्थिक विकास में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान को दर्शाता है। इस अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नर्सों को देश के स्वास्थ्य प्रणाली की रीढ़ और आशा का स्तंभ बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि नर्सों की निस्वार्थ सेवा और अटूट समर्पण ही स्वस्थ भारत की सच्ची नींव है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र को उन पर गर्व है। प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कल अलीगंज स्थित राजकीय शीतगृह परिसर उद्यान का निरीक्षण किया। राज्य मंत्री ने पार्क में आमजन की सुविधाओं को और बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मंत्री

पार्क की साफ सफाई, हरियाली, प्रकाश व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ट्रैक के किनारे किनारे आरामदायक बेंच लगाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पार्क को सुबह 4 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक खोला जाए। शामली जिले के जिलाधिकारी आलोक यादव ने सड़क दुर्घटनाएं रोकने के कड़े निर्देश दिए हैं। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने एनएचएआई को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर सुधार करने और क्षतिग्रस्त मार्गों को ठीक करने को कहा है। बैठक में नो हेलमेट नो फ्यूल नियम का कड़ाई से पालन कराने और व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक लाइट लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही यमुना नदी के पुल पर जाल लगाने के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक पीयूष कांत राय ने आज पुलिस लाइन चित्रकूट में साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, सतर्क और अनुशासित बनाए रखने के उद्देश्य से विभिन्न व्यायाम कराए गए तथा परेड की दौड़ भी आयोजित की गई। उन्होंने परेड में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: जज्बात वही मगर एहसास है नया,
3: पहचान वही मगर अंदाज है नया,
4: धड़कता है जो हर दिल में
5: सुबह 6 से रात 12 बजे तक।
2: आपका अपना सतरंगी चैनल 100.7 FM रेनबो,
3: धड़कन लखनऊ की।
6: भाई आपके अपने फेवरेट चैनल यानी धड़कन लखनऊ की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जरीना जुड़ चुकी है आप सभी के साथ आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम यानी शत्रुपा लेकर के। भाई 12:06 का वक्त हो चला है और लखनऊ की पूरी फिजाओं में एक खूबसूरत सा बिल्कुल माहौल बन चुका है क्योंकि आज है बड़ा मंगल। एक ऐसा प्यारा सा दिन, एक ऐसा प्यारा सा मतलब महीना जो मुझे लगता है पूरे साल हर किसी के इंतजार में होता है। तो आप सभी को आज के दिन की बड़े मंगल की ढेर सारी शुभकामनाएं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्यूजडे की, आज है मंगल, बड़ा मंगल तो है ही है, लेकिन जब हम प्रोग्राम शत्रुपा की बात करते हैं तो ट्यूजडे को हम कुछ खास आपके लिए लेकर आते हैं। जो बात होती है आपके स्टाइल की, आपके लिबास की, आपके कॉन्फिडेंस की और ऐसी ही कुछ बातों के साथ मैं बिल्कुल तैयार हूँ अगले एक घंटे आप सभी को एंटरटेन करने के लिए। तो बस गाने के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म बार बार देखो, आवाज किसकी है, जैस्लिन रॉयल की। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: tuned to stay updated. Keep listening to FM Rainbow. Dhadkan Lucknow Ki.
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

भाई आप कहीं भी मत भागिएगा, बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए 100.7 FM रेनबो पर। 12:16 का वक्त, वक्त जितनी तेजी से भागता है ना उतनी तेजी से आई डोंट थिंक कोई और चीज है जो हमारी जिंदगी में भागती है। खैर बिल्कुल पकड़ के रखते हैं हम उसको प्रोग्राम, क्योंकि चल रहा है शत्रुपा और आज हम बात कर रहे हैं क्या महिलाओं की पहचान उनके स्टाइल और उनके कपड़ों से ही होती है। मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है इस चीज पर। होता क्या है ना कि जब बात करते हैं हम आज की महिला की, तो सिर्फ रिश्ते को ही संभालती नहीं है बल्कि वो अपनी पहचान खुद बनाती है, मुस्कुराती भी है, सपने भी देखती है, स्टाइल भी रखती है और अपनी आजादी की अहमियत को भी समझती है। अब समय बदल रहा है तो इस बदलते समय में महिलाओं की सोच जो है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, उनका स्टाइल जो है और उनका फैशन, हर कुछ बदल जाता है भाई। और समाज की अगर हम बात करें तो शायद समाज का ढर्रा वहीं पर अटका रहता है। जब महिलाओं की बात होती तो ऑब्वियसली अभी भी देखा जाता है कि बहुत हद तक महिलाओं को उनके कपड़ों से, उनके स्टाइल से ही लोग जज करना शुरू करते हैं। भाई अगर कोई लड़की ट्रेडिशनल कपड़े पहन ले तो लोगों को लगता है कि बहुत संस्कारी होगी, और अगर कोई लड़की मॉडर्न आउटफिट पहन ले तो लोगों को लगता है कि भाई ये तो बड़ी मॉडर्न है, पता नहीं इनका कैसा सोच होंगे, इनकी विचार कैसे होंगे। और बड़ी बात नहीं होती कि लोग कैरेक्टर तक को भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल फिर यही रह जाता है कि क्या किसी महिला की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से तय होनी चाहिए? तो भाई बदलते वक्त के साथ एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है कि सबको बदलना पड़ेगा, इस सोच को बदलना पड़ेगा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा नहीं आता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं भाई वो दिखती कभी कभार कुछ हैं और होती कुछ और हैं। आप अगर उनको देख रहे हैं कि वो बहुत ट्रेडिशनल है, लेकिन हो सकता है वो माइंड से बहुत एडुकेटेड, बहुत मॉडर्न हो। तो चलिए इसी बात पर बहुत सारी बातें अभी आपसे करेंगे और बहुत सारी बातें आपको बताएंगे भी कि कहाँ समाज में लोगों से चूक हो रही है, कहाँ पर लोगों को लग रहा है कि वो जज तो कर रहे हैं और उनके हिसाब से वो सही कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली होता बहुत कुछ गलत है। चलिए फिलहाल अगला ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर प्यारा सा क्यूटी पाई आप सभी के लिए आ गया, क्योंकि आज के समय में हर महिला क्यूटी पाई तो है ही है। तो एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदो मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
0: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो। सुबह मुस्कुराती हुई, गुनगुनाती हुई,
0: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई, जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदा बहार गीत

भाई जिनमें श्री पदा की आवाज में ये प्यारा सा ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट प्रायोरिटी के साथ। बता देते हैं आप सभी को कि प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपुर, और आज इस प्रोग्राम में हम सभी बात कर रहे हैं कि क्या कपड़े और स्टाइल किसी का कैरेक्टर हो सकते हैं। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि भाई फैशन ना कभी भी कैरेक्टर नहीं बनता है किसी का और ना ही होता है। अगर कोई किसी फैशन में लिप्त है या किसी पर्टिकुलर फैशन को फॉलो करता है, कपड़ों को फॉलो करता है, तो हम उससे कभी भी उस इंसान का कैरेक्टर, उसका जहन, उसकी सोच और उसकी पर्सनालिटी को नहीं जज कर सकते। हाँ, एक चीज हो सकती है कि कपड़े हमारा प्रोफेशन जरूर दिखा सकते हैं। मतलब जैसे कि आज है इंटरनेशनल नर्स डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है, और हम सभी देखते हैं कि भाई नर्स जो है वो बहुत ही प्यारे से सफेद कपड़ों में होती है और दूर से ही हम उनको पहचान जाते हैं कि हाँ वो पर्टिकुलर प्रोफेशन को फॉलो कर रही हैं। तो ये चीज जो है ये थोड़ा अलग हो सकती है कि कपड़े जो है वो आपका प्रोफेशन दिखा देंगे, लेकिन कपड़े जो है वो आपका कैरेक्टर कभी भी नहीं दिखा सकते। और अगर आप किसी को जज कर रहे हैं सो बी वेरी वेरी कॉन्शियस, कहीं आप गलत तो नहीं या गलत साबित तो नहीं हो जाएंगे। भाई फैशन सिर्फ पर्सनैलिटी एक्सप्रेस करता है, और ये महिला अगर कोई साड़ी में भी है तो भी कॉन्फिडेंस हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है, और जीन्स में है तो भी कॉन्फिडेंट हो सकती है और ग्रेसफुल भी हो सकती है। भाई किसी को सिंपल रहना पसंद होता है तो किसी को ग्लैमरस कैरी करना अच्छा लगता है। तो वो डिपेंड करता है ना कि किस टाइप की महिला, उनको क्या पसंद है। लेकिन सबसे जरूरी बात इन सब में पता क्या हो जाती है, वो ये होती है कि हर महिला को अपनी पसंद चुनने का अधिकार होता है ना, और वो अधिकार वो यूटिलाइज करें, उसका सदुपयोग करें, ये भी बहुत जरूरी है। आज हर महिला मतलब लोग क्या कहेंगे वाली सोच में बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती, वे खुद के लिए जीना चाहती हैं। और कभी बहुत बार ऐसा होता ना जब जिंदगी के फैसले लेने हो तो कभी कभार बहुत सारे लोगों से पूछना पड़ता, लेकिन ओवरऑल हर कोई यही चाहता है कि उनकी जिंदगी का फैसला जो है वो खुद का हो। क्या पहनेंगे, क्या बनेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे, ये सब हर एक इंसान को खुद ही तय करना चाहिए, और यही असली फ्रीडम भी है ना। फ्रीडम को हम लोग बहुत बहुत गलत तरह से जज कर लेते हैं। मतलब फ्रीडम सिर्फ घर से बाहर निकलने का नाम नहीं होता है, मतलब किसी भी पर्पज से अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो सिर्फ यही फ्रीडम नहीं होती है, बल्कि फ्रीडम उस एहसास का नाम भी है जहां एक महिला बिना डरे, बिना जजमेंट के अपनी असली पहचान के साथ जी सके। और भाई ये तभी पॉसिबल है जब घर के लोग, समाज के लोग, आसपास के लोग इस चीज़ को, उस इंसान को करने दें, है ना। और अगर ऐसा करने देते हैं तो आप देखिए इंसान की और उस महिला की उड़ान कहाँ तक होती है, शायद रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। तो चलिए बातें बहुत सारी अभी और भी करेंगे, फिलहाल अगला ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर। यस, हम तो ऐसे हैं भैया और हम ऐसे ही रहते हैं और ऐसे ही जियेंगे, है ना।

0: अपने पल्ले बांध न जाए, भाग झिंकी भाग। वहाँ मुफ्त की रबड़ी खाए, देखो अपने रज्जू ताओ।
1: मक्कल गुमा की मक्खी उड़ाए, रतन और ताओ दोनों बिकाओ।
0: चुपके, भगवान करे वो सुखी रहे और उन दोनों का साया भी हमसे दूर रहे।
1: हर वक्त टोकती रहती है तू मेरी बहनी। भाग।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
3: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें,
4: वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई।
3: चांदनी से छिटकती यादों के बीच दिल के

0: महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर। धड़कन लखनऊ।

हैं दोस्तों, फिल्म जब तक है जहाँ का ये प्यारा सा ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर। और मुझे लगता है कि अनुष्का शर्मा का ये आखिरी वो वाला ट्रैक था जहाँ पर हम लोगों ने उनको बहुत ही बिंदास अवतार में देखा था। मतलब हर लड़की जब उनको इस गाने में देखती है ना, ऑब्वियसली बिल्कुल उन जैसा बनना चाहती है, बिल्कुल मस्त मौला, बिल्कुल बेफिक्रे हो जाना। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, ये सब खुद ही डिसाइड करे। भाई ऐसे ही कुछ हम आज भी बातें कर रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा में, जहां आज हम बात कर रहे हैं कि स्टाइल और जो कपड़े हैं आपके, वो आपका कैरेक्टर कभी भी डिसाइड नहीं करते हैं। और स्पेशली जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो तब तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। वैसे एक चीज़ बहुत अच्छी, जब हम कपड़ों की बात करते हैं ना तो देखते वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं और लोग कपड़ों को भी बदलते हैं। मतलब जो ट्रेंड है उनको फॉलो करते करते हम लोग उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर लोग एनवायरमेंट कॉन्शियस हो चुके हैं। मतलब हमारे आसपास के वातावरण को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेचर को ध्यान में रखते हुए भी लोग खुद को ड्रेस अप करना शुरू कर

चुके हैं और आई होप कि फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। भाई हम बात कर रहे हैं उन चीजों की जहां पर हम देखते हैं न्यूज में आता है कि फलों के छिलकों से कपड़े बनाए जा रहे हैं, जूट का इस्तेमाल हो रहा है। खैर जूट की तो बात ही क्या कहने, मतलब पहले से भी बहुत सारी चीजें हैं, बैग्स हम लोग यूज करते हैं, ज्वेलरी जो है वो इन सब चीजों से बनाई जा रही है। और सेम एज बहुत सारी बार देखा है कि पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके रेशों से कपड़े बनाए जा रहे हैं। तो इन सब से ये समझ में आता है कि सिर्फ फैशन और ट्रेंड ही नहीं महिलाएं फॉलो कर रही हैं, बल्कि हो क्या रहा है एनवायरमेंट, नेचर, इन सबको साथ में लेकर के आगे चलना, आगे बढ़ना और समाज को, और कहते हैं ना इस दुनिया को, इस प्रकृति को बचाना भी सीख रही हैं। वैसे आज भी अगर हम देखें ना तो हर महिला के अंदर ना एक अलग सी कहानी होती है। कई लड़कियां ऐसी होती है जो अपने सपनों को सिर्फ इसलिए बस रोक देती है ना, क्योंकि उनको ये लगता है कि समाज जो है ना वो क्या कहेगा। मतलब एक टर्म चलता है ना कि इतनी आज़ादी लड़कियों के लिए अच्छी नहीं होती। सुना होगा आपने भी शायद अपने आस पास, या अपनी ही किसी बहन के लिए या अपनी किसी सहेली के लिए होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक तमगा लगा दिया जाता है कि इतनी आज़ादी लड़कियों को नहीं देना चाहिए, उनके लिए अच्छी नहीं होती। लेकिन अब जो है ना फीमेल्स जितनी भी हैं वो ये सब समझ चुकी हैं कि रिस्पेक्ट जो है वो मांगी नहीं जाती है, वो कमाई जाती है। खुद की पहचान, खुद के कॉन्फिडेंस से, खुद के प्रोफेशन से और अपने आप को प्रूव करके, और बस इसी राह पर आज के समय में हर महिला निकल चुकी है। आई होप कि ये आगे हमेशा इसी तरह बढ़ती जाए और अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पर लेकर जाकर बहुत कुछ जिंदगी में प्रूव करे, तभी तो हम सभी का दिल जो है ना बिल्कुल झूम झूम जाता है। तो बस अगला बिल्कुल गाना ऐसे ही है, आप सभी के रेडियो सेट पर भेजते हैं इस गाने को, गदर 2 फिल्म का ये गाना, बहुत ही प्यारा सा गाना है। एंजॉय करिए इसको, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की आपकी दोस्त जरीना के साथ।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।

जी हाँ, गाना तो बहुत खूबसूरत है, ये साथ ही बहुत ही खूबसूरत मैसेज इसमें मतलब छुपा हुआ है। जब शुरुआत हुई थी ना गाने की, तो कहा गया था कि जो दिल से लगे उसके कह दो हाय हाय, मतलब हाय हेलो वाला है, और उसी जगह पर जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय। बिल्कुल यही जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए, जहां पर आपको लगे आपका दिमाग का दही हुआ जा रहा है उसको जिंदगी से बिल्कुल निकाल फेंकिए और तुरंत निकाल फेंकिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी है, आपको जीना है और अपने हिसाब से जीना है। और उतना तो सेंस आई थिंक हर एक महिला में होता है, क्या सही है क्या गलत है, उन चीजों को साथ में लेकर चले। भाई आज जिस तरह से हम सभी ने बात की, तो मुझे ये लगता है कि हम सभी को हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि किसी भी महिला की डिग्निटी उसके कपड़ों की लंबाई या चौड़ाई से बिल्कुल भी नहीं होती, उसकी सोच उसकी ऊंचाई से तय होती है। क्योंकि आप सिर्फ खूबसूरत नहीं, आप मजबूत हैं, आप आत्मनिर्भर हैं, आप अपनी पहचान खुद बनाने की ताकत रखती हैं। स्टाइल आपकी पसंद है, फ्रीडम आपका अधिकार है, और सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी पहचान होती है। बस यहाँ पर जरूरत होती है इन चीजों का एहसास करने की और अपनी जिंदगी में ढालने की। तो चलिए इसी बात के साथ अब आपकी दोस्त जरीना को दीजिए आज के प्रोग्राम शत्रुपा से इजाजत। प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर, और इसी के साथ लेती हूँ आप सभी से विदा, लेकिन अगला प्रोग्राम जल्दी से वापस लेकर के आती हूँ। मतलब गाना आप इंजॉय करिए, एक लेती हूँ न्यूज ब्रेक, उसके बाद इलाकाई खबरें आएंगी, वो बहुत लंबी नहीं है, थोड़ी सी होंगी 5 मिनट की, उसके बाद जल्दी से मैं प्रोग्राम लेकर वापस आती हूँ। फिलहाल इस गाने को इंजॉय करिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंध किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। डॉ शर्मा के साथ चार विधायक रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी समारोह में उपस्थित थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए हैं। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव, सहायक नर्स मिडवाइव और महिला स्वास्थ्य आगंतुकों को प्रदान किए गए हैं। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गृहमंत्री अमित शाह ने महान सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के सिरहिंद फतेह दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया, मुगलों को पराजित किया और आत्मसम्मान, साहस और धर्म की रक्षा का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अनगिनत अत्याचार सहने के बावजूद उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल की परीक्षा में 95.8% अंक लाकर बिजनौर जिले का मान बढ़ाने वाली मेधावी छात्रा सृष्टि चौहान को उनके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रदर्शन के सम्मान में एक दिन के लिए बिजनौर का प्रतीकात्मक जिलाधिकारी बनाया गया है। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में जनपद स्तर पर टॉप करने वाली सृष्टि ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को करीब से देखा और जन समस्याओं का निस्तारण की प्रक्रिया को समझा। शासन की इस पहल का मुख्य उद्देश्य मेधावी छात्राओं का मनोबल बढ़ाना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण का संदेश देना है। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: वही रूप की धूप, वही रंगो रोशनी,
1: वही दोस्ती की खुशबू, मोहब्बत की मोहनी,
0: वही ठुमरी कथक और तिहाई की चोट,
1: सितारों भरे आंचल, कटारी की गोट,
0: चिकन के करिश्मे सजाए बदन,
1: जरीदार जलवे जवां अंजुमन,
0: अपने दिले नाशाद को आबाद करें हम,
1: आओ कि लखनऊ को जरा याद करें हम।
2: लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: तो ताज महल
1: लाल पत्थर का ताज।
0: ताज ही है, किसने लाल पोत दिया है?
1: इस इमारत का नाम बताओगे या मैं जाऊं?
0: हुमायूं का मकबरा। इतने पैसे नहीं थे कि तुम्हें आगरे ले जाके ताज दिखाऊं। सॉरी।
1: आज से हुमायूं का मकबरा ही मेरे लिए ताजमहल है। हमारी मोहब्बत जितना खूबसूरत,

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया तनाज़ों को एक दहाई के सबसे बड़े बहरानों में से एक करार देते हुए कौमी ज़राए पर बोझ कम करने के लिए आवाम से एकजुट होने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुजरात के एक प्रोग्राम में कहा कि हुकूमत ये यकीनी करने के लिए मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस हालात का मुल्की आवाम पर कम से कम असर पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने आवाम से सात निकाती अपील को अपनाने की बात दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो हम सोने की खरीद को टाले।
0: इसी दौरान मरकजी हुकूमत ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई कमी नहीं है। खाम तेल और कुदरती गैस का 60 दिन का और एलपीजी का 45 दिनों का जखीरा मुहैया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह की सदारत में कल नई दिल्ली में हुई काबीना की मीटिंग में यह जानकारी दी गई। हुकूमत ने कहा है कि आवाम को घबराने या ईंधन और दीगर मसनूआत की ज्यादा खरीद करने की जरूरत नहीं है। नीट यूजी 2026 के इम्तिहान को एनटीए ने मंसूख कर दिया है। जल्दी इम्तिहान की दोबारा तारीखों का ऐलान किया जाएगा। दोबारा मुनक़िद होने वाले इस इम्तिहान के लिए उम्मीदवारों से कोई भी अलग से फीस नहीं ली जाएगी। इम्तिहान में खलल के मामलों की अब जांच सीबीआई करेगी, जिसके लिए सभी अहम दस्तावेज एनटीए सीबीआई को सौंपेगी। वाज रहे कि यह इम्तिहान गुज़िश्ता 3 मई को मुनक़िद हुआ था। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हेमंत विश्व शर्मा ने आज मुसलसल दूसरी मर्तबा असम के वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानपारा वाके वेटरिनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद एक जलसे में डॉक्टर शर्मा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। डॉक्टर शर्मा के साथ 4 मेंबर असेंबली रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरे और अजंता नियोग ने भी वुजरा के ओहदे का हलफ लिया। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह समेत कई मरकजी वज़रा और

0: भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत वाली रियासतों के वज़राए आला भी इजलास में मौजूद रहे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कल नई दिल्ली में मुनक़िद CII सालाना बिजनेस समिट 2026 में शामिल हुए। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में उत्तर प्रदेश में तहफ़्फ़ुज़ का माहौल बना है, पॉलिसी तामीरात में इस्लाह हुई है। उन्होंने कहा कि मुजरिमों के तई जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी ने आज रियासत में सरमायाकारी की नई राहें हमवार कर दी हैं। आज उत्तर प्रदेश ने मुल्क में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में मारूफ रियासत के तौर पर पहचान बनाई है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट अजेंद्र सिंह लोधी के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुबैना तौहीन आमेज और नाजेबा तबसरा करने के इल्जाम में महोबा जिले में भारतीय जनता पार्टी के लीडर सत्येंद्र प्रताप की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। पुलिस अफसरान के मुताबिक ये तनाजो तब शुरू हुआ जब अजेंद्र सिंह लोधी वजीर आजम की उस अपील पर रद्द अमल जाहिर कर रहे थे जिसमें आवाम से सोना न खरीदने की अपील की गई थी। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे की जाँच की जा रही है। रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के खाली ओहदों पर तकरूरी के लिए उत्तर प्रदेश सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन 21 मई को रियासत के 44 जिला में खसूसी इम्तिहान मुनक़िद करेगा। कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर की जानिब से कल जारी जानकारी के मुताबिक इम्तिहान सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा। मेन एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अलॉट जिले की आइंदा जानकारी कमीशन की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। और गुज़िश्ता 24 घंटों में रियासत के बेशतर इज़ला में मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में रियासत में मशरिकी और मगरबी हिस्सों में तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और बिजली गिरने का कयास जाहिर किया। दरियासना आज बिजनौर अमरोहा और बदायूं में एक बार फिर तेज़ आंधी के साथ बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज हुई। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
1: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow.
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
3: अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिए और समय का प्रोडक्टिव यूज सीख लिया तो आप देखिए आप कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी।
2: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
4: सात रंग का इंद्रधनुष है,
5: सात सुरों की सरगम है,
6: सात जन्म है सात समंदर,
4: साथ हमारा हरदम है,
6: जिंदगी के सतरंगी रंग
5: FM रेनबो के संग।
7: जी हाँ दोस्तों, 100.7 FM रेनबो पर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम कर देती हूँ। 1:16 का वक्त हो चला है, जरीना एक बार फिर से जुड़ चुकी है आप सभी के साथ, लेकिन इस बार प्रोग्राम जो है वो थोड़ा चेंज है। प्रोग्राम होटो पे तेरी बात लेकर के मैं जुड़ चुकी हूँ आपके साथ। भाई प्रोग्राम होटो पे तेरी बात में आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम करना है जो लगभग आप हर रोज करते हैं इस समय, वो ये होता है कि हम आपको देंगे कोई टॉपिक और उस टॉपिक पे हमारे दिमाग में तो उथल पुथल चल ही रही होती है, हम जानना चाहते हैं कि आप उस चीज पर क्या सोचते हैं। भाई आजकल लाइफ में हम सभी देखते हैं ना कि सबको लगता है बहुत ज़्यादा हम बिजी हैं, मतलब सभी का। आप किसी को कभी कह दीजिए आओ कभी घर पर मिलें या फला जगह मिला जाए, प्लान्स तो कभी ज़िंदगी में बनते ही नहीं क्योंकि लोग बहुत बिजी हैं, है ना। तो ये जो बिजी रहना होता है वो क्या सच में अच्छा है या बुरा है, मतलब कभी आप उन लोगों से पूछ के देखिए जिनके पास करने को कुछ भी नहीं होता है, मतलब शायद रिटायर्ड हो गए हैं या फिलहाल कोई जॉब नहीं है या स्टडीज़ नहीं करनी है और कुछ ऐसा घर के भी काम उनके पास नहीं है, तो जो अकेले बैठे रहते हैं, जो विले बैठे रहते हैं, उनसे कभी आप पूछे कि अगर बिजी नहीं है तो ज़िंदगी कैसी होती है। तो मेरा मन क्या कहा कि मैं आज आपसे इसी पर बात कर लूं कि आपको क्या लगता है ज़िंदगी में बिजी रहना ज़्यादा सही है या नहीं, कहते हैं ना कि आज के मतलब आज का जो समय है उसमें जिंदगी जो है वो बिल्कुल चलने का नाम है, और जो चलते रहते हैं वही मुस्कुराते हुए मंजिल तक पहुंचते हैं। तो प्लीज मुझे तो यही लगता है कि भैया बिजी रहना बहुत सही होता है, मतलब फ्री रहेंगे तो कुछ ना कुछ दिमाग में खुराफात चलेगी, लेकिन मुझे ये भी जानना है कि आप इस पर क्या सोचते। तो मुझे मेल करिए fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। क्या क्या क्या क्या मेल आईडी फिर से बोल दूं? ओके ओके ओके

फाइन FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com। तो ये लखनऊ LKO मत लिखिएगा, LUCKNOW है। और फटाफट से अपने जो भी आइडियाज है, जो आपको लग रहा है कि बिजी रहना सही होता है जिंदगी में कि नहीं, वो हमें भेज दीजिए फटाफट से लिखकर। अच्छा, उससे पहले कुछ मेल्स जो पहले ही आ जाते हैं प्रोग्राम में, उनको मैं जल्दी से पढ़ देती हूँ। दीप माला त्रिवेदी लीजी लिखती हैं, हेलो RJ मैम, मैं हरदोई से हैं, मेरा नाम दीप माला है और मैं आपके प्रोग्राम को डेली, मतलब प्रोग्राम का डेली लिसनर हूँ, प्लीज मेरा नाम शामिल कर लीजिए। ओके, तो देखिए नाम शामिल हो चुका है और भैया मोनू सेठ जी ने तुरंत मुझे नमस्ते बोल दिया है और लिखते हैं कि आपको सुनकर खुशी हुई। शिवम भैया को भी इन्होंने आभार देना चाहा है और इन्होंने कहा है कि भैया शिवम जी ने बहुत बढ़िया गाने बजाए। तालिब अंसारी जी भी लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। आगे लिखा है इन्होंने, काफ़ी दिनों के बाद आपकी वॉइस रेनबो पर सुनने को मिली है। यस, ऑब्वियसली हर हफ्ते का हो जाता है, कभी कभार बीच में गैप भी हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड कि आप कितना कीनली ऑब्जर्व करते हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। खैर, इन्होंने लिखा है 4 बजे तक आपके साथ रहेंगे और अभी ये खाना खा रहे हैं। तो खाना खाते खाते अब आई होप आपका खाना फिनिश हो चुका होगा, तो बस फटाफट से मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि लाइफ में बिजी रहना अच्छा है या बुरा है। सेम एज बसंत कुमार सिन्हा जी ने भी लिखा है, गुड आफ्टरनून मैडम जी, और आज का थीम ये जानना चाहते हैं क्या है। दमदम एयरपोर्ट कैलकटा से ये मेल आया था, तो मैंने थीम आप सभी को बता दिया है। फटाफट से आप अपने भी मेल्स जो हैं वो टाइप कर लीजिए और मुझे बताइए आपको क्या लगता है कि ये बिजी रहना एक ब्लेसिंग है आपके लिए कि नहीं है। फिलहाल ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर एंजॉय करिए, इसको सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

हैं दोस्तों, फिल्म टशन का ये ट्रैक था आप सभी के रेडियो सेट पर। और वक्त देखिए कितनी तेजी से भाग रहा है, 1:25 का वक्त तो हो चला है, सेकंड्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आप सभी से कहा था कि लाइफ में बिजी रहना कितना इंपॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट है, इस पर अपनी जो भी विचार है, आपके जो भी राय है वो हमें दीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारे मेल्स आने शुरू हो चुके हैं। देखते हैं भाई राम राज जी क्या लिखते हैं। लिखा है इन्होंने, श्री गणेशाय नमो, जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से राम राज, राजू, भानु, पप्पी, पासी, मनीष, नीरज, मिर्जा, इमरान बेग, पहली बार इस कार्यक्रम में ईमेल भेज रहा हूँ। हमारा ईमेल जरूर शामिल करिएगा और आपकी महान कृपा होगी। और धन्यवाद इन्होंने लिख दिया, और यानी टॉपिक पर कुछ भी एज सच नहीं लिख कर दिया इन्होंने। नेक्स्ट जो मेल है वो है नीरज कुमार का। देखते हैं उन्होंने कुछ टॉपिक पर लिख कर दिया है कि नहीं। तो लिखा है इन्होंने, हेलो डियर, प्यारी प्यारी क्यूट सी जरीना मैम, आपको प्यार भरा नमस्कार। पिंकी रिंकी, गांव जगदीशपुर, शिवगढ़, दीवानों के शहर, जिला रायबरेली से ये मेल है। यस, हमेशा ये कंफ्यूजन होता है, नीरज कुमार मुझे सामने दिख जाते हैं लेकिन उनकी आईडी से रिंकी पिंकी जो है वो मेल लिखती है। और इन्होंने लिखा है कि शुभ दोपहरिया, कैसी हैं आप? हम लोग एकदम चकाचक हैं। हम भी बिल्कुल चकाचक हैं। और आज मेरी प्यारी दीदी और जीजू की मैरिज एनिवर्सरी है। हमारे हिसाब से बिजी रहना बेकार है क्योंकि हम अपनों को समय नहीं दे पाते और बिजी होने से हम बहुत कुछ मिस भी कर देते हैं। इसलिए तो मेरा मानना है कि लोग बिजी नहीं होते हैं तो ठीक होते हैं, अपने समय को अच्छे से इंजॉय करते हैं। ओके, तो रिंकी पिंकी जी, आपके जो ओपिनियन है वो भी सही है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता ना, आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान, पहले वो सही है लेकिन बिजी ज्यादा रहना मुझे लगता सही है। खैर, अपना अपना ओपिनियन होता, आपको लग रहा है कि वक्त की कमी हो जाती है उन इंसानों के पास जो बहुत ज्यादा बिजी होते, ये तो होता ही है, वो उतने फ्री नहीं रह पाते। थैंक यू सो मच मेल लिखने के लिए, बहुत प्यारी बात आपने लिख कर दी है और आपके अपने ओपिनियन को मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। नेक्स्ट है विजयपाल यादव जी का मेल, लिखते हैं, आदरणीय बहन जी सादर नमस्ते, कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारी समझ में बिजी रहना बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब खाली बैठेंगे तो आप इधर उधर के विचार मन में आते रहेंगे आपके, जो परेशान कर सकते हैं, हमारी समझ में बिजी रहना ही ज्यादा अच्छा है। और ये विजयपाल जी हैं ग्राम व पोस्ट ललहौवा जिला खीरी से। तो विजयपाल जी, आपने वही बात बोल दी जिसका डर हर किसी को रहता है कि भाई बिजी रहेंगे तो दिमाग में इधर उधर के ख्याल आएंगे और वो बेवजह डिस्टर्ब करेंगे। और ज़्यादातर लोग जो आजकल के समय में ना ओवर थिंकर होते हैं, मतलब जो चीज़ नहीं भी हो रही है या शायद नहीं हो उसको भी इमेजिन करते रहते, कहीं ऐसा हो गया तो क्या होगा या कहीं वो चीज़ हो गई तो क्या होगा। तो इसमें ना दिमाग बहुत ज़्यादा उलझा रहता है, ऐसे में बेटर यही होता है कि खुद को बिजी रखिए तो फालतू की उल जुलूल बातें ना दिमाग में बिल्कुल नहीं आएंगी। नेक्स्ट है अनंत राम मिश्रा जी, लिखते हैं हरदोई से कि एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। इस घर को हम सभी लोग जानते हैं, इसीलिए हमें किसी ना किसी के कार्य में हमेशा, अच्छा किसी ना किसी कार्य में हमेशा व्यस्त रहना चाहिए जिससे हमारे जीवन में तरक्की हो और ऐसे कार्य में स्वयं को व्यस्त रखें। यस, बहुत सही बात आपने कही है कि दिमाग शैतान का घर ना बने, इसलिए कुछ ना कुछ करते रहें। नेक्स्ट वकील अहमद क्या लिखते हैं, अस्सलामुअलैकुम, आपकी आवाज अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम भी। और आगे इन्होंने लिखा है, लाइफ में बिजी रहना अच्छी बात है, नर्स दिवस की शुभकामनाएं और बड़े मंगल की भी शुभकामनाएं सभी को। आंधी बारिश हो रही है वकील अहमद, मंसूरी कटका हथूरी जिला सीतापुर से। अच्छा, आंधी बारिश आपके एरिया में हो रही है, अभी हमारे वहां तो बिल्कुल बढ़िया चटक धूप निकली हुई है एंड आई एम जस्ट होपिंग, कीपिंग माय फिंगर्स क्रॉस्ड कि जल्दी से यहां भी बढ़िया वाला मौसम हो जाए।

मतलब इस बार ऊपर वाला अच्छे से बिल्कुल मेहरबान है। ये चीज हम हमेशा देख रहे हैं कि होता क्या है, एक बार बारिश होगी, तीन चार दिन मौसम बढ़िया सा अच्छा हो जाता है, उसके बाद पांच छह दिन की धूप, फिर से ऊपर वाले को याद आता है कि वो बारिश वाला बटन दबाना है, फिर से ठंडा मौसम हो जाएगा और फिर से धूप। तो बस हमारा ये जो मई जून है, आई होप बस इसी तरह निकल जाए और हम सभी लोग सुकून से इस बार की गर्मियों को काट लें। भाई बड़े मंगल में ना वो वाला फील भी बहुत कम आ रहा है, जहाँ पर पसीने से लथपथ एकदम पूरी सब्जी बन रही है और लोग लाइन लंबी लंबी लगा करके पूरी सब्जी ले रहे। इस बार खैर वो जेस्ट वाली फीलिंग आ नहीं रही है ना, आप सभी को भी नहीं आ रही होगी। मतलब ऊपर वाला बीच बीच में इस तरह प्यारा सा मौसम कर देता है और हम सभी लोग भूल जाते कि हम लोग मई जून में जी रहे हैं। मतलब अभी मई है, आने वाला जून है, उसमें जियेंगे तो ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और उसके बाद और भी यहाँ पर बहुत सारे मेल्स हैं, जैसे कि चंद्रमोहन मिश्रा का है और महेंद्र जी का है, बसंत कुमार सिन्हा ने फिर से मेल लिखा है, रोशनी रावत जी का भी मेल है। इन सबके मेल अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन उनसे पहले ये गाना भेजूंगी आप सभी के रेडियो सेट पर, वरना आपको लगेगा भैया लो गाने बजा ही नहीं रही, बोलती जा रही हैं। तो हम बोलेंगे नहीं, बस फुल स्टॉप अभी फिलहाल के लिए। और ये गाना आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म क्रिश, सोनू निगम श्रेया घोषाल की प्यारी सी आवाज है। एंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रंग का इंद्रधनुष है,
1: सात सुरों की सरगम है,
2: सात जन्म है सात समंदर,
0: साथ हमारा हरदम है,
2: जिंदगी के सतरंगी रंग
1: FM रेनबो के संग।

0: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एम के बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एम के बंधानी हींग।
1: दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है होटू पे तेरी बात, और आपकी जो बात है वो लगातार हम तक पहुंच रही है और बहुत प्यारी प्यारी बातें आप सभी ने लिख कर दी है। महेंद्र दीपन जी ने क्या लिखा है, बहुत ही प्यारा सा मेल इन्होंने भेजा है, और इन्होंने साथ में ये भी लिख दिया है कि भाई थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा, और कहां से मैं पकड़ूं कहां छोड़ूं। अगेन आपने बहुत ही प्यारा सा पोस्टर बनाकर भेज दिया है, तो इन्होंने क्या लिखा है, सादर प्रणाम, मैं महेंद्र दीपन, गांव रूड़, जिला नागौर, राजस्थान से 100.7 FM रेनबो लखनऊ का नियमित श्रोता हूं, आपका प्रोग्राम सुन रहा हूं, और आज का विषय है लाइफ में बिजी रहना सही है या नहीं। ओके, और इन्होंने लिखा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, इस विषय पर मेरा मानना है कि जीवन में व्यस्त रहना ना केवल सही है बल्कि बहुत जरूरी है। मेरा व्यक्तित्व अनुभव यही कहता है कि मैं दिन भर अपने काम के दौरान रेडियो सुनता रहता हूं, और उससे न केवल मैं काम कर पे ध्यान दे पाता हूँ बल्कि मन में कोई फालतू नकारात्मक विचार नहीं आता, यस पॉजिटिविटी बनी रहती है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि तनाव से मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि हम जब बिजी रहते हैं तो रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि काम का रिलैक्सेशन हम लोग के माइंड में रहता है, और बैठे रहेंगे तो भाई वही दिमाग में फिजूल बातें और टेंशन सारी चीज़ें आएंगी। और इन्होंने लिखा है सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टि, दिन के एंड में जब हम व्यस्त रहकर अपना काम पूरा करते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। थैंक यू सो मच, बहुत ही प्यारा सा मेल महेंद्र जी आपने लिखा है, और इसी के साथ अब अगले मेल पर भी हम पढ़ेंगे। कौन है, रोशनी रावत जी लिखते हैं, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड प्यारी जरीना मैम जी, आप कैसी हैं, 12 बजे से

जुड़े हुए हैं आपके साथ, मैं बहुत अच्छी हूँ और थैंक यू सो मच कि आप 12 बजे से जुड़ी हूँ। शाम 4 बजे तक हम यही चाहेंगे कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद आप आई हैं। और मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम पोस्ट बम्हना, तहसील सफीपुर, जिला उन्नाव से ये मेल आया है और फिलहाल ये चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रहे हैं। और टॉपिक पर ये लिखती हैं कि अपनी परिस्थितियां जैसी भी हों, व्यस्त रहने से हमेशा दिमाग में फालतू ख्याल नहीं आते और हमेशा खुश रहने के लिए अच्छा महसूस होता है, पर हमेशा व्यस्त रहना भी ठीक नहीं। रिश्तेदारों और दोस्तों से मिलते रहना चाहिए, जो दोस्त दूर हैं उनसे फोन पर बात कर लेनी चाहिए। यस, वो वाला टैंट्रम नहीं दिखाना चाहिए, अरे बहुत बिजी रहते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। मतलब ऐसे लगता है कि बिल्कुल प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर हमारे अपने पड़ोसी, हमारे दोस्ती हो गए, कि उनको फोन करने का टाइम नहीं मिलता और मिलना तो मतलब आप बस शायद अगला जन्म लेना पड़ जाए। ऐसी कहानियां होती हैं घरों में। बसंत कुमार सिन्हा जी ने फिर से हमें मेल लिखा है और फिर से उन्होंने क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मेल, खाली रिसेंट ऐसे ही किया है। ओके, चंद्रमोहन मिश्रा जी क्या लिखते हैं, मैं चंद्रमोहन मिश्रा नौरंगपुर धौहरा लखीमपुर खीरी से, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार। आप बात आपने बहुत अच्छी पूछी है, तो मैं इस पर यही कहना चाहता हूँ कि जब हम व्यस्त होते हैं तो हमारा दिमाग सक्रिय रहता है, हम लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं और अपने समय का सदुपयोग करते हैं, हमें दिशा और उद्देश्य देता है ये चीज़। और दूसरी ओर फ्री रहने का मतलब आलस नहीं है, चिंतन के लिए समय निकालना है, खाली समय में अपनी रचनात्मकता को फिर से जीवंत करें, मानसिक शांति पाने और अपने प्रियजनों के साथ जुड़ने का मौका देता है। तो मेरे विचार से वो, इन्होंने लिखा है कि वो नहीं है जो हमें थका दे, अच्छा मेरे विचार से अच्छा वो नहीं है जो हमें थका दे, अच्छा वो है जो हमें ठहरा दे। बहुत ही प्यारी बात लिखी है इन्होंने। और असली खुशी सार्थक व्यस्तता में है, हमें व्यस्तता के बीच भी छोटे छोटे खालीपन निकालने चाहिए जो हमें खुद से जोड़ते हैं। चंद्रमोहन मिश्रा जी, बहुत डीप बात आपने लिखी और बहुत बहुत शुक्रिया लिखने के लिए भी। और बाबू अंसारी जी क्या लिखते हैं, बाराबंकी से ये मेल आया है, अस्सलाम वालेकुम जरीना जी लिखा है इन्होंने, वालेकुम अस्सलाम, पूछते हैं कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आज का टॉपिक सुन नहीं पाए हैं ये, इसीलिए मेल बस इन्होंने लिखा है शामिल कर लीजिए। तो मेल तो देखिए शामिल हो चुका है और नेक्स्ट जो मेल आया है वो किसका है यहाँ पर, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और मोहब्बत व प्यार भरे अंदाज में पूरे लखनऊ शहर को ये आदाब कहते हैं और आपका मेल बस इतना ही है, बाकी कहाँ गायब हो गया है। ओ मिल गया, लिखते हैं जरीना जी, सबसे पहले तो तहे दिल से गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आपको भी है। और इनका कहना है कि जिंदगी में, लाइफ में बिजी रहना ही हमारी जिंदगी को आगे ले जाता है, उसी बिजी टाइम में किसी और को अगर टाइम देते हैं तो ये बहुत ही नेक काम है। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर साहब ने हमें मेल लिखा है। ओके, मोहम्मद जहीर साहब जी आपका भी मेल है और इन्होंने लिखा है कि बिजी रहना आज के टाइम पर बहुत सही है, लेकिन परिवार और दोस्तों के लिए वक्त निकालना भी जरूरी है। मैं मेल पूरा पढ़ना, इसके बाद इन्होंने लिख दिया और उसके बाद थैंक्स भी लिखा हुआ है। मेल कहाँ है भैया, इतना ही है आपका मेल। और नाम लिखा है आपने जहीर मलिक, सचिन विवेक शर्मा और केशव नगर ददौली मार्ग लखनऊ से। तो बस मेल इतना था, मैंने पूरा पढ़ लिया है बिल्कुल, मतलब सत्य और निष्ठा के साथ, है ना, कुछ भी छोड़ा नहीं है इसमें। रामेश्वर जी, गुलफशा सिद्दीकी और परवीन जी आपके भी मेल हमारे पास है, लेकिन इन मेल्स को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। फिलहाल जो अगला गाना है उसको आपके रेडियो सेट पर भेज देते हैं, वरना आपको लगेगा लो भैया गाना फिर नहीं आया। तो ये लीजिए प्यारा सा गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, इंजॉय करिए इस गाने को और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: स्टे ट्यून्ड 100.7 एफएम रेनबो,
1: धड़कन लखनऊ की।
2: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: listening to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूं और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल एफएम रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है।

0: मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। That's why I love FM Rainbow।
1: ये तो सुन रहे हैं FM Rainbow और आप
2: जी हाँ, और आप भी सुन रहे हैं, मुझे बिल्कुल पता है। और क्योंकि प्रोग्राम चल रहा है होंठों पे तेरी बात, और आज मैंने वो बात आपसे पूछी है जो हर किसी की बात है, मतलब हर किसी के होंठों पे बात रहती है कि भैया क्या करें, बड़े बिजी हैं। तो आपको क्या लगता है, जो बहुत ज्यादा बिजी हैं वो बिजी होना लाइफ में सही है या गलत है? तो मेल्स जो आए हुए हैं उनको मैं शामिल कर लेती हूँ। रामेश्वर जी का मेल है, यहाँ पर लिखते हैं, होंठों पे तेरी बात कार्यक्रम में सप्रेम नमस्कार, आपको बराबर सुन रहे हैं हम, प्रस्तुति इनको अच्छी लग रही है। और कहाँ से ये मेल आया है, मुंगिसापुर कानपुर देहात से ये है, और सबके नाम लिखे हैं उन्होंने परिवार में, लेकिन टॉपिक पर कुछ नहीं बोला। तो मैं आगे ज़्यादा नहीं शामिल करूंगी इस मेल को, क्योंकि मुझे पॉइंट चाहिए, मतलब टॉपिक पे बात चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं बैठकर। नेक्स्ट है गुलफ्शा सिद्दीकी, क्या लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम ज़रीना पी। वालेकुम अस्सलाम। और संडीला से ये मेल है, और इन्होंने लिखा है कि मेरा मानना है बिजी रहना सही है, लेकिन इतना भी बिजी ना रहो कि अपने परिवार को अपने खास को टाइम ही ना दो। बिजी रहो लेकिन कभी कभी हमें अपनों के लिए टाइम निकालना चाहिए, तभी जिंदगी बहुत आसान होती है। यस, बहुत अच्छी बात, बहुत प्यारी सी बात आपने लिखी है। बिजी रहिए लेकिन अपने अपनों के लिए आप बिजी हैं ये भी ध्यान में रखिए, है ना। नेक्स्ट है परवीन जी का मेल, लिखते हैं, आजकल लोग खाली होकर भी बिजी रहते हैं क्योंकि मोबाइल तो होता ही है हाथ में। यस, ये बिल्कुल वो वाली बात है जिसका मुझे बहुत देर से इंतजार था कि लोग ना बिजी होकर भी अपने आप को बिजी दिखाते हैं, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, पूरा पूरा दिन स्क्रोलिंग कर रहे हैं, बेड तोड़ रहे हैं, सोफा तोड़ रहे हैं, लेकिन अगर फोन कर दो आप तो बहुत बिजी हैं, क्या करें, इतना काम है, इतना काम है, तो मतलब वही वाली बात हो गई है। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है कि दुनिया निरंतर चलती रहती है, तो हम तो मामूली इंसान मात्र हैं, हमें भी प्रकृति के नियम के अनुसार निरंतर कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो सिंपल ध्यान ही कर लिया करो, ताकि दिमाग जो है वो तरोताजा रहे। यस, बहुत अच्छी बात लिखी है। और परवीन जी, बहुत ही प्यारा मेल आपने लिखा है, बहुत सही सही बात, मतलब छोटी सी आपने बात लिखी लेकिन बिल्कुल सही लिखा है आपने। सत्यनारायण कुरील जी का फिर से भी मेल आ गया है, राधे राधे लिखते हैं, और टॉपिक पर कुछ नहीं लिखा इन्होंने, राजस्थान से ये मेल था। रोशनी रावत ने क्या लिखा है, जरीना मैम जी गुस्ताखी माफ, फिर से ईमेल भेज दिया। ओके, अभी 2 अप्रैल को जो कार्यक्रम हुआ था आपने, आपको मैंने देखा था। ओके, मतलब इन्होंने किसी प्रोग्राम में मुझे देखा है, और उस पर इन्होंने लिखा है कि आपको बता दूं कि मुझे बड़ा अच्छा लगा था, और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारी प्यारी बातें आपने लिखी। मेल लिखने के लिए, बातें शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। और मोहम्मद अहमद जी, बिजी रहना ठीक है लिखते हैं, लेकिन बस इतना बिजी ना रहो कि लोगों को भूल जाएं। ओके, बहुत सही बात है। नवी हसन जी क्या लिखते हैं, कुछ उन्होंने टॉपिक पर नहीं लिखा है तो मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगी इसको। हॉटमेल के कुछ मेल्स आने शुरू हो चुके हैं, तो बस थोड़ा सा अब इंतजार कर लेते हैं अगले प्रोग्राम के लिए। फिलहाल इस प्रोग्राम से लूंगी आप सभी से इजाजत। आज का प्रोग्राम का आखिरी गाना आप सभी के रेडियो सेट पर, एंजॉय करिए इसको, और उसके बाद जल्दी से वापस आते हैं अगले प्रोग्राम, यानी आपके फेवरेट हॉटमेल को लेकर के। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रन किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि ये फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉक्टर शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास आरु अनुगत्य पोषण करिम।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ 4 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉक्टर हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी

0: ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता के.ए. सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइफ्स, सहायक नर्स मिडवाइफ्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है, जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां

0: कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: आवर एलपीजी किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा

0: क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
1: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से एलपीजी से एलएनजी की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ER News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबू धाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़क कर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, CBI जांच के आदेश। हिमंता बिश्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असल

के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: लखनऊ है तो महज गुंबदों मीनार नहीं,
1: सिर्फ एक शहर नहीं, कूचाओ बाजार नहीं,
0: इसके दामन में मोहब्बत के फूल खिलते हैं,
1: इसकी गलियों में फरिश्तों के पते मिलते हैं।
2: धड़कन लखनऊ की
1: 100.7 FM रेनबो।
3: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
4: Keep listening to 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

जी हाँ दोस्तों, सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में ये गाना था आप सभी के रेडियो सेट पर फ्रॉम द फिल्म जीत। जितना प्यारा गाना उतने ही प्यारे बोल, उतना ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन है। कभी इसको देखिएगा, गाने को आपको बहुत पसंद आएगा। मतलब सुनवा तो हमने दिया है, लेकिन जब आप देखेंगे ना तो भी उतना ही अच्छा लगेगा। खैर, 2:40 का वक्त हो चला है, प्रोग्राम चल रहा है हॉट मेल, और अगला मेल जल्दी जल्दी से शामिल कर लेती हूँ क्योंकि बहुत सारे मेल यहाँ पर हैं और फिर बाय द एंड कहीं कुछ मेल छूट ना जाए तो इसके लिए तो और स्पीड अप करती हूँ। नेक्स्ट जो मेल है वो है, हेलो आरजे, हाय, किसने लिख कर दिया है? हितेंद्र दास जी ने। हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। लिखते हैं आपका आवाज अच्छा लग रहा है। आवाज नहीं, आपकी आवाज। ओके, हम समझ गए हैं। खैर, आप जब शब्द लिखते हैं ना तो ऑब्वियसली मेरी जो आपकी फीलिंग्स है ना वो पूरी हम तक पहुंच रही होती है। आवाज की तारीफ कर रहे हैं, और आज मेरी माँ रूप तारा दास जी की क्या लिखा है आपने, आपकी बिल्कुल भी शब्द क्लियर नहीं हो पा रहे हैं अब। कुछ तो है आपने लिखा है, 30 दिन, अच्छा स्वर्गवास हो गया था आपकी माता जी का। अच्छा, ओके ओके ओके, 30 दिन हो गए हैं उनको, तो कोई कल अंतिम संस्कार नहीं आपकी। देखिए, ये शब्द बहुत ही ज़्यादा आपने ऊपर नीचे कर दिए हैं और वो चीज़ें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। असम से ये मेल आया है तो हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा हिंदी लिखना शायद मुश्किल हो रहा हो इनका। हितेंद्र दास जी, हमने आपका मेल पढ़ा है ना, आई कैन अंडरस्टैंड कि कुछ तो मिस हैपनिंग है आपके घर पर जिसको आप यहाँ पर मैंशन करना चाहते हैं। मेल लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऊपर वाला आप सभी को इस टाइम से जल्दी से बाहर निकाल दे। नेक्स्ट मेल ले लेते हैं। शमसुल कमर राही जी लिखते हैं, आर जे जी आदाब। शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान खान, कलीम अंसारी, और थैंक्स इन्होंने लिख दिया है। नेक्स्ट जो है किसका, अजीत भवसार जी के, प्रिय आर जी नमस्कार, कल हूं ना हो का ये गाना सुनना चाहते हैं, और वीरम गाम गुजरात से अजीत भावसार, प्रमिला भावसार, दोनों लोगों ने मेल लिखा है साथ में। बहुत बहुत शुक्रिया मेल लिखने के लिए। निसार अली जी क्या लिखते हैं, प्रसारक जी प्यार भरा आदाब नमस्कार, आप हमें किसी भी गीत में शामिल करें, धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, अयान बाबू, प्लीज शामिल कर लीजिए, इन्होंने लिखा। देखिए, मेल आपका शामिल हो चुका है। नेक्स्ट महेंद्र जी क्या लिखते हैं, महेंद्र मोदी जी, गाने की रिक्वेस्ट की है इन्होंने, रामगढ़ कैंट से ये मेल आया है और थैंक यू लिख दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी मेल लिखने के लिए। दातार सिंह जी का भी मेल यहाँ पर है, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से है। दातार सिंह शेखावत, संगीता कुंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और ये भी गाना सुनना चाहते हैं। गाना तो सभी लोग सुनना चाहते हैं, सभी मेल कर रहे हैं, सभी कोई ना कोई गाने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। कोई ना कोई ऐसे लोग होते जो कहते हैं आप अपनी पसंद का कोई गाना बजा दें, लेकिन यूजली हमारी पसंद जो है वो आपकी पसंद में ही शामिल हो जाती है क्योंकि देखिए अलग से तो कुछ बजा ही नहीं सकते हम यहाँ पर। आफ्ताब अंसारी जी क्या लिखते हैं, आफ्ताब अंसारी जी का मेल पहले भी शामिल हो चुका तो दोबारा बिल्कुल भी नहीं शामिल करूंगी। दूनागिरी जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से हिमांशु जोशी, कमला जोशी, अनीता जोशी और भरत जोशी जी लिखते हैं, मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ और रोज कार्यक्रम सुनता हूँ, आज तक कभी भी मेरा गाना नहीं चलाया गया। अरे ये क्या हो गया, आज इन्होंने लिखा है अवश्य चलाया जाए, तो ये मैं सारे एंकर्स में, सारे आरजेस में चेक करूंगी कि पहले आपका गाना चला है कि नहीं, और अगली बार मैं पक्का बजा दूंगी अगर नहीं चला होगा। वैसे अगर स्क्रोल होगा, अगर आपके लिस्ट में आपका जो गाना है वो आ जाता है तो वो गाना बज भी जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अब नाजिम उस्मानी जी क्या लिखते हैं, हीरा की तमन्ना है गाना सुनवा दीजिए, नाजिम उस्मानी महमूदाबाद सीतापुर से। ओके, उसके अलावा और किसका है, कमलकांत गुप्ता जी पिपरिया से, कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, और समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति गुप्ता, राधे गुप्ता, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकुर राघव गुप्ता। देखिए, नाम सबके शामिल हो चुके हैं। और कौन, शंभू दयाल जी का भी मेल हम पढ़ लेते हैं, गांव जाखोद से शंभू दयाल पाट खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खटक, और लिखा है इन्होंने, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से प्यार के लिए, और ये मैं सबके लिए बोल देती हूँ कि आप सभी का भी हर पल खुशियों से भरा हो। तो चलिए, इतने मेल्स शामिल हो चुके हैं, देखते हैं नंबर किसका आता है। यस, इस गाने का नंबर आया है, तो ये आप डिसाइड करिएगा कि किसने इस गाने को रिक्वेस्ट किया था, बट बहुत ही प्यारा सा गाना है अल्तमश फरीदी की आवाज में, एंजॉय कर

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।
2: माने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: Stay tuned to 100.7 FM Rainbow, Dhadkan, Lucknow ki.
1: भाई प्रोग्राम हॉट मेल में इस वक्त कीर्तनपुरी गोस्वामी जी हमसे पूछते हैं कि आप कैसी हैं जी। मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ, नारगोड़ा छत्तीसगढ़ से ये पूछा गया है। और बहुत सारे लोगों के नाम है, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी, ये सारे नाम थे और इन्होंने लिख दिया माय रेडियो माय लाइफ। यस, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट जो मेल है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, ये सारे लोगों के नाम थे शामिल हो चुके हैं और गाना ये सुनना चाहते हैं। तो भाई गाना मैं देखती हूँ अगला कौन सा बजने वाला है। शेख मूसा जी क्या लिखते हैं, प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और बार बार ये मेल आ रहा है, कन्फ्यूजन में मैं ओपन कर लेती हूँ और पढ़ भी देती हूँ, बट बार बार मेल किसी का भी नहीं पढ़ूंगी। सुदर्शन शाह लिखते हैं, पल्लवी शाह साथ में है, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, ये सारे लोग मिलकर कहाँ से मेल लिखा है इन्होंने, पद्मा टॉकीज, नेपा नगर, मध्य प्रदेश से, गाना सुनना चाहते हैं। तो बस अगला गाने का इंतजार करिए। नेक्स्ट जो है सदानंद जी का मेल है, प्रसारक जी को इन्होंने नमस्कार लिखा है। सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता, डाबकी रोड अकोला से हैं, इन्होंने ये मेल लिखा है। ये कहाँ पर है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता और बहुत क्लियर इन्होंने लिखा भी नहीं है। रोजी दी कैस्ट्रो का मेल, गुड आफ्टरनून होस्ट इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून आपको भी। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन, रोजी, पर्ल, विलिस, ये सब लोग डिकैस्ट्रो हैं और आप हमें किसी भी गीत में इन्होंने लिखा है शामिल कर लीजिए। तो देखिए आपका मेल शामिल हो चुका है और किसका मेल शामिल कर लूँ। बबलेश जी लिखते हैं, प्रसारक महोदय जी नमस्कार और गाना ये सुनना चाहते हैं, और पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब और गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से ये मेल है। बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान और डांगरी से बाबूराम जयपाल, तो ये सारे देखिए नाम शामिल हो चुके हैं। इसके बाद शमसुल कमर राही जी का मेल है, लिखते हैं आरजे जी आदाब, शमसुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी, तो मेल शामिल हो चुका। गाना ये कोई भी चाहते हैं हम बजाते, तो बस अभी देखते हैं हम जल्दी से कोई गाना बजा देते हैं आप सभी के लिए। इसके बाद जो अगला मेल है, अशोक कुमार जी आपका भी मेल शामिल कर लेते हैं। अशोक राज लिखते हैं, गुड आफ्टरनून मैम, एड्रेस रायपुर ओडारा मितौली लखीमपुर खीरी से ये मेल आया है और हीना मूवी का ये गाना सुनना चाहते हैं, और बहुत सारी लिस्ट इन्होंने वैसे भेज दी है और आगे लिख दिया है अजय राज, बलिस्टर राज, प्रदीप राज, ये नाम जो थे जो मुझे लेने थे और मैंने ले लिए हैं। तो वैसे मैं स्टूडियो की घड़ी जो है वो भी साथ साथ देखती जा रही हूँ, बहुत तेज़ी से बढ़ी, कुछ ही मिनट्स हमारे पास बाकी हैं, तो एक काम करती हूँ जो नेम्स बचे हैं उनको शामिल कर लेती हूँ और आज के प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर भेज देती हूँ, वरना फिर आप कहेंगे देखिए नाम तक नहीं लिया, तो मैं नाम जरूर से ले लेती हूँ। विकास जी आपका भी मेल था, फागुराम यादव जी, आर कुमार जी, इसके अलावा राजू मिगलानी जी आपका भी मेल हमारे पास आया था, बहुत बहुत शुक्रिया। रिंकी पिंकी जी आपका भी मेल था, सीताराम कागरा जी का मेल हम नहीं पढ़ पाए हैं, मोहसिन रजा जी आपका भी मेल शायद हमने नहीं पढ़ा है, उसके अलावा भागवत वर्मा जी हैं, राज रेडियो क्लब से भी हमें मेल आए थे, और उसके अलावा वकील अहमद जी, आई थिंक हमने आपका भी मेल नहीं पढ़ा है, इसके अलावा और किसका छूटा है, फैसल हुडा जी का भी मेल हम नहीं शामिल कर पाए हैं, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट अनिल कुमार जी का भी मेल हमने शायद शामिल नहीं किया है, सीपा बानो जी, आई एम सो सॉरी, आपका भी मेल शामिल नहीं हो पाया। तो ये वो नाम थे जिनके मेल आज हम शामिल नहीं कर पाए हैं, सो इट्स ओके, अगली बार जरूर मेरी कोशिश रहेगी कि जो मेल्स आज शामिल नहीं हुए वो अगली बार फटाफट से शामिल हो जाएं। तो चलिए एक काम करते हैं, आज के इस प्रोग्राम का आखिरी ट्रैक आप सभी के रेडियो सेट पर भेजते हैं और ये मिक्स्ड रिक्वेस्ट, मतलब आप में से किसी की रिक्वेस्ट थी इस गाने की, तो ये गाना आ गया आप सभी के रेडियो सेट पर, गाने को एंजॉय करिए और छोटा सा न्यूज ब्रेक लेती हूँ और उसके बाद जल्दी से अगला प्रोग्राम लेकर के वापस आती हूँ। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: रहा है बदल, जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

ऑन योर ऑलवेज इन हार्ट, ये 102.2 FM रेनबो कानपुर की आवाज। दिन के बज रहे हैं 3 और टाइम है म्यूजिक कार शो का। म्यूजिक कार शो में आज जर्नी विद प्राउड, स्वागत है आपका, अभिनंदन है आपका म्यूजिक आर शो में। और इससे पहले कि इस ब्यूटीफुल से शो का पर्दा उठे, आपको शायर अल्लामा इकबाल की गजल का शेर सुनाते हैं। शायर अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहां सैकड़ों कारवां और भी हैं। तुशाही है परवाज है काम तेरा, तुशाही है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। डियर रेनबो लिसनर्स, रोजमर्रा की जिंदगी और मई का महीना, लंबी अलसाई दोपहरिया और बच्चों का शोरगुल, तो बच्चों की समर वेकेशन जल्द ही हो जाएंगी, तो ये टाइम है इन छुट्टियों से फायदा उठाने का, घूमने का और घुमाने का। तो अगर आप कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने के शौकीन हैं, तो जर्नी विद प्राउड म्यूजिक कार का ये कारवां आपके लिए है। जर्नी विद प्राउड म्यूजिक आर शो में हम बात करेंगे भारत की हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स का, जो बीते 5 सालों में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हुई हैं। तो है ना ये सफर शानदार, जर्नी विद प्राउड एंजॉय कर रहे हैं आप शिप्रा चंद्रा के साथ।

टापू कन्याकुमारी समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को समेटे भारत और इसके बाशिंदे विभिन्न बोलियों, संस्कृति और परंपराओं और अपने इतिहास के साथ। वेल, इतिहास हमें बताता है हमारे पूर्वजों की कहानियां, उनके संघर्ष, संस्कृति, रहन सहन और कुछ खास परंपराओं के बारे में। सच है, जब कुछ खास होता है तो वो इतिहास होता है। क्या आपने कभी ऐसी भूमि के बारे में सुना है जहां मिट्टी के हर कण में इतिहास सांस लेता है, जहां राजा केवल हिस्ट्री की बुक्स में नहीं बल्कि धरती की गहराइयों में अमर होते हैं।

डियर इन लिसनर्स, म्यूजिक और जर्नी विद प्राउड में आज हम बात कर रहे हैं भारत की ऐसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक साइट्स के बारे में जो बीते 5 सालों में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुई हैं। तो चलिए चलते हैं हरे भरे चाय के बागानों में, और ये जगह अपने एक सींग वाले गैंडों के लिए भी फेमस है। क्या जानते हैं आप उनका नाम? पूर्वोत्तर भारत में ये खूबसूरत राज्य है अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए वर्ल्ड फेमस एक नंबर। नाम है असम, और असम में है देश की जीवंत धरोहर चराइदेव मोइदम्स, और ये कोई आम स्मारक नहीं है। वेल डियर रेनबो लिसनर्स, रहस्य रोमांच से भरपूर जर्नी के शौकीन गीजा के पिरामिड्स देखने का शौक फरमाते हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आपका ये शौक, ये क्यूरियोसिटी पूरी हो सकती है चराइदेव मोइदम्स में जाकर, जो एक पूरी सभ्यता का प्रतीक है, पिरामिड ऑफ आसाम। पिरामिड्स ऑफ आसाम चराइदेव मोइदम्स जो हैं वो हैं हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इसे शामिल किया गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में। और ये स्मारक जब आप देखने जाएंगे तो ज़मीन से उभरे कुछ टीले आपको नज़र आएंगे। खूबसूरत वादियाँ असम की, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग और यहाँ का संगीत, और साथ ही यहाँ की बारिश और यहाँ की हरियाली।

क्या है चराई देव मोइदम्स की कहानी। एक ऐसा प्लेस जहां राजाओं की सोल साज भी धरती में विश्राम कर रही हैं। एक अलग सा एक्सपीरियंस है यहाँ पर जाकर। चाय बागानों की हरियाली है, ब्रह्मपुत्र नदी की शांति है और चौराई देव की दिव्यता जैसे कि किसी कवि की लेखनी से निकली हुई कविता। हरी भरी धरती के बीच टीले सा आभास कराते ये मोइदम्स। तो चलिए पलटते हैं हम इतिहास के पन्नों को। ये कहानी शुरू होती है तब जब 13वीं शताब्दी में ताई अहोम वंश का बसेरा हुआ असम की खाटी में। अहोम साम्राज्य को 1228 में छोलुंग सुकफा द्वारा स्थापित किया गया और अपनी समृद्ध संस्कृति, कुशल प्रशासन और सैन्य शक्ति के लिए विख्यात अहोम शासकों का दौर 1826 तक रहा। अहोम राजवंश ने अपने पूर्वजों को उनकी कीमती वस्तुओं के साथ दफनाया और ये संरचना मोइदम्स कहलाती है। ये छोटे छोटे पहाड़ जैसे दिखने वाले टीले वास्तव में राजा और रानियों के विश्राम स्थल हैं, ऐतिहासिक शाही समाधि स्थल। 102.2 FM रेनबो कानपुर से कनेक्ट है। आप म्यूजिक आर की जर्नी विद प्राउड में अब बारी आएगी कर्नाटक की। तो कौन सी है वो जगह जिसके बारे में हम करने वाले हैं बात, शेयर करेंगे आपसे। उससे पहले ये ट्रैक पहुंचने को आप तक है तैयार।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स, लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
3: आरबीआई कहता है
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
6: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
5: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
7: म्यूजिक आर जर्नी विद प्राउड में हम बात कर रहे हैं। बीते 5 सालों में यूनेस्को ने भारत की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जिनका नाम शामिल किया है, जिन प्लेसेस का कल्चरल और हेरिटेज जो हमारी साइट्स हैं हिस्टोरिकल, उनके बारे में। और अब इस जर्नी में हम आ पहुंचे हैं दक्षिण भारत के सुनहरे धूप वाले रास्तों पर, जहाँ हवा में इतिहास की खुशबू है। हम जा रहे हैं उन मंदिरों को देखने जिन्हें यूनेस्को ने 2023 में विश्व धरोहर का दर्जा दिया। कर्नाटक के बेलूर, हलेबिदु और सोमनाथपुरा के होयसल मंदिरों की यात्रा है ये। होयसल मंदिर, जिनके पत्थरों के ऊपर की गई बारीक नक्काशी को देखकर लगता है कि कौन है वो कलाकार जिसने इन पत्थरों पर एक खूबसूरत कविता लिखी, अद्भुत अकल्पनीय। होयसल मंदिर की यात्रा में कौन कौन से पड़ाव पड़ेंगे, शेयर करेंगे आपसे इस गीत के बाद।

क्या पत्थर भी गीत गाते हैं? जी, ये ना केवल गीत गाते हैं बल्कि नृत्य भी करते हैं। कम से कम बेलूर के चिन्ना के शिव मंदिर की शिव बालिकाओं को देखकर यही फीलिंग आती है। यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत के होयसल मंदिरों की श्रृंखला में चेन्ना केशव मंदिर, ये मंदिर राजा विष्णु वर्धन की जीत का प्रतीक है। और इसकी खासियत है मंदिर के अंदर का नृत्य मंडप, जहां छत पर ऐसी नक्काशी है जिसे देखकर आपकी गर्दन जरूर थक जाएगी पर मन नहीं भरेगा। और यही बेलूर से 16 किलोमीटर दूर, चल चलिए 16 किलोमीटर दूर है होयसलेश्वर मंदिर। ये होयसल साम्राज्य की पुरानी राजधानी द्वार समुद्र है। यहाँ की खासियत है यहाँ के दो जुड़वा मंदिर और यहाँ के पत्थर। यहाँ के पत्थरों को कहा जाता है सोप स्टोन, जिनकी स्पेशलिटी है कि ये हैं तो पत्थरों की मूर्तियाँ लेकिन किसी धातु की बनी हुई प्रतीत होती हैं। और फिर होयसलेश्वर मंदिर से सोमनाथपुरा जाना ना भूलिएगा आप। मैसूर के पास स्थित है ये मंदिर और देखने में लगता है बिल्कुल एक स्टार की तरह। तो डियर रेनबो लिसनर्स, ये जान लीजिए, ये जान लीजिए आपकी होयसल के ये मंदिर केवल प्रार्थना स्थल नहीं है बल्कि ये उस दौर के शिल्पकारों की धैर्य की परीक्षा है, जहां हर पत्थर एक कहानी सुनाता है और हर कोना कला का उत्सव।

0: ओडिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: कम प्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RKLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: कागज

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: Hi, this is Udit Narayan. You are listening 102.2 FM Rainbow शहर की म्यूजिकल हार्टबीट। दिल से जुड़े रहे और सुनते रहे शहर की म्यूजिकल हार्टबीट को।
2: On air always in heart, ये है 102.2 FM Rainbow कानपुर की आवाज। म्यूजिकल जर्नी विद प्राउड एंजॉय कर रहे हैं आप और शिप्रा चंद्रा है आपके साथ। पहला बारी है सिटी ऑफ जॉय की। कोलकाता से लगभग 160 किलोमीटर दूर बसे उस प्लेस की जिसे हम कहते हैं शांति निकेतन। तो शांति निकेतन के शांत और सुरम्य वातावरण में पहुंचने से पहले कोलकाता का रसगुल्ला और मिष्टी दोई अपनी ख्वाहिशों के अचार को जरा चख ही लिया जाए। तो इसमें क्या हर्ज है।

बीते कल में गिरफ्तार है। कोलकाता के उत्तर में पश्चिम बंगाल में बीरभूमि जिले के लाल मिट्टी और अम्रकुंज जिसे कहते हैं आमों का बगीचा, उसके बीच में बसा है शांति निकेतन। डियर रेनबो लिसनर, शांति निकेतन केवल एक जगह नहीं बल्कि एक विचार है। 2023 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर घोषित किया, एक ऐसा प्लेस जहां सादगी की शक्ति है। आपको यही फील होगा जब आप शांति निकेतन गृह में प्रवेश करेंगे जिसे रवींद्रनाथ टैगोर के पिता महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। कांच मंदिर में बेल्जियम के रंगीन कांच एक दिव्यता का आभास कराते हैं। उत्तरायण परिसर में आप चले जाएंगे तो कुछ झलक सी फीलिंग है। शांति निकेतन की असली सोल तो यहाँ खुले आसमान के नीचे चलने वाली कक्षाएं हैं, साथ में यहाँ की साफ शुद्ध हवा जहाँ रवींद्र संगीत की धुनें हमेशा तैरती महसूस होती हैं। फील होता है कि सुंदरता सादगी में ही है।

On Air Always in Heart, ये है 102.2 FM Rainbow कानपुर की आवाज। म्यूजिक आर जर्नी विद प्राउड एंजॉय कर रहे हैं आप शिप्रा चंद्रा के साथ। जेपी जोशी, ये वो नाम है जिसने 1967 से 68 में सनसनी मचा दी। जी हम आप पहुंचे एक ऐसे प्लेस पर जिसकी खोज 1967 से 68 में जेपी जोशी ने करी और यहां पर है 10 बड़ी प्रतीकों वाला साइन बोर्ड जो खुदाई में मिला। और आप जानते हैं कि ये दुनिया के सबसे पुराने साइन बोर्ड में से एक माना जाता है, एक ऐसा एरा जब लोग साइन बोर्ड का यूज करते हैं। तो साइन बोर्ड का यूज करते थे जो ये साबित करता है कि यहाँ के लोग साक्षर और व्यवस्थित थे। क्या जानते हैं आप उस प्लेस का नाम जिसे साल 2021 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। आपको बता दें कि गुजरात के भचाऊ तालुका में स्थित है ये प्लेस। वेल, रन ऑफ कक्ष की सफेद चादर के बीच में बसा है धोलावीरा, सिंधु घाटी सभ्यता का एक ऐसा रत्न जो हमें 5000 साल पीछे ले जाता है। 5000 साल पीछे कैसे होंगे वो लोग। 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर बने इस शहर की इंजीनियरिंग आज के आधुनिक शहरों को भी मात दे देती है। धोलावीरा उस जगह का नाम है। धोलावीरा समय की रेत से निकला एक शहर जहां के लोग पढ़े लिखे थे, एक अर्बन प्लानिंग के साथ व्यवस्थित नगर में रहते थे और ये नगर 3 भागों में विभाजित था। पहला भाग था सिटाडेल जहां पे शासक वर्ग रहता था, फिर मिडल टाउन जो उस राज्य के अधिकारियों के लिए था, और फिर था लोअर टाउन जहां बसते थे धोलावीरा

ये आम नागरिक। और आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि जबकि आज हम अवेयर करते हैं लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए, उस दौर में वहाँ वेल मेंटेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी थे। बारिश की एक एक बूंद को सहेजने की कला वो बखूबी जानते थे। तो शायद यही कारण है कि ये शहर एक रेगिस्तान के बीच में भी फला फूला। वेल, धोलावीरा पहुँच कर वक्त को महसूस कर सकते हैं आप, और यकीन मानिए ये एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा। कैसे होंगे वहाँ के लोग, वहाँ की संस्कृति, क्या आपकी और हमारी तरह?

मजेकार शो को वाइंड अप करने का टाइम हो चला है और चलते चलते रामप्पा मंदिर का जिक्र जो है भगवान शिव रामलिंगेश्वर स्वामी को समर्पित। पालमपेट गांव मुलुगु तहसील तेलंगाना में स्थित है ये एक ऐसा मंदिर है दोस्तों, यहाँ की म्यूजिकल पिलर्स और सैंड बॉक्स टेक्नोलॉजी को फील करके आप अचंभित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। हाईटेक इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना और शायद यही वजह है कि इस मंदिर का नाम उसके शिल्पकार रामप्पा के नाम पर रखा गया और इसे साल 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला। तो डियर रेनबो लिसनर्स, म्यूजिकार जर्नी विद प्राउड का ये सफ़र आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। ईमेल कीजिए हमें, हमारा ईमेल आईडी है aarkansometia@gmail.com और आप प्रोग्राम से दीजिए शिप्रा चंद्रा को अनुमति। नमस्कार, चलते चलते प्ले कर रही हूँ ये खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए और इस ट्रैक के उस पार आपकी पसंद प्रोग्राम का करिए इंतज़ार।

नमस्ते कानपुर, मैं हूं मनोज मुंतशिर शुक्ला और आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर, कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ऑन ईयर ऑलवेज इन हार्ट, ये है 102.2 FM रेनबो कानपुर की आवाज़।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और

प्रोग्राम आपकी पसंद में स्वागत है आपका, शिप्रा चंद्रा है आपके साथ और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं जिस गीत के साथ, वो है फिल्म जो जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सूरज और चंदा फिल्म के नगमे के साथ। मोहम्मद रफी की आवाज है, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने। इस गीत के लिए हमें ईमेल भेजी है, लिखा है प्यार भरा आदाब, आप खैरियत से हूँ, दुआ में याद रखना, भाई मूसा शेख ने सनावस से। तो सूरज और चंदा इस फिल्म के गीत के साथ जुड़ रहे हैं हमारे और भी लिसनर्स हैं जिनकी ईमेल हमें एक के बाद एक लगातार स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आते हुए। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी और आप सभी के साथ। बिहार स्टेट डुमराव से असमा अंसारी, आमना परवीन, टुकटुक अंसारी, लड्डू अंसारी, वलीउल्लाह अंसारी। और गाजियाबाद से जुड़ चुकी हैं सीमा गांधी, मनोहर लाल गांधी डोंडी, छत्तीसगढ़ से मास्टर कबीर डोम और राधिका पूजा डोमीन के नाम शामिल कर रहे हैं। जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा, इन्होंने हमें ईमेल भेजी है और सुधीर नूतन और संदीप गुनगुन के नाम भी शामिल हैं करनाल से। रोहितास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज, ऋषि शिंदे और कृष्णा घोटके के नाम शामिल कर रहे हैं इस गीत के साथ। सूरज और चंदा इस फिल्म का ये नगमा आप तक पहुंच रहा है मोहम्मद रफी की आवाज में।

शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी जिस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वो है फिल्म मदर इंडिया से, जिसे आवाज दी है अपनी लता मंगेशकर ने। नौशाद का संगीत है और इसे लिखा है शकील बदायूनी ने, और इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। प्रेम पूर्वक आदाब लिख रहे हैं, आपको भी हमारा आदाब। गांव कुम्हारखेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, आप सभी के साथ धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू लिख रहे हैं, आपका हर पल खुशियों से भरा हो। और रैनी सॉन्ग लिख करके भेजा है कृष्णा घोट के प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, यशराज, सुनीता ने, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से। और स्टेशन रोड जमशेदपुर से कनेक्ट हो चुके हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया और सोनू भाटिया प्रोग्राम के साथ। खंडवा रोड सनावत से शाहबाज, अरबाज, फरहाज, फरदीन, समीर, डॉक्टर मोइन शेख के नाम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर बाड़ खंडवा से योगेश गुजराती और रेखा गुजराती के नाम जुड़ चुके हैं प्रोग्राम के साथ। मदर इंडिया फिल्म का नगमा है ये, आप तक पहुंचने को तैयार।

आपका हर पल खुशियों से भरा हो। लिख रहे हैं जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र, शेख मूसा भाई जान और भाई राजकुमार बुटाना। और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश, जगताप। और आप सभी लिसनर से सुनना चाहते हैं जिस गीत को, वो है फिल्म राम लखन से। अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की आवाजें हैं, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और शब्दकार आनंद बख्शी। इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। और आप सभी के साथ जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हो चुके हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह। धनोरा बिटाली तहसील नांदुरा जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल और सचिन पाटिल के नाम शामिल कर रहे हैं। कभी सुबह को याद आते हैं, कभी शाम को याद आते हो, कभी कभी इतना याद आते हो कि आईना हम देखते हैं और नजर तुम आते हो। लिख रहे हैं होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु खोरवाल। ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से कनेक्ट हो चुके हैं राम शरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललता खर्चे, गणेश कार्तिक और परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी। लिख रहे हैं हमें कोई भी फिल्म का गाना अपनी पसंद का सुनवा दीजिए। प्रेम पूर्वक नमस्कार लिखा है, बड़ी खूबसूरत सी मेल है ये रंग बिरंगी पेड़ों के साथ और गुलाब के फूल के साथ। ग्राम पंचायत काली गांव से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित भायाल कुमार, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख और सानवी और समस्त राजे जाधव देशमुख भायाल परिवार पहुंच रहा है ये गीत आप तक फिल्म राम लखन से।

तक पहुंचा 102.2 एफएम रेनबो कानपुर, सुन रहे हैं आप प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया सुनने के ख्वाहिशमंद हैं जिस गीत को, वो है फिल्म रास्ते प्यार के। इस फिल्म के जिन्होंने गाया है वो हैं लता मंगेशकर और एसपी बालासुब्रमण्यम, और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और इसका संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं रवेल खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू भावना मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, डुग्गू सिक्का और कोयल सिक्का के नाम शामिल कर रहे हैं। और कनेक्ट हो चुके हैं ग्राम पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति शिवांश वर्मा। फजिलका पंजाब खेड़ा परिवार भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल लाडी खेड़ा, शालिनी तिवारनशी वाड़ी और आरबी खेड़ा, जीवन सिंह समेत समस्त खेड़ा परिवार शामिल हो चुका है प्रोग्राम में और तहे दिल से शुक्रिया लिख रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राय, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मेहराज जहां का नाम भी शामिल है। गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और बेबी मुस्कान के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे नियमित श्रोतागढ़ हैं धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और ईशान और पूजा परिहार, और आप सभी के साथ जिनका नाम हम शामिल कर रहे हैं वो हमारे लिसनर्स हैं मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून, निशा शबिस्ता, मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी। जुड़ चुके हैं रघुनाथपुरा जिला श्री

गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी पहुंच रहा है ये ट्रैक आप तक फिल्म रास्ते प्यार के से।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में है आपके पसंद प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक। गांव हाड़ी खेड़ा ज़िला सिरसा हरियाणा से इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद है राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और सार्थक शर्मा। इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सरगम फिल्म का ये गीत सुनने के ख्वाहिशमंद थे जो श्रोतागण, उनके नाम हम आपको बता चुके हैं और अब जो हमारे श्रोतागण इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं उनके नाम भी सुन लीजिए।

गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अभिराज सिंह के नाम शामिल कर रहे हैं। जय जी नेंद्र श्रोता संघ पर बड़ी महाराष्ट्र से कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ रूपेश संघई, महेश प्रज्ञेश और प्रीतेश संघई। आप सभी के साथ मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन, अनम, शहनाज और यशफ अब्बासी के नाम शामिल कर रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर।

यीशु संग गई। आप सभी के साथ मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी नावेद हसन अब्बासी रसीद वारसी सुहेल हसन अनम शहनाज और यशफ अब्बासी के नाम शामिल कर रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद का नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। चंद्रनगर सहारनपुर से जुड़ चुकी हैं आशा डोमिन सोनाली सुरेश पथिक डोम और राजगढ़ बिहार से महाराज पवन उमा और प्रभा रानी जाटव के नाम शामिल कर रहे हैं। जिला नांदेड़ इताला महाराष्ट्र से शंकर लाल जायसवाल गणेश लाल शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी जायसवाल कनेक्ट हो चुकी हैं प्रोग्राम के साथ। सनावत से बेबी तस्कीन अर्शिल मोहम्मद रजा क्रिस शेख के नाम शामिल कर रहे हैं और कैथल हरियाणा से जुड़ चुके हैं जयवीर सिंह ठाकुर अनिल शर्मा और आप सभी के साथ। मोरटक का माफी जिला खंडवा से किसान श्रोता जगन्नाथ पटेल कमला अंतिम ज्योति शुभम देवी किशन भावना मनमानस और कर्णिका पटेल के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। पौशी को तैयार ये गीत कर रहा है अपनी बारी का इंतजार फिल्म का नाम सरगम।

102.2 FM रेनबो कानपुर सुन रहे हैं आप। प्रोग्राम चल रहा है आपकी पसंद, सुन रहे हैं आप शिप्रा चंद्रा के साथ। और प्रोग्राम का नेक्स्ट ट्रैक है जिनकी पसंद है, जिनकी ख्वाहिश है, वो हमारे लिसनर्स हैं पुटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। हमारे आप सभी लिसनर्स सुनना चाहते हैं हरजाई फिल्म का नगमा। लता मंगेशकर की आवाज़ है, संगीतकार है आरटी बर्मन और इसे लिखा है निदा फाजली ने। और इसी ट्रैक के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीटी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। और कालका से शुभ चंद्र बजाज, साहिल बजाज और पिट्टा बजाज। कृपया एक बार ईमेल शामिल हो जाने के बाद बार बार ईमेल ना भेजें और एक ही ईमेल को कई बार भी ना भेजें। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुलनाल, अविराज सिंह के नाम शामिल कर रहे हैं। और बहसौल सी तमड़ी बिहार नूर महल से मसरत जहां नाज, शिक्षिका तज तलत जहां नाज, फरहत रिफत नजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। नई बस्ती गंज टुंडवारा से कनेक्ट हो चुके हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम अंसारी। और आप सभी के साथ पिपरिया से कनेक्ट हो चुके हैं कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता, समढील नावापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक और अंकुर राधव गुप्ता के नाम शामिल कर रहे हैं। फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद। न्यूज ऑन एआईआर ऐप के साथ कनेक्ट हैं हमसे देश और दुनिया के लिसनर्स। चंडीगढ़ सिटी से कनेक्ट हो रहे हैं सतीश अनेजा और बिमला अनेजा और ये गीत आप तक पहुंचने को है तैयार, लीजिए सुनिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: आरबीआई कहता है
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: ऑनियर ऑलवेज इन हार्ट, ये 102.2 FM रेनबो कानपुर की आवाज। आपकी पसंद प्रोग्राम में कनेक्ट हो चुकी हैं इंदिरा विहार दिल्ली से बेबी अंसारी, निशा परवीन और डब्लू अंसारी और आप सभी के साथ डोंडी लोहारा से प्रभा डोमीन और शंकर देव डोम के नाम लिखे हुए हैं इस ईमेल में। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सभी लिसनर्स जो गीत वो है फिल्म अमर अकबर एंथनी से। किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की आवाजें हैं इस गीत में और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। बेहद खूबसूरत तिरकता हुआ नगमा आप तक पहुंचने को है तैयार, लेकिन उससे पहले हमारे और भी लिसनर्स जो कनेक्ट हैं प्रोग्राम से उनके नाम। मैरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही सरिता गवाड़कर, प्रणिता सिद्धांत गवाड़कर, अर्जुन गवाड़कर टुक टुक और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुरा से वैशाली शैलेश, सुमित कुमारी ध्वनि गवाड़कर, परी और प्रिंस एकांश गवाड़कर जुड़ चुके हैं प्रोग्राम के साथ। भागवत वर्मा, शांति देवी लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा दतरेंगी से कनेक्ट है हमारे साथ, सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण शामिल हो चुके हैं। राम और पोस्ट मुंगेसापुर कानपुर देहात से हमारे नियमित श्रोतागढ़ हैं। रामेश्वर कठेरिया, उमाकांति कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु कठेरिया, प्रज्ञा, प्रतिमा और वेद बाबू कठेरिया और समस्त कठेरिया परिवार लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हमारा धन्यवाद। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से जुड़ चुके हैं मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे और आप सभी के साथ। बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी लिख रहे हैं तहे दिल से शुक्रिया। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी और आपके साथ लिखा है मोहिनी ऋतिक और बलवीर सिंह का नाम। ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से अनिल कटियार, डिम्पी कटियार, गौरव सौरव और खुशी कटियार हमारे आप सभी लिसनर्स के नाम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में। मूंदी चक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी, कमल किशोर शाह और पहुंचने को है तैयार जो गीत अब आप तक पहुंच रहा है ये रहा।
7: You see, the whole country of the system is juxtapositioned by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of your own babasate.
8: What?
9: My name is Anthony Gonsalves.
8: Gonsalves?
9: Right. My name is Anthony Gonsalves.

0: तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: क्यूट।

0: और जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम
2: उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश सुनने के ख्वाहिशमंद है जिस गीत को, उस फिल्म का नाम है रफू चक्कर। इसी गीत के साथ कनेक्ट हो रहे हैं सप्तरंग श्रोता परिवार से, कुंभार गली श्री रामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले साथ में कनेक्ट हो चुके हैं। पुनावले पुणे से अजय सोनवाने, करिश्मा, अविका, विशाखा लिख रहे हैं धन्यवाद, आप सब को भी हमारा धन्यवाद। और दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से कनेक्ट हो चुके हैं बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी तनुश्री गुप्ता, पिहरा बाजार झुमरी तलई, गिरडीह से शिवानी कुमारी, प्रियंका कुमारी और अभय कुमार सनातनी, गुड्डू कुमार, खदान कोटी बोरो, पारा चौक बसबेरिया, डब्ल्यू बी से मुन्नी देवी शॉ, जयप्रकाश, वसंतलाल शॉ, रिया जिया, टू सी आई शी, अनिरुद्ध बाबू के नाम शामिल हो चुके हैं। संबलपुर कांकेर से फागू राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून कनेक्ट हो गई हैं प्रोग्राम के साथ। तखतपुर छत्तीसगढ़ से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा और आप सभी के साथ। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा के नाम शामिल कर रहे हैं। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा और जनकपुरी सहारनपुर से कनेक्ट हो चुकी हैं प्रोग्राम के साथ। हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलिस डिकेस्ट्रो। मेरठ कैंट से कनेक्ट है दिग्दर्शन और कविता गौड़ हमारे प्रोग्राम के साथ। पाकुड़ झारखंड से हमारे लिसनर्स हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु, तासु, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद और आप सभी के साथ ये नाम लिखे हैं मुन्ना भगत और गुड्डी भगत के बोड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, कैथल हरियाणा से मधु नायक लिख रही हैं थैंक्स, पहुंच रहा है ये ट्रैक आप तक।

कनेक्ट हो रहे हैं हमारे लिसनर्स हमारे साथ लगातार। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव अनिल जैन संजय ढींगिया और दर्शन भाई जिस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं वो है फिल्म राजा और रंक से। मोहम्मद रफ़ी ने गाया है इस गीत को, खूबसूरत गीत है, प्रोग्राम का आखिरी गीत है, पहुंचने को आप तक तैयार, और इसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसी गीत के साथ कनेक्ट हो चुके हैं हमारे लिसनर्स हैं खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू और भाविका सिक्का, और

नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू बेगम इशरत अकरम वसीम अकरम रुबीना वसीम आरिज वसीम नदीम शमीम ममता रानी शर्मा पूनम कुमारी कुआत बिहार से शेख जफर हसन और नरगिस जफर कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम के साथ। बसवत रोड परभणी महाराष्ट्र से रणजीत कारेगावकर कंचन सृष्टि और समरजीत कारेगावकर के नाम शामिल कर रहे हैं। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम से। समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता श्रद्धा गुप्ता अदिति गुप्ता राधे दीपक और अंकुर राघव गुप्ता कनेक्ट हो चुके हैं प्रोग्राम से। बहुत ही खूबसूरत गीत पहुंचने को है आप तक तैयार फिल्म राजा और रंग से मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

बेहद खूबसूरत गीत आप तक पहुंचा फिल्म राजा और रंग से। और अब चलते चलते नाम शामिल कर रहे हैं मनाली हिमाचल से हर्ष, विनय, विनीत और रोजस भाई के, चंडीगढ़ से शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा के। इसी के साथ अब आपकी पसंद प्रोग्राम से दीजिए अनुमति, शिप्रा चंद्रा को नमस्कार। सुन रहे हैं आप 102.2 FM रेनबो कानपुर और हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार। शाम के 5 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने कहा कि ये प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देशभर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति में न्यायमूर्ति अरविंद कुमार के अलावा कलकत्ता, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय तथा बॉम्बे उच्च न्यायालयों के न्यायमूर्ति दिबांग सु बसाक, अश्विनी कुमार मिश्रा और सोमशेखर सुंदरेशन शामिल होंगे। मथुरा के वृंदावन में भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष सुनील जे सिंह ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से देश और व्यापारी आगे बढ़ रहा है। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने गए 6 बच्चे अचानक गहरे पानी में चले जाने से डूब गए। हादसे की सूचना मिलते ही थाना कमला नगर पुलिस मौके पर पहुंची और पीएसी की रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। पुलिस गोताखोरों और स्थानीय तैराकों की मदद से बच्चों को यमुना से बाहर निकाल लिया गया। सभी को गंभीर हालत में तत्काल एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने नगर निगम में ईंधन के अनावश्यक खपत को नियंत्रित करने एवं संसाधनों के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नगर आयुक्त गौरव कुमार को पत्र लिखकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। महापौर ने नगर निगम में ईंधन की बचत को प्राथमिकता देते हुए निर्देशित किया है कि जिन अधिकारियों और अभियंताओं के पास वर्तमान में नगर निगम से 2-2 वाहन आवंटित या संलग्न है, उनसे 1 वाहन तत्काल हटाया जाए और केवल 1 ही वाहन उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबोज़ घंटे तरन्नुम के साथ।

और 5:02 हो चुके हैं, एक बार फिर से हाजिर है तरन्नुम लेकर प्रोग्राम टॉप 10। सुनते रहिए रेनबो धड़कन लखनऊ की। और आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे 2001 के उन 10 गानों की जो रहे टॉप मोस्ट, जिसमें से नंबर 10 पर है ये ट्रैक।

हाँ बिल्कुल ऐसे ही कुछ खूबसूरत अंदाज था 2001 के गानों का। और ये जो गाने होते थे ना, ये गलियों गलियों बजा करते थे। और वो जो दौर था वो था कैसेट का दौर, सीडी प्लेयर्स का जमाना, गली गली बजते रोमांटिक गाने और हर दिल में बस एक ही बात, म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। तो बस ऐसे ही इंजॉय करते रहिए इस एक घंटे में 2001 के 10 सुपर हिट सॉन्ग्स, जिसमें कह सकते हैं कि एक नॉस्टैल्जिक म्यूजिकल राइड है ये। और बस जब उस दौर में हम पहुंच जाते हैं, उस दौर के जब गाने सुनते हैं, तो एक बहुत अजीब सा सुकून मिलता है। एक ऐसे रिदम होता था उन गानों में, ऐसे बोल होते थे जो दिल तक उतर जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका दिल खुश होता है तो आप ये ध्यान नहीं देते कि जो गाना प्ले हो रहा है उसके जो अल्फाज हैं वो क्या हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान देते हैं, बस आप झूमना चाहते हैं, गाना चाहते हैं। लेकिन जब आपका दिल थोड़ा सा उदास होता है या थोड़ा सा किसी ने तोड़ दिया होता है, तब आपका दिमाग कहाँ जाता है, आपके गाने के एक एक बोल, और आप चाहते भी हैं, सोच सोच के आप चाहते हैं रोएं और गाने रुलाते हैं। तो कुछ गाने ऐसे भी थे इस दौर के जिन्होंने रुलाया, लेकिन गाने सुपर डुपर हिट थे। कुछ गाने ऐसे भी थे जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ सोचने पर मजबूर किया, जैसे कि जो अगला गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, और इस गाने को लकी अली ने अपनी आवाज़ दी है। यस एग्जैक्टली यही ट्रैक, तो पहुँचा दें आप तक।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: बच्चों के तेज दिमाग और तंदुरुस्त शरीर का एक ही सीक्रेट, उन्हें दे विटामिन और न्यूट्रिएंट से भरपूर ब्रेकफास्ट, यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।

और दोस्तों ये जो सॉन्ग आप सुन रहे हैं शाहरुख खान और काजोल का जो मैजिकल केमिस्ट्री थी और सोनू निगम अलका याग्निक की सोलफुल आवाज थी, तो इस गाने में चार चांद लगा दिए थे। और कहते हैं ना कि उस दौर में यानी 2001 में इस गाने ने एक नया लेवल दिया था। इजिप्ट की खूबसूरत लोकेशन थी और इतना ड्रीमी म्यूजिक है कि आज भी अगर लोग सुनते हैं तो एकदम इसमें नयापन लगता है। और नेक्स्ट जो अब हम ट्रैक की बात करने वाले हैं, ट्रैक नंबर 7 टॉप 10 पर जो है, और वो है फिल्म आमिर खान की, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था लगान। और ये सिर्फ स्टोरी नहीं थी बल्कि जो म्यूजिक थी ना उसका जबरदस्त म्यूजिक था। और म्यूजिक कंपोजर कौन थे आपको बता दें, AR रहमान थे। और उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज ने जो ये गाना अभी आप सुनेंगे, इतना बेहतरीन गाना था, इतना बेहतरीन। और इसकी जो म्यूजिक है, एक एक इसकी जो बीट है उसको जब सुनूं तो ऐसा लगता है कि बस ये जो गाना है वो आजकल के दौर का है। और सही बात है कि अगर किसी भी चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की जाए और जो मेहनत है कामयाब ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो लगान एक यादगार फिल्म और लगान के जितने भी ट्रैक हैं वो भी यादगार, जिसमें से एक ट्रैक मितवा आप तक।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

0: से बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

शिद्दत मोहब्बत और खलूस से भरपूर एक शाम है। शाम अवध इस शाम का उन्वान है। शाम अवध हर शाम 6 से 7 आपके अपने FM रेनबो पर।

म्यूजिकल सफर में जो एक प्यार की हल्की सी खुशबू और दिल की मीठी धड़कनों को अगर आप महसूस करना चाहते हैं विद म्यूजिक, तो फिर ये गाना आपके लिए है। और ये गाना सिर्फ एक मेलोडी नहीं है, बल्कि उन जज्बातों की आवाज़ है जो दिल चुपके से महसूस करता है। बॉम्बे जयश्री की सोलफुल आवाज और ब्यूटीफुल म्यूजिक इस ट्रैक को टाइमलेस बना देते हैं। तो बहुत ही, एक कहते हैं ना कि जब आप किसी प्यार के बारे में बात करते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, तो फिर आपका जो होठ है, आपका जो दिल है, आपका जो दिमाग है, वो खुद मुस्कुराने लगते हैं जरा जरा। 5:32 प्रोग्राम टॉप 10 तरन्नुम आपके साथ, सुनते रहिए।

जी हाँ दोस्तों, 2001 में ये जो गाना आया था अंडे का फंडा, ये भी उस वक्त बहुत ही टॉप पे रहा था। और अब जिस गाने की हम बात करने वाले हैं और जो गाना हम आप तक पहुंचाने वाले हैं, एक ऐसा ये गाना है कि कह सकते हैं कि

5:40 हो रहे हैं दोस्तों, और आप सुन रहे हैं 2001 के कुछ ऐसे सॉन्ग जो टॉप 10 लिस्ट में उस दौर में शामिल थे। और अभी तक जो आपने गाने सुने उनमें एक और भी गाना आया था उस दौर में, उस सन में कह सकते हैं कि ये जो गाना था ये कह सकते हैं कि उस प्यार को, उस कनेक्शन को बयान करता है जो दो दिलों के बीच बिना कुछ कहे महसूस होता है। जब कोई इंसान हमारी हर धड़कन, हर दुआ और हर ख्याल में बस जाए तो शायद वही असली मोहब्बत होती है। इस गाने की सॉफ्ट मेलोडी और हार्ट फेल्ट लिरिक्स आज भी लिसनर्स के दिल को टच करते हैं। चाहे लॉन्ग ड्राइव हो, रेनी इवनिंग हो या किसी अपने की याद, ये सॉन्ग हर मूड को और भी स्पेशल बना देता है।

यार सच बताएं, अगर किसी को अपने दिल की बात बिना बोले समझानी हो तो भी ये गाना एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब वक्त हो गया है कि रोमांस और इमोशन से भरे इस खूबसूरत गाने को, इस खूबसूरत नगमे को महसूस करने का, और ये जो गाना है उसे पहुंचाते हैं हम

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

अच्छा, 2001 में जो गाने आए थे वो एकदम अलग थे, बिल्कुल अलग, और बिल्कुल अलग उनकी म्यूजिक थी, बिल्कुल अलग। यानी अगर पार्टी एंथम में आपको चाहिए कि भाई कोई ऐसा सॉन्ग जिसपे बस पैर जो है वो थिरकते रहें, तो भाई एक गाना ऐसा था जो अभी आपने सुना, अंडे का फंडा। लेकिन उसी कैटेगरी में अगर रख सकते हैं हम नेक्स्ट ट्रैक को, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। एक फिल्म आई थी और उसमें जो फिल्म का नाम था बताएंगे नहीं, क्योंकि उस फिल्म का जो टाइटल ट्रैक है वो उस जमाने में बहुत हिट था, और लड़के लड़कियां इस गाने को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे। कहते हैं ना कि हर इंसान की लाइफ में, हर इंसान की ज़िंदगी में एक दौर ऐसा आता है कि जब आप तन्हाई में बैठ के सोचते हैं उस दौर को कि ऐसी ऐसी बातें हम लोग करते थे, या ऐसे काम करते थे, ऐसे कपड़े पहनते थे, ऐसे मुस्कुराते थे, ऐसे अपने आप को सजा संवार के बाहर निकलते थे, तो एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है, मतलब एक अजीब सी हंसी आती है कि क्या दिन थे वो, कितने नादान, कितने अनजान से लोग थे। और इसी को तो कहा जाता है कि यंग एज जब आती है तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, सारे माहौल अच्छे लगते हैं, सारे लोग अच्छे लगते हैं। यस, एक्सक्यूज मी, ट्रैक आप तक।

0: सितारे।
1: एक्सक्यूज मी, क्योंकि 5:52 हो गए हैं और पूरे टॉप 10 ट्रैक हमें आप तक पहुंचाने हैं, इसलिए थोड़ा सा इस ट्रैक को कम करते हैं और दिल को मिलाते हैं इस ट्रैक के साथ।

और आपकी जो दिल है वो दिल की जो धड़कन है उसको दिल की धड़कन के साथ यानी रेनबो के साथ ऐसे ही मिलाते रहिए और नेक्स्ट प्रोग्राम लेकर यानी शामे और लेकर भी हाजिर रहेंगे हम. तरन्नुम आपके साथ, सुनते रहिए रेनबो द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ.

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया है। एजेंसी ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं और जांच एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ये निर्णय लिया है। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। नई परीक्षा तिथि और दोबारा जारी होने वाले एडमिट कार्ड का कार्यक्रम जल्द ही आधिकारिक माध्यमों से घोषित किया जाएगा। एनटीए ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों से केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने और सोशल मीडिया पर प्रसारित अपुष्ट खबरों से बचने की अपील की है। एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया कि मई 2026 चक्र में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों का डेटा, उम्मीदवार स्थिति और चुने गए परीक्षा केंद्र आगामी पुनर्परीक्षा के लिए मान्य रहेंगे। इसके लिए दोबारा पंजीकरण की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक चल रही है। इस बैठक में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्ष व जिला प्रभारी शामिल हैं। बैठक में संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा बूथ कमेटियों के गठन व प्रशिक्षण अभियान के बारे में पूछताछ होगी। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में कल से पिछली विजेता तेलंगाना व मेजबान यूपी सहित विभिन्न राज्यों की 16 टीमों में शामिल 275 खिलाड़ी अस्मिता नेशनल महिला रोइंग लीग में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। लीग में राज्य सीधे भाग लेने के बजाय जिला स्तर पर प्रतिनिधि

कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश से मेजबान जिले की टीम गोरखपुर क्वींस अपनी चुनौती पेश करेगी। आज आरएफआई के महासचिव शुभाशीष मुखर्जी ने तैयारियों का जायजा लिया और कोर्स ओपनिंग की शुरुआत कराई। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर लखनऊ में सुबह से ही मंदिरों के बाहर बजरंग बली के जयकारों के बीच भक्त कतारों में दर्शन करते नजर आए। दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। अलीगंज के नए और पुराने हनुमान मंदिरों के आसपास सुबह से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई है। यहां प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। अगला बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। FM रेनबोज घंटे तरन्नुम के साथ।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, हमको अच्छा नहीं लगता कोई हम नाम तेरा, कोई तुस्सा हो तो नाम भी तुस्सा रखे। उनसियत का सलाम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तरन्नुम है आपके साथ, प्रोग्राम शाम अवध, सुनते रहिए।

और 6:07 हो चुके हैं और प्रोग्राम शुरू हो चुका है शामियावाद। और साथ ही साथ ये जो वक्त है यानी 6 बज चुके हैं, लेकिन धूप कहीं ना कहीं आपको हल्की नजर आ रही होगी। लेकिन पहले लोग बड़ा खुश थे कि भाई मई शुरू हो गया है, लेकिन देखिए लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, मई देखो चल रहा है लेकिन पता नहीं चल रहा है ना कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लोग एसी को ऑन करने में सोचते थे, ऑन करें, नहीं नहीं गर्मी, मई है भाई गर्मी है, ऑन करो एसी। लेकिन दूसरा कहता था कि नहीं मौसम ठंडा है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अब आपको धूप करेगी परेशान और पारा आपका जो इम्तिहान है कह सकते हैं वो देगा। और एक हफ्ते से ये लगातार चल रहा था कि मौसम का जो मिजाज था लगातार बदल रहा था, कभी तेज हवाएं चल रही थी, कभी बूंदाबांदी हो रही थी, तो जो टेम्परेचर था उसमें काफी गिरावट आई थी, लोगों को राहत मिली थी। लेकिन अब मौसम ऐसे ही रहने वाला है, यानी ड्राई रहने वाला है, बहुत पसीना, गर्मी, तेज धूप, ये सारी चीजें, पारे में उछाल, ये सारी चीजें हर साल पेपरों में आती हैं, हम लोग पढ़ते हैं, न्यूज में आता है ऐसे बच के करिए, वैसे बच के करिए, और फिर हम लोग भूल जाते हैं कि पिछले साल कितनी शिद्दत की गर्मी थी, या कितना तेज जाड़ा पड़ा था, या कितनी ज्यादा बारिश हुई थी। लोग याद नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि उतना ज्यादा ध्यान हम उस चीज पर नहीं दे पाते हैं। तो फिर आखिर ध्यान हम किस चीज पर देते हैं? ध्यान हम अक्सर उन बातों में लगाते हैं जो शायद आप ये कह सकते हैं कि या तो हमारी लक में नहीं है, या हमारे नसीब में नहीं है, या अक्सर लोग ध्यान अपने पर कम दूसरों पर ज्यादा देते हैं, दूसरों पर वो निगाह रखते हैं, उनकी एक एक कह सकते हैं गतिविधियां जो होती है ना उस पर ध्यान देते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अर्न कर रहे हैं, वो कैसे घूम रहे हैं, ये सारी चीजें जो है लोग ध्यान देते हैं। इसलिए हमेशा कहा जाता है कि अगर आप थोड़ा सा ध्यान अपने पर देना शुरू कर दें, थोड़ा सा अपना आप हेल्थ का ध्यान रखें, चाहे वो मेंटल पीस हो, चाहे वो आपकी फिजिकल एक्टिवनेस हो, फिजिकल एक्टिविटीज आप करिए, कुछ ऐसा काम कीजिए जिसमें आपका दिल ऐसा महसूस ना हो कि दिल खाली हो गया है। अक्सर लोग ये कहते नजर आते हैं कि भाई दिल खाली हो गया है, तो एक चीज ये भी समझ लीजिए कि गर्मी का असर जो होता है ना, मौसम का जो मिजाज होता है वो हमारे ब्रेन पे काफी असर डालता है। मौसम अगर कूल है तो आप देखिए कि इंसान बहुत ही कूल रहता है, लेकिन मौसम अगर थोड़ा सा भी उल्टा हो गया, यानी कि मान लीजिए कि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुत गर्मी लग रही है, एकदम से आपको गर्मी लग रही है, एकदम से आपको लग रहा है कि बहुत तेज प्यास लग रही है, सारी चीजें हैं, तो भाई मौसम का तो असर है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी कुछ ऐसा नोटिफिकेशन दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो नंबर एक बात तो ये कि चलिए जो मौसम की हमने बात करी कि धूप ऐसे ही रहने वाली है, गर्मी ऐसे ही पड़ने वाली है, सारी चीजें हमने शेयर कर ली। लेकिन अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ की बात करें, अपनी मानसिक शांति की बात करें, तो एक चीज है जो कह सकते हैं नॉट बना के इंसान को रख ले कि अगर आप चाहते हैं कि मेंटल पीस आपके पास रहे, तो हमेशा बहुत ज्यादा लोगों से उम्मीदें बांधना छोड़ दीजिए। बहुत ज्यादा जो आप अच्छा करते हैं आप चाहें कि सामने वाला भी उससे ज्यादा अच्छा करे, ये चीजों को आप दिमाग से निकाल दीजिए, यानी हर चीज को अपनी लाइफ में बिल्कुल कम कर दीजिए। अपने अल्फाज, अपने एहसासात, और जो बहुत सारे लोगों की जो भीड़ होती है ना जिनसे आपको कोई दिली सरोकार नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं, आप जबरदस्ती चाहते हैं कि लोग आपके आसपास रहें, लेकिन क्या अकेले में जब आप होते हैं, आप तन्हाई में होते हैं, तो क्या आप वो चीज महसूस कर पाते हैं? अगर जवाब है कि नहीं, तो फिर अपने ऊपर आज से काम करना शुरू कर दीजिए। अब गर्मी की बात हमने की, तो भाई गर्मी है और बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा शिद्दत है, तो थोड़ा थोड़ा जो आजकल के सीजनल फ्रूट्स हैं उनका इस्तेमाल कीजिए। और ज्यादा आपको मेंटल अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा थकान हो गई है, तो फिर इसके लिए रेनबो है। रेनबो आपके पास एक से बढ़कर एक ट्रैक लेके आता है, जिसमें से एक ट्रैक है इश्क जां आप तक।

0: इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

अच्छा, कुछ शामें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अजीब होती हैं, बिल्कुल अलग होती हैं। मतलब कोई शाम ऐसी होती है जिसमें दिल करता है कि बहुत पेपी नंबर सुने जाएं, कुछ शाम ऐसी होती हैं जिनमें लगता है कि नहीं भाई, बहुत रिलैक्स किया जाए। और देखिए, शाम की बात हम कर भी कहाँ रहे हैं, अभी सूर्यास्त हुआ ही नहीं है। और सूर्यास्त की जो टाइमिंग है वो आपको बता दें कि अभी भी इसमें वक्त काफ़ी बाकी है, यानी कम से कम 19 मिनट बाकी हैं, यानी 6:44 पर सूर्यास्त होना है। और सोचिए ज़रा कि ये शामें कितनी देर में आती हैं और दिन कितने लंबे होते चले जाते हैं, और अक्सर ऐसा होता भी है। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आपका दिल खुश होता है तो फिर जो लम्हे होते हैं, जो दिन होते हैं, बड़े छोटे नज़र आते हैं।

बहुत कम दिन लगते हैं। ऐसा लगता है कि जो खुशी के लम्हे हैं उनको कैसे भी करके रोक लें, कैसे भी करके उनको बांध लें, कैसे भी करके उसी लम्हों में हम अपनी ज़िंदगी गुजार दें। और खुशी की अगर बात हम करें तो वही खुशी की बात एक ये है कि डाकघर में रविवार को भी आधार सेवा शुरू हो गई है, यानी संडे को भी लोगों को जो आधार सेवा है वो उपलब्ध करा रहा है। पहले दिन लखनऊ GPO चौक प्रधान डाकघर इंदिरा नगर गोमती नगर अलीगंज राजेंद्र नगर आलमबाग और आवास विकास कॉलोनी के डाकघरों में 200 लोगों ने इसका फायदा उठाया। इसके अलावा मोबाइल नंबर है, पता है, बायोमेट्रिक है, सारी चीज़ें भी आप अपडेट करा सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि भाई संडे आ रहा है तो फिर संडे को जो है पोस्ट ऑफिस बंद रहता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चली जाती हैं। और अब एक और खुशखबरी हम आपको देंगे और थोड़ी राहत मिलेगी। कहते हैं ना कि जब खुशियाँ मिलती हैं तो अजीब से जो चेहरे पर एक परेशानी हैरान कौन इंसान रहता है, और जब खुशी मिलती है तो एकदम से रिलैक्स हो जाता है, राहत मिलती है। और राहत है, लेकिन हम आपको बताएंगे कि राहत आखिर है तो किस चीज़ की है। लेकिन उससे पहले एक वक्त और हो गया है कि हम आप तक पहुंचा दें एक और खूबसूरत सा ट्रैक, क्योंकि अक्सर ये होता है अगर आप गाड़ी में हैं, अगर आप ऑफिस से निकले हुए हैं या अगर आप बहुत मूड में हैं तो फिर मेरी बातें इतनी अच्छी नहीं लगेंगी जितनी अच्छी आपको लगेंगे ये जो खूबसूरत से ट्रैक हैं जो हम क्यों करके रखे हुए हैं आप तक पहुँचाने के लिए। वो जो गाने हैं वो आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो फिर एक ट्रैक और आप तक।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: क्या बात है, आजकल टाइम से घर?
3: हाँ हाँ, बस एक फटाफट से अब मसाले वाली चाय जल्दी से पिला दो।
2: अरे ठीक है बाबा, लेकिन इतनी जल्दी में क्यों है?
3: अरे 7 बजे FM रेनबो पर कॉल जो करनी है।
4: जी हाँ, FM रेनबो लेकर आया है हर रोज शाम 7 बजे से हेलो FM कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए। तो कर डालिए अपने दिल की बात अपने पसंदीदा गाने के साथ।

बहुत सारे चेहरे ऐसे हैं जो आपसे दूर हैं, आप उनको वीडियो कॉल के जरिए देख सकते हैं, लेकिन अब वक्त आ रहा है कि आप उनसे मिलने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। हम बात कर रहे हैं समर वेकेशन की, और बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जो भाई सोचते हैं कि कौन सी ट्रेन कहाँ से गुजर जाती तो अच्छा था, कौन से लोग कहाँ से मिल जाते तो अच्छा था। ऐसे में रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच लखनऊ होकर, जी बिल्कुल आपने सही सुना, रेलवे ने गुजरात से बिहार के बीच लखनऊ से होकर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। और ये जो समर्स वेकेशन आ रहे हैं ना, इसको आराम से आप इजिली, अगर आप चाह रहे हैं कि आप गुजरात बिहार, या आप यहाँ से गुजरात जाना चाह रहे हैं या बीच में बिहार में उतरना चाह रहे हैं, जैसे भी आप चाह रहे हैं, तो ये जो एक बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन थी जो हमें लगा कि भाई बहुत जल्दी बतानी चाहिए आप लोगों को, बहुत जल्दी आप तक पहुँचानी चाहिए, तो वो हमने आप तक पहुँचा दी। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब ट्रेनों से जुड़ी अगर हम बात करें तो कुछ ट्रेनें हैं जो बदले हुए रूट से चलाई जाएंगी, क्योंकि आजकल रेलवे खंड पर, रेल खंड पर मरम्मत के काम चल रहे हैं। ऐसे में जयनगर अमृतसर एक्सप्रेस और दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस जो है वो बदले रूट से चलेगी, तो वहाँ पर कुछ इंटरलॉकिंग का काम है जो कराया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं दोस्तों कि अक्सर हम घर से निकलते हैं और सोचते कुछ हैं, होता कुछ है, पाना कुछ और चाहते हैं लेकिन मिलता कुछ है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी प्लानिंग के हिसाब से लेकर चलते हैं और प्लान जो हमारे होते हैं वो सक्सेस हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि हम नहीं समझ पाते, हम मतलब कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं, इतनी अच्छी हो जाती हैं कि जिनको हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, उम्मीद ही नहीं रख रहे थे कि ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में हो जाएंगी। और इसी में एक ऐसी चीज़ भी है जिसको हम और आप अच्छी तरह समझते हैं, मेरा इशारा आप किसकी तरफ है, और वो है मोहब्बत। फिलहाल कुट्टी मोहब्बत ट्रैक आप तक।

0: कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मेरा नाम सुशील कुमार है, मैं एक व्यवसायी हूँ और मेरी दुकान में चलता है सिर्फ एक ही चैनल, एफएम रेनबो।
3: आई एम संध्या त्रिगुनी। बच्चे तो दीवाने हैं मेरी टीचिंग के, मगर मैं दीवानी हूँ रेनबो एफएम की।
4: मेरा नाम आदित्य है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। पढ़ते वक्त हरदम मेरे साथ एफएम रेनबो निभाता है, मुझे एंटरटेन करता है, ताजा जानकारियाँ भी देता है। दैट्स व्हाई आई लव एफएम रेनबो।
5: ये तो सुन रहे हैं एफएम रेनबो और आप

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: छः बजकर 45 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, प्रोग्राम चल रहा है शाम में अवध, और इस प्रोग्राम के जरिए हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं आपकी लाइफ के लिए, हमारी लाइफ के लिए, सबके लिए, वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो बात है वो हम आपको बता दें कि जो स्वगणना फॉर्म है जो भरे जा रहे हैं, सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, एक चीज़ अच्छी तरह से आप लोग सभी लोग समझ लीजिए, जान लीजिए कि एक बार अगर इसमें नाम मुखिया का दर्ज हो गया तो फिर उसके बाद जो संशोधन है उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। इसलिए अगर आप फॉर्म भर रहे हैं और सबमिट करने से पहले दोबारा से अपना नाम जो है वो हमेशा बहुत ध्यान से चेक कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ गलत हो गया हो। और दूसरी चीज़ ये है कि भाई बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी समझ में ही नहीं आ रही है कि ये जो स्वगणना हो रही है, जो सेल्फ एनुमरेशन हो रहा है, इसको क्या है, कैसे, कहाँ जाएं, किससे पूछें। अक्सर लोग एक दूसरे से बात करते हैं, शाम का वक्त है, लोग पड़ोसी से पूछते हैं, ये बताओ तुमने ये कर लिया, उन्होंने कहा हाँ भाई हमने तो फॉर्म भर दिया, उन्होंने उनसे भरवा लिया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे पैसे भी ले रहे हैं आपसे। तो इसका बहुत ही ईजिली जो स्टेप बाय स्टेप है वो ये है कि इसका आधिकारिक जो पोर्टल है sc.census.gov.in, उस पर जाकर आप स्वगणना के लिए जो फॉर्म है वो फिल कर दीजिए। उसके बाद जो परिवार का मुखिया है उसका मोबाइल नंबर दर्ज

कीजिए और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन, यानी ओटीपी आएगा जो परिवार के मुखिया होंगे जो भरा जाएगा जिनका नाम, तो वो लॉगिन करेंगे। उसके बाद अपना जो स्टेट है, आपका जो राज्य है और जो जिला है उसको चुनिए। उसके बाद जो मकान की स्थिति है, लैंडमार्क चुनिए और घर की जो लोकेशन है उसको भी उसमें मेंशन कर दीजिए। अब सवाल आता है, जो मालिक हैं या जो किराएदार हैं, जो भी सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शौचालय, जो भी है, उसकी जानकारी, परिवार के कितने फैमिली मेंबर्स हैं परिवार के, उनकी आपको जानकारी उसमें फिल करनी है। उसके बाद जो सटीक लोकेशन है उसको भी आप चिन्हित कर लीजिए। उसको आप चिन्हित करके बाद देख लीजिए कि भाई क्या है, मानचित्र पे जाके आप उसको देख सकते हैं। सभी जो जानकारी हैं उनको बहुत ही ध्यान से भरने की, आप जब भर लीजिएगा उसके बाद ही आपको फॉर्म को सबमिट करना है। बहुत जल्दी नहीं है, बहुत ईजली, बहुत ही आराम से, बहुत ही ध्यान से। उसके बाद क्या करना है, आपको जब सबमिशन हो जाएगा आपके फॉर्म का, तो आपको 11 अंकों की एक स्वगणना पहचान संख्या मिल जाएगी। और उसके बाद जब 22 मई के बाद जितने भी सरकारी प्रगणक जो हैं जब वो घर आएंगे, तो उन्हें आप ये जो आईडी आपको मिलेगी इसको दिखाना है बस, और कोई बहुत ज़्यादा प्रोसेस नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कॉल कर रहे हैं, फेक कॉल कर रहे हैं कि भाई हम आपके घर आ रहे हैं, हम आपकी स्वगणना करेंगे, हम आपका फॉर्म भरेंगे। तो कुछ लोग ऐसे भी मामले देखने में आए हैं कि जो बहुत ही भोले होते हैं, उनको नहीं समझ में आता, तो वो अपने घर की जो जानकारियाँ हैं वो सारी चीज़ें दे देते हैं, ओटीपी वो लोग भोले से निकलवा लेते हैं, यानी चलाकी से कर देते हैं, और आप सोचते हैं कि का सेल्फ एनुमिलेशन हो रहा है। तो स्वगणना, स्व का मतलब अपने आप, खुद आप कोशिश कीजिए, या फिर घर का कोई ऐसा फैमिली मेंबर जिसको आप पे पूरा आपको भरोसा हो उस पर, उससे ये काम करवाइए। फिलहाल 6:48 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है शाम में, अवध तरन्नुम है आपके साथ, और मेरे साथ है एक और ट्रैक लता जी की आवाज़ में।

0: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
1: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।

जी हाँ बिल्कुल, आपको खोना नहीं है और ना ही अभी सोना है, बल्कि रेनबो को एंजॉय करते रहना है। 6:55 हो चुके हैं, प्रोग्राम शाम में अवध को वाइंड अप करने के लिए दीजिए इजाजत। तरन्नुम को मिलते हैं आपका मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम हेलो एफएम में। डायल कीजिए 2238 52 2238 843।

नमस्कार, शाम के बजे हैं 7। अब सुनिए यूपी की टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी ने नीट यूजी 2026 परीक्षा को रद्द करते हुए दोबारा परीक्षा कराने का किया फैसला। साथ ही केंद्र सरकार ने पूरे मामले की व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह की उपस्थिति में आज प्रदेश मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक हुई। संस्कृति विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए गोरखपुर, शाहजहांपुर समेत 6 जनपदों में वृहत परियोजनाएं प्रस्तावित की गई है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रामलीला मैदानों, स्थलों का विकास और विस्तार, जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण कार्य आदि कराया जाएगा। प्रदेश के परिषदीय और कस्तूरबा विद्यालयों में कल से 19 मई तक भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर किए जाएंगे आयोजित। इस शिविर में बच्चों को पढ़ाई के साथ भारतीय भाषाओं और सांकेतिक संवाद की भी सीख दी जाएगी। महोबा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला किया गया दर्ज। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि आज के समय में युवाओं को केवल डिग्री नहीं बल्कि रोजगार देने वाला हुनर उपलब्ध कराना सबसे बड़ी आवश्यकता। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर अमरोहा में आज श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय रजबपुर में राष्ट्रीय सेमिनार और नर्सेज सम्मान समारोह किया गया आयोजित। फतेहपुर में जल निगम नगरीय और ग्रामीण विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक जिलाधिकारी निधि गुप्ता वत्स की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कार्य की प्रगति धीमी पाए जाने पर अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को कार्यदायी संस्था पर कार्रवाई के लिए की। आज अपने संसदीय क्षेत्र के सेवरही स्थित गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान का निरीक्षण किया। इस दौरान वैज्ञानिकों ने उन्हें गन्ने की नई प्रजातियों से कराया अवगत। और ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर लखनऊ में सुबह से ही मंदिरों के बाहर बजरंगबली के

जयकारों के बीच भक्त कतारों में दर्शन करते नजर आए। दूसरी ओर सामाजिक संस्थाओं, व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात्रि 8 बजे प्रसारित किया जाएगा। सुनते रहिए FM रेनबो तरन्नुम के साथ।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: कुछ देर में आप सुनने वाले हैं प्रादेशिक समाचार, लेकिन उससे पहले हमारे साथ लाइन पर कौन है, मतलब कौन है ये पूछते हैं। हेलो हेलो,
1: हाँ
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मुश्ताक अली बोल रहे हैं, गुलमा गांव जिला बहरे।
0: जी मुश्ताक साहब, बहुत बहुत आपका वेलकम है, खुश आमदीद इस प्रोग्राम में। बताइए मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहते हैं?
1: ये फिल्म सुनना चाहते हैं।
0: मतलब सीधा गाने, बस गाना सुनेंगे, कुछ बात बात नहीं करनी आपको? आपको अगर बात नहीं करनी थी तो फिर आप मेल ही कर देते।
1: और बात
0: अच्छा, बात करनी है तो बताइए, क्या बात करनी है आपको?
1: अरे हमारे वाले से जो हम
0: बड़े घबराए से लग रहे हैं, कोई बात हो गई क्या?
1: नहीं।
0: मतलब कहीं जाना है, शादी वादी में जाना है?
1: नहीं शादी।
0: अच्छा अच्छा, तो मतलब कहाँ रहते हैं आप? आपने ये नहीं बताया आप रहते कहाँ।
1: हाँ खेती किया गया है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ और गांव में है, देहात में घर।
0: अच्छा, कौन से देहात में है?
1: इधर नानपुरा बाबागंज के।
0: अच्छा बाबागंज के पास। अच्छा अच्छा अच्छा,
1: हाँ हमारे यहाँ से 180।
0: जी जी जी जी,
1: हाँ।
0: अच्छा, तो अभी आपने खेती करके अभी आप आए होंगे, ठीक है, घर आए होंगे, थक गए होंगे, है ना?
1: जी नहीं, बटवर यात्रा है, मक्की के साथ यात्रा है।
0: जी जी,
1: तो बटवर के अगर वादर कुछ पानी है तो भीग कर।
0: अच्छा चलिए, ये गाना, ये गाना जो आपने कहा है, ये किसको सुनवाएंगे आप?
1: हमारे फादर विश्वकर्मा।
0: अच्छा,
1: सरोसोनी है, परशुराम विश्वकर्मा।
0: क्या बात है।
1: और इबत अली पूना,
0: दोस्ती बहुत लंबी है आपकी।
1: और बम्बई में और हैदराबाद।
0: अरे वाह, बड़े बड़े दूर दूर आपके दोस्त हैं, बम्बई में हैं और कहाँ बताया आपने, हैदराबाद में हैं, पूना में भी हैं। हाँ, तो घूमने गए हैं कभी आप?
1: जी हम लखनऊ से।
0: लखनऊ से कभी बाहर नहीं गए आप?
1: हाँ लखनऊ में।
0: चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी पसंद का गाना आ रहा है आपका।

0: 7:10 हो गए हैं, हमारे साथ नेक्स्ट कॉलर लाइन पे, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: हाँ अस्सलाम वालेकुम तरन्नुम बाजी।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, बताएं कैसे मिजाज हैं आपके, कौन बोल रहे हैं?
1: अच्छे मिजाज हैं, खुश मिजाज हैं हम।
0: अच्छा, अच्छे मिजाज हैं आपके।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो घर में कोई आपको अच्छे भाई तो नहीं कहता?
1: देखिए भाई तो सारे लोग मेरे जो भी हैं वो सारे लोग अच्छे हैं। हाँ, और आपस में तालमेल भी बहुत अच्छे हैं।
0: क्या बात है, मतलब सब अच्छा ही अच्छा है?
1: सब अच्छा ही अच्छा है।
0: तो आप कहाँ से फोन कर रहे हैं? रेशमी नगरी कहाँ से?
1: मुबारकपुर आजमगढ़।
0: आजमगढ़ से हैं, अच्छा अच्छा। वैसे जावेद साहब एक बात पूछे अगर आप बुरा ना माने तो?
1: नहीं नहीं पूछिए, बिल्कुल पूछिए।
0: अक्सर लोग कहते हैं कि आजमगढ़ के लोग जो हैं बड़े कंजूस होते हैं, क्या ऐसा है?
1: नहीं मैडम ऐसा तो नहीं है।
0: अच्छा ऐसा नहीं है?
1: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है।
0: अच्छा
1: हाँ, क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए आजमगढ़ जिले से हट के, जैसे हम अपने मुबारकपुर खास तौर की बात करें, आजमगढ़ से सिर्फ ये 17 किलोमीटर के दूरी पे है हमारा मुबारकपुर। तो रेशमी से भागे जो बनी हुई साड़ियाँ बनती हैं वो बनारसी साड़ियाँ, वो मशहूर भी हैं।
0: क्या बनता है वहाँ पे?
1: बनारसी साड़ियाँ जो बनती हैं।
0: क्या बात है, रेशमी नगरी, इसीलिए आप कहते रहते हैं रेशमी नगरी। वैसे हमने ये जो बात आपसे कही कि आजमगढ़ के लोग कंजूस होते हैं, ये सिर्फ आपका, हमने जो टेम्परमेंट है ना, जो टेम्परामेंट जैसे कहते हैं, टेम्पर जो होता है ना, देखें कि लूज तो नहीं होता। आप समझ में आ गई कि आजमगढ़ के लोग बड़े सहज और सरल होते हैं, उनको गुस्सा नहीं आता जल्दी।
1: नहीं गुस्सा भी नहीं आता है और बहुत छोटे बड़ों का अदब एहतराम भी करते हैं
0: जी,
1: और मतलब मेहमान नवाजी में भी पीछे नहीं रहते हैं।
0: हाँ लेकिन एक बात है, थोड़े आगे लखनऊ वाले रहते हैं मेहमान नवाजी में। पहले आप। चलिए, आपने गाना बहुत अच्छा पसंद किया, ये बताइए आप किसको सुनवाना चाहेंगे, किस को सुनवाना चाहेंगे?
1: जी मोहम्मद फैज साहब हैं, रामपुर कटरा से हैं।
0: जी जी जी, जी।
1: और रिंकू पिंकी जी हैं रायबरेली से।
0: अच्छा, ये सब आपके दोस्त हैं?
1: शमा परवीन अंसारी जी हैं, साहिदा अंसारी जी हैं, सादिया अंसारी जी हैं, और इरशाद अहमद साहब आजमी हैं, और हमारे बहुत ही खास मित्र हैं शमी अख्तर अंसारी साहब, इस वक्त रेम्बो से जुड़े हुए हैं, कार्यक्रम पसंद है जी।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा जावेद साहब, आपने हमें कॉल की, जावेद अख्तर साहब की कॉल थी हमारे पास आजमगढ़ से, और उन्होंने पसंद किया था ये ट्रैक, और ये ट्रैक पहुंच रहा है आप तक 7:13, कुछ ही देर में पहुंचेंगे आप तक। प्रादेशिक समाचार सुनते रहिए धड़कन लखनऊ की, बोले तो FM रेनबो, घंटे तरन्नुम के साथ।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

जय श्री राम। बड़ा मंगल के पावन अवसर पर एमके बंधानी हींग परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। एमके बंधानी हींग।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द। सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम। प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित। आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित और राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ पूरा सहयोग करेगी और जांच के लिए जरूरी सभी सामग्री, रिकॉर्ड और सहायता उपलब्ध कराएगी। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे और दोबारा होने वाली परीक्षा उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर से पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, सोने की खरीद को टाले।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज असम में नव निर्वाचित एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने नव निर्वाचित मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा और मंत्रिमंडल के नव नियुक्त सदस्यों को उज्जवल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी। महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है और मामले की जांच जारी है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चंदौली में बीते 24 घंटों में 3 लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को बीती रात पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। मारे गए अपराधी ने 24 घंटों में ट्रेन में यात्रा करने वाले 2 लोगों और अस्पताल में भर्ती एक महिला की हत्या कर दी थी। पुलिस अधीक्षक आकाश पटेल ने बताया कि पूछताछ में अपराधी ने तीनों हत्याओं की बात कबूल की थी। ज्येष्ठ मास के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में आस्था और सेवा का संगम दिखाई दिया। जनपदों के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल के अवसर पर रामकोट परिक्रमा में श्रद्धालुओं की विशेष भीड़ देखने को मिली। बिजनौर में जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में प्रसाद बांटा। लखनऊ में भी बड़े मंगल पर हनुमान मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: अलीगंज के पुराने और नए हनुमान मंदिर

0: हनुमान सेतु मंदिर, दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समेत अन्य मंदिरों को बड़े मंगल पर भव्य रूप से सजाया गया है। इन मंदिरों में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ का आयोजन किया गया। दिन में तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नजर नहीं आई। शहर भर में सामाजिक संस्थाओं और व्यापारिक संगठनों ने जगह जगह भंडारों का आयोजन कर सेवा की परंपरा निभाई। भंडारों में प्रसाद वितरण के साथ शीतल पेय और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं ने भी सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। एक रिपोर्ट।
2: बदायूं जिले में जमकर बारिश हुई, जिस कारण जगह जगह पेड़ टूटने से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। आज दोपहर जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि

0: जिले के कई इलाकों में अचानक घने बादलों के साथ आई तेज आंधी से जहां पेड़ टूटकर गिर गए, वहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। साथ ही बारिश को देखते हुए किसानों ने भी खेतों की जुताई शुरू कर दी। मौसम के लगातार करवट बदलने से लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मोहम्मद नईम, आकाशवाणी समाचार, बदायूं।
1: मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है।
2: आने वाले दिनों में अगर लखनऊ की बात करें तो मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन तापमान ऐसा कोई एक्सट्रीम लेवल तक का नहीं पहुंचेगा। हालांकि तापमान में यहाँ धीरे धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं प्रदेश की बात करें तो कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तराई बेल्ट में हल्का बूंदाबांदी गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चल सकती है, उसका सबक जारी रहेगा कल के लिए। उसके बाद मौसम आने वाले दिनों के लिए पूरी तरीके से साफ है। अब यहां से धीरे धीरे तापमान में हल्की हल्की आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होने की संभावना है।
1: प्रदेश के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आज गोरखपुर में संवाद कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी आईटीआई संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगार परक और भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर मंथन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला कौशल विकास संस्थान है। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार और परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि इच्छुक कारीगर 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण 3 मई को हुई नीट यूजी परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश, नई परीक्षा तिथि का ऐलान जल्द। आगरा में यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूबे, 4 की मौत, 2 का उपचार जारी। जेठ महीने के दूसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में दिखा आस्था और सेवा का संगम, प्रमुख हनुमान मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। और प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में तेज आंधी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, आगामी 24 घंटों में राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश और बिजली गिरने का अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: कागज

0: अब जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: 845

0: 7:34 हो चुके हैं और हमारे साथ लाइन पर कोई है, नेक्स्ट कॉलर हमारी रेगुलर लिसनर हैं वो, लेकिन नाम उनका उन्हीं के मुंह से सुनते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड इवनिंग टू यू टू, कैसी हैं?
1: मैं बहुत अच्छी थी और आपसे बात जैसे और ही अलग बात है।
0: क्या बात है, आप लोग जब ये मतलब बटर लगाते हैं ना अच्छा वाला तो बड़ा अच्छा लगता है।
1: क्या करें, सब आपकी कर्म मेहरबानी है।
0: हाँ लेकिन अच्छा लगता है। अच्छा, सबको पता होता है कि तारीफ झूठी हो रही है लेकिन फिर भी लोग खुश हो जाते हैं।
1: झूठी नहीं तारीफ, तो बिल्कुल नहीं कह सकती झूठी है।
0: अच्छा बिल्कुल सच्ची,
1: हमारी हंसी से चेहरे से अगर सामने होते तो आप खुद ही देख पाते हैं।
0: सही बात है। वैसे अगर आपका सामना करना हो तो कहाँ आना पड़ेगा बताइए?
1: आप बताइए हमें कहाँ आना है आपसे मिलने के लिए?
0: नहीं आप बताइए, आप रहती कहाँ है?
1: मैं अभी तो चंडीगढ़ में हूँ और वैसे ग्रामा पोस्ट बमना जैसल सतीपुर जिला उन्नाव।
0: चंडीगढ़ में है अभी आप? अच्छा अच्छा, तो मतलब वेट वेट बढ़ गया आपका, लस्सी छाछ दही प्योर खा के?
1: मैं पूछे दीदी, इतना दुखी हो रखी है अपने।
0: क्यों? वेट से। अच्छी बात है ना,
1: बैठने से ना मेरा बढ़ रखा है। अच्छा। नींद इतनी आती कि सुबह उठा नहीं जाता कि मॉर्निंग वॉक कर पाऊँ।
0: क्या बात है, कितनी अच्छी बातें कर रही है आपके, नींद आपको आती है?
1: ऐसा लगता हम हमेशा सोते ही रहे।
0: क्या बात है, और आजकल लोग देखिए नींद को बुलाने के लिए कितने जतन करते हैं।
1: अरे हमें तो कहीं भी आप अपना अंगारों पे भी सुला देंगे तब भी हम सो जाएंगे।
0: अच्छा ऐसा शुरू से?
1: हाँ बहुत बचपन से ही मान के चलो।
0: अच्छा। तो रोशनी क्या कहना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के माध्यम से?
1: हाँ मुझे तो बहुत खुशी हो रही है, और लास्ट टाइम आपसे 20 अप्रैल को बात हुई थी।
0: अच्छा इतना याद रखते हैं आप लोग?
1: एक बार डायरी देख लेते हैं उसके बाद कॉल लगाना स्टार्ट कर देते हैं।
0: अच्छा पूरी डायरी आप मेंटेन करती हैं?
1: जी। अच्छा तो हमने एक नया इंस्टाग्राम पे चैनल अपना बना रखा है जिसमें अच्छा। हमारी जो भी दिनचर्या की होती है सबकी नहीं डालते हैं।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन हमारे जो कुछ फेवरेट राज्यस है तो उनकी रिकॉर्डिंग हम उसमें अपलोड कर देते हैं।
0: क्या बात है, तो बड़ी अच्छी बात है, आप मतलब इतनी तैयारी करती है। पीछे बच्चे आप ही के है ना? पीछे
1: बच्चे?
0: बच्चे पीछे आवाज आ रही है बच्चों की?
1: हमारी तो शादी नहीं दीदी, तो बच्चे और यहाँ।
0: अच्छा आप, नहीं मतलब आपके बच्चे, मतलब आपके भाई के बच्चे या किसी और के बच्चे?
1: बिल्कुल दीदी के बच्चे जो पूरा दिन हमें परेशान करते हैं।
0: तो देखिए पीछे चिल्ला रहे हैं ना बच्चे?
1: नहीं दीदी वो फोन में शायद आवाज कुछ कर रही है वो।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो यहाँ कोई नहीं है हमारे आसपास।
0: अच्छा तो रोशनी सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल करी। दूसरी बात ये कि जो गाना आपने पसंद किया है ये आप किसे सुनवाना चाहेंगे?
1: सबसे पहले आपको
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: बबीता राव जी गोसाईगंज लखनऊ से, और हमारी नीली शर्मा दीदी हैं जो रूपपुर चंदेला उन्नाव से, और जो भी सुन रहे जितने भी हमारे लिए सभी को डेडिकेट है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बबीता से आपकी कांटे की दोस्ती है क्या?
1: बहुत ज्यादा ही हो रखी है, और फिलहाल हमारी रोज तो बातचीत होती रहती है।
0: अच्छा ये कांटे की दोस्ती क्यों होती है, इसे क्या मतलब, इसका मतलब क्या होता है कांटे की दोस्ती?
1: ये तो मुझे भी नहीं पता है, आप बताइए।
0: ये हमें भी नहीं पता, अभी एकदम दिमाग में आया कि कांटे की दोस्ती लोग कहते हैं, मतलब काट लिया तब दोस्ती ऐसे कुछ क्या, या काटा
1: नहीं,
0: कुछ
1: नहीं, हमारी सिर्फ एफएम रेनबो से ही है।
0: लेकिन अब आप देखिए रेनबो का कितना शुक्रिया अदा कीजिए।

0: आपकी आपकी इतनी अच्छी अच्छी दोस्ती है।
1: बहुत मतलब मानती हूँ रेडियो को कि हमारे इतने प्यारे प्यारे लिसनर और हमारी इतनी प्यारी प्यारी जो फ्रेंड्स हो रखी है, और ये नीरू शर्मा दीदी, बबीता राव जी, जो हम सब ऐसे रंगों से ही मिले।
0: सही बात है, बहुत
1: आदान प्रदान भी रहता है, और वैसे पर्सनल तो हम लोग जुड़े ही हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रोशनी, और बबीता, नीलू और जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं सबको ये गाना हम डेडिकेट करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कॉलिंग।

0: अस्सलाम वालेकुम मैम।
1: जी वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है?
0: जी गुलफ्शा से, देखिए संडीला से।
1: जी गुलफ्शा बताइए, गुलफ्शा आपके नाम का मतलब क्या है? गुलफ्शा।
0: जी जी मैम।
1: जी बताएं क्या मतलब है इसका?
0: हमेशा खुश रहना।
1: अरे वाह,
0: मतलब बहुत सारे मायने हैं।
1: नहीं, एक मायने बताइए जो बहुत अच्छा वाला हो।
0: सबसे अच्छा तो यही है, हमेशा खुश रहना।
1: तो आप हमेशा खुश रहती हैं?
0: जी जी मैम, हमारे आसपास जो लोग रहते हैं वो भी खुश रहते हैं हमसे।
1: अच्छा, ऐसा क्या करती हैं आपके सब लोग खुश रहते हैं आपसे?
0: नमस्ते रहते हैं, हमेशा
1: हंसते रहते हैं। तो कभी कभी ये नहीं होती, लोग कहते हैं कि हर टाइम हंसती रहती है, कभी ऐसा नहीं कहते लोग?
0: तो लोग कहते कहने दे,
1: ये बात हुई ना कि लोग कहते हैं कहने दे,
0: दुनिया की सुनेंगे तो हम जी नहीं पाएंगे।
1: क्या बात है, क्या बात कह दी आपने, क्या खाया आपने आज ये बताइए आप?
0: दिल की सुनो।
1: दिल की सुनती हैं आप हमेशा?
0: जी मैम।
1: बहुत अच्छी बात आपने कही। आपने पता है मेरा 1 ग्राम दिल जीत लिया, पूरा तो नहीं लेकिन 1 ग्राम दिल जीत लिया आपने। आपकी ये बात हमें याद रहेगी हमेशा कि अपने दिल की सुनो। कितनी बार अपने दिल की सुनी है आपने?
0: लेकिन कभी कभी सुनना पड़ता है तो कर नहीं पाते हैं।
1: यस एग्जैक्टली, यही होता है दिल की आदमी,
0: क्योंकि कभी कभी मजबूरी ऐसी फंस जाती ना तो
1: दिल देखिए छोटा होता है, दिल छोटा होता है, फुदक फुदक के बताता रहता है ऐसा करो ऐसा करो ये करो वो करो,
0: कुछ और होता है, मिलता कुछ और,
1: मिलता कुछ और है, और दिल तो है ही फिर नॉटी नॉटी है ना। चलिए बताइए गाना किसको सुनवाना चाहेंगे आप?
0: सबसे पहले आपको।
1: जी
0: सबसे पहले आपको और शमा परवीन है, साहिबान सारी है, साजिया अंसारी है, महक अंसारी है,
1: मतलब जो आपका पूरा ग्रुप है जो उर्दू में
0: सब रेडियो के जरिए मिले हैं।
1: हाँ, जो मतलब आपका गिरोह है ग्रुप है उसी को सुनवाएंगे आप?
0: जी मैम, जितने लोग सुन रहे हैं सभी को।
1: अच्छा, जितने लोग सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गुलफ्शा फोन करने के लिए। 7:44 हो चुके हैं और बारिश नहीं मोहब्बत बरसा दे और सावन आया है, ये ट्रैक आप तक।

वेल टाइम हो चुका है 7:42, तरन्नुम है आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है हेलो एफएम। बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट कॉलर हैं उनसे, बात करते हैं। हेलो,

0: 7:47 हो चुके हैं, प्रोग्राम चल रहा है। हेलो एफएम तरन्नुम है आपके साथ और मेरे साथ लाइन पर कोई और है, उनसे बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
2: अस्सलाम वालेकुम।

0: जी वालेकुम, कौन बोल रही है?
1: जी साहिबा अंसारी, मेहरागंज जिला खिमसुखीरी से बोले।
0: साहिबा अंसारी, इससे पहले गुलफशा, उससे पहले रोशनी, मतलब आप लोग हैक कर लेते हैं क्या फोन को कि आप लोगों के सबके नंबर आते हैं?
1: जी नंबर तो आते हैं, हम लोग सुबह भी लगाया था, एक साथ ही सारे लोगों ने लगाया था एक लाइन से।
0: कितनी खुश हो रही है, ऐसा लग रहा है कि होल्ड बंद ही नहीं हो रहे हैं बात करते करते क्या कहना चाहेंगी साहिबा?
1: हमारा गाना में बजा दीजिए।
0: अच्छा, कहेंगे कुछ नहीं, मतलब ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि मतलब आप कुछ कहेंगे नहीं, बताइए
1: क्या कहें हम?
0: कुछ नहीं कहेंगे, चलिए कोई बात नहीं है, गाना फिर हम सुनवा देते हैं ऋचा को, अंजू दी को, अनवारुल को, विजय को, और सबको गाना सुनवा दें फिर हम।
1: जी अंजू, हम तो आपके पीछे आ भी चुकी होंगी आज।
0: अच्छा, आपको कैसे पता अंजू हमारे पीछे आने वाली है?
1: वो आई थी जो है शनिवार को आई थी, तो बता रहे थे हम आज रात के 8 बजे आएंगे मंगलवार।
0: अच्छा, वो बता रही थी कि वो आएंगी, और अगर हम कहें वो नहीं आई है तब?
1: पता नहीं, हम तो देख नहीं सकते।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। 7:49 हो चुके हैं और साथ ही साथ स्टूडियो में मेरे जस्ट पीछे कोई खड़ा हुआ है। और जी जनाब, बताएं कैसे आप स्टूडियो में बिना मेरी इजाजत अंदर आ गए?
2: भाई दरवाजा खुला हुआ था।
0: हाँ,
2: कुंडी लगी नहीं थी।
0: मतलब कोई भी दरवाजा खोले रहेगा और आप बिना परमिशन अंदर कैसे आएंगे? कितना खुश हो रहे हैं, कितना खुश हो रहे हैं, और आवाज
2: आपको देख के खुश हो गया भाई।
0: क्या बात है, क्या बात है, और हम आपको सुन के खुश हो गए।
2: तो बस देख
0: नहीं पाए, हम देख नहीं पाए, आप उस तरफ उधर मुंह करे हुए थे और हमें लगा कि भाई कौन है कौन है। जब
2: नहीं, हम तो आए थे इसी जो स्टूडियो में, ये जो आप देखते हैं ना, ये जो साउंड प्रूफिंग होती है, इसमें छोटे छोटे से छेद बने रहते हैं।
0: तो क्या इसमें से झांक के आए?
2: एक शेर है कि रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू, हम तो आवाज है दीवारों से छन जाएंगे।
0: क्या बात,
2: वैसे ही आ गए,
0: इसीलिए छन्निया छन्निया बनाई गई है। फिलहाल एक ट्रैक आ रहा है आप तक और साथ ही साथ यस एग्जैक्टली जिंदा नशा आप तक और 7:50 हो गए हैं, सुनते रहिए रेनबो।

0: जी हाँ, जेड़ा नशा और लखा विच आवे मेनू और थोड़ी थोड़ी पंजाबी सीख रहे हैं, लेकिन उससे पहले हिंदी में बात कर लेते हैं हमारे साथ लाइन पर जो भी हैं। हेलो
1: हेलो
0: जी, कौन बोल रही है? हेलो हेलो
2: हेलो
0: जी,
2: आवाज आ रही है?
0: नहीं, आ तो रही है, लेकिन अभी तो लड़की की आवाज लग रही थी, अब आपकी आवाज लग रही है, मतलब आप कौन बोल रहे हैं?
2: तो हमको भी तो लाइन मिली है ना, हम
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन बोल रहे हैं, शुभ नाम बताइए।
2: मिंटू तिवारी, ग्राम बसाना, तहसील जिला फतेहपुर से बोल।
0: अरे मिंटू जी, इतने दिनों बाद आपने कॉल की, कहाँ थे आप इतने दिनों से?
2: नहीं लगाते तो हाँ, मतलब उस बार आई थी, आप जब फोन उठ गया तो आपने होल्ड कर दिया, लेकिन बात ही नहीं किया आप।
0: अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? तो देखिए अभी अभी देखिए, आप खुद देखिए,
2: एक मिनट सुनिए हमारी भी बात।
0: जी जी बताइए।
2: आप आती है प्रोग्राम तो अच्छा करती है, आपकी आवाज इतनी अच्छी है कि हर आरजे से अच्छी है आवाज, लेकिन थोड़ा आप कॉल नहीं लेती जाता है, ये गलत करती है थोड़ा।
0: मतलब क्या क्या करना चाहिए आपके साथ? किसी और
2: नहीं, मतलब कॉल रिसीव करनी चाहिए, ने कॉल लगती है उसकी।
0: अरे मिंटू, मिंटू जी मेरी बात तो सुनिए आप, अभी देखिए इतनी इतनी देखिए कॉल ले रहे हैं हम, अब लोग दो बातें अपनी करते हैं, फिर दो बातें हम करते हैं, फिर पांच मिनट का सॉन्ग सुनते हैं।
2: ठीक है, जब फोन लग जाता है तो इतनी मुश्किल से लगता है फोन, हमारा मतलब जो आरजे आ जाते हैं स्टूडियो में उनको कॉल रिसीव, जैसे आप एक दूसरे नंबर पर लिए हैं कॉल।
0: जी जी,
2: जब आ जाते बादल में रहते हैं उनको बोल दीजिए कि आप कॉल रिसीव करते
0: अच्छा,
2: रहिए।
0: अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो दूसरी लाइन पर लोग हैं उनसे भी बात करें, और अभी जो हमारे बात कॉलर मतलब जो एंकर होंगे वो दोनों लोग हम लोग साथ में मिलकर।
2: अच्छा अच्छा,
0: ये आपने जो आज बात बताई ना मिंटू जी, ये हम लिख के जाएंगे आज अपनी डायरी में।
2: नहीं लिख के नहीं जाइए, ये ऐसा नहीं होता, मतलब कॉल लगती कॉल उठाई नहीं जाती, ये गलत होता है। आपका प्रोग्राम हम लोग इतनी मेहनत से मतलब फोन करते हैं, फोन पे अगर जाती है घंटी तो उठता नहीं, तो ये गलत बात है ना
0: मिंटू जी, ऐसा नहीं है, आप नहीं समझते, आप नहीं समझते। चलिए बताइए कि आप गाना किसको सुनवाएंगे?
2: ये गाना तो हम भले सुनाएंगे आपको, जो आपके बगल में बैठे अनवारू सर को।
0: अच्छा,
2: आप जितने आपके फिल्म के आरजे उन सभी के लिए, प्रभाकर तिवारी जी और रतुलपुर गुजरात।
0: ये बताइए मिंटू जी, आप थे कहाँ इतने दिनों से?
2: नहीं हम तो यही थे, अपने गांव में थे, प्रोग्राम सुनते आप फोन लगाते हैं एकदम।
0: अच्छा चलिए, बहुत अच्छा लगा आप।
2: नहीं थोड़ा हम अपने भाई ना ले रहे हैं थोड़ा।
0: जी जी बिल्कुल,
2: बड़े भाई विनोद तिवारी प्रमोद,
0: मेरा प्रणाम कहिए अपने बड़े भाई को।
2: हाँ प्रणाम स्वीकार है मेरे भाइयों को, लेकिन मैडम जी आप आया करिए तो कॉल उठा लिया जी।
0: अच्छा मतलब। देखिए आज आपकी कॉल हमने उठाई ना,
2: और इटावा से हो गए हमारे राहुल भाई हो गए और प्रकाश पासवान जी हो गए और जितने लोग
0: जी, बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। 7:56 हो चुके हैं, तो अब तरन्नुम को दीजिए इजाजत इस प्रोग्राम को वाइंड अप करने के लिए। इंशाल्लाह जल्द होगी मुलाकात किसी और दिन किसी और वक्त, लेकिन चैनल यही रहेगा जिसे हम और आप प्यार से कहते हैं द हार्ट बीट ऑफ लखनऊ। तो चलते हैं, शुभ रात्रि, शुभ बखैर, गुड नाइट, अनवारुल रहेंगे आपके साथ।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के एमएसएमई मंत्री राकेश सचान ने आज राज्य में 16 सीएफसी परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में श्री सचान ने कहा कि सीएफसी परियोजनाओं में 90% तक सरकारी अनुदान और 10% उद्यमियों का योगदान रखा गया है, ताकि छोटे उद्यमियों को आधुनिक मशीनरी, डिजाइन, परीक्षण, स्किल ट्रेनिंग और कॉमन टूल्स जैसी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएफसी को जनहित से जोड़ते हुए व्यापक प्रचार प्रसार अभियान चलाया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित माटी कला कौशल विकास योजना के अंतर्गत रामपुर में 15 दिवसीय विशेष शिल्पकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। योजना के तहत ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में माटी कला कार्य से जुड़े कुम्हार एवं परंपरागत कारीगरों को आधुनिक तकनीक, आकर्षक डिजाइन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन एवं विपणन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया, इच्छुक कारीगर 29 मई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्व परिषद के अधीन लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 21 मई को राज्य के 44 जिलों में मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की तरफ से कल जारी सूचना के अनुसार परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को आवंटित जिले की अग्रिम सूचना आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। आगरा के थाना कमला नगर क्षेत्र में आज यमुना नदी में नहाने के दौरान 6 बच्चे डूब गए। पीएसी और गोताखोरों की रेस्क्यू टीम ने बच्चों को नदी से बाहर निकाल लिया। सभी को गंभीर हालत में एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उपचार के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों का उपचार जारी है। पुलिस उपायुक्त नगर सैयद अली अब्बास ने बताया कि सभी बच्चे एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आगरा आए थे। प्रदेश के पश्चिमी जनपदों में आज हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से कई इलाकों में आवागमन बाधित हो गया। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 24 घंटों में प्रदेश के पूर्वी हिस्सों में बारिश और तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने का अनुमान है। इस बुलेटिन में इतना ही।

0: साई दोपहर की रुसवाई, तो कभी ढलती हुई शाम की अंगड़ाई,
1: शाम होने को है।
0: प्यार की बारिश, मोहब्बत की ठंडक, इश्क की आहें,

आंसुओं की बूंदों से दिल को सींच दे और कभी मस्ती में जिंदगी के घूंघट को खींच दे। महफिल गजल आबशार सोमवार से शनिवार रात 8 बजे 100.7 FM।

बिल्कुल, और मैंने थोड़ी देर पहले तरन्नुम से यही कहा था कि दरवाजा खुला हुआ था और इसलिए हम हाजिर हो गए, दाखिल हो गए आपके करीब। 8:04:43 हो चुके हैं। इश्क के शोले को भड़काओ के कुछ रात कटे, दिल के अंगारे को दहकाओ के कुछ रात कटे। जिंदगी की भाग दौड़ में ऐसी बहुत सारी शामें गुजर जाती हैं, बहुत सी रातें आती हैं जो याद दिलाती हैं। खुशी छोटी छोटी जीतों में बसती है, तो फिर खूबसूरत इस लम्हे को, इस महक को अपने सीने से लगा लीजिए, मुस्कुरा दीजिए थोड़ा सा। मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ हूं। खूबसूरत लफ्जों की रवानी के सफर में आबशार आप तक पहुंच रहा है 100.7 FM रेनबो पर।

मुसाफिर की तरह आए हैं और सुना है बहुत कुछ तुम्हारे बारे में, खासकर तुम्हारी आंखों के बारे में, और ये भी सुना है कि डूब कर मर जाते हैं अक्सर लोग इसमें। बहुत खूबसूरत है तुम्हारी आंखें, दिल को छू लेने वाली जादू भरी निगाहें हैं तुम्हारी, जैसे सितारों का समंदर हो जिसमें डूब जाते हैं इंसान। हर झलक में छुपी है वो बातें जो दिल की धड़कनों को और बढ़ा देती हैं। याद है वो शाम जब तुम्हारी आंखों ने पुकारा था,

काली काली सी पुतलियां जैसे काजल की लकीरें खींची हों और उनमें खो गया तो दुनिया ही भूल गया। ऐसा लगा कि सब कुछ तो बस यही है अब। खुशबुए इश्क बिखेरती हैं वो हर दम, तो आसपास चीजें महक उठती हैं। खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, इनकी महफिल में आया तो लौटना ही भूल गया। दिल कहता है बस इन्हीं में बस जाऊं, बाहर ना निकलूं। तुम्हारी ये आंखें हमेशा यूं ही चमकती रहें और मुसाफिर यहां पर हमेशा अपने रास्ते यूं ही भूलते रहें।

समी से आसमानों तक धनक के रंग बिखरे हैं, झलकते सुरमई मंजर मेरी आंखों में उतरे हैं। यही जो रंग दिखता है कई रंगों का महवर है, मोहब्बत नीलगूं चादर, मोहम्मद हुस्न का सागर। मोहब्बत एक सफीहा है, मोहब्बत एक सलीका है, मोहब्बत साज है दिल का, मोहब्बत राग साहिल का, मोहब्बत रंग मंजिल का, मोहब्बत जोड़ती है दिल, मोहब्बत तोड़ती है दिल, मोहब्बत दिलनशी नगमे सुनाती है, मोहब्बत में हमेशा दर्द हारा है, मगर कभी कभी मोहब्बत दर्द दर्द दर्द और दर्द के नगमे सुनाती है। तो मोहब्बत और अकेलापन दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं कभी कभी, क्योंकि उस अकेलेपन में जब मोहब्बत की याद सताती है तो जितना सताती है उतना ही तन्हाई और जाग जाती है। 8:20 हो चुके हैं। मैं आज आबशार में आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके साथ 107.7 FM रेनबो सुन रहे हैं आप।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के

0: गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

और अगर तुम सामने ना हो और ये एहसास हो कि अब तुम नहीं हो, तो ये एक बहुत नाजुक और गहरी बात है जो अक्सर किसी के जाने या बिछड़ने के बाद महसूस होती है। खालीपन एक उदासी जो दिल को तकलीफ भी पहुंचाती है। इसमें एक दर्द भी छुपा है, एक याद है और शायद एक अधूरी दास्तान भी। अब तुम नहीं हो, फिर भी हर जगह तुम्हारी कमी है। हर लम्हा हर बात बस तुम्हारी यादों की नमी है। और यह सवाल अक्सर दिल से निकलता है कि जब कोई नहीं है तो कैसे रहें तुम्हारे बिना। कोई बहुत अपना बहुत करीब हमारी जिंदगी से दूर चला जाता है और ऐसे में भारी हो जाता है दिल और हर चीज अधूरी सी लगती है। तुम्हारे बिना मैं कैसे रहूं, हर सांस में तुम्हारा नाम है, तुम्हारी यादों का सहारा था, वरना इस दिल को संभालूं कैसे। तेरे बिना सूनी है राहें, तेरे बिना अधूरी है बाहें, तेरी हंसी से थी रोशनी और अब सिर्फ अंधेरे हैं जो छा रहे हैं जहन पर।

उम्मीद भी करेंगे और दुआएं भी करेंगे कि किसी भी तरह की गम की कोई भी घटाएं आपकी जिंदगी में न छाने पाए। किसी का इश्क किसी का ख्याल थे हम भी, गए दिनों में बहुत बाकमाल थे हम भी, हमारी खोज में रहती थी तितलियां अक्सर कि अपने शहर का हुस्नो जमाल थे हम भी। जमी की गोद में सर रख के सो गए आखिर, तुम्हारे इश्क में कितने निढाल थे हम भी। लेकिन ये जिंदगी यूं ही कायम रहती है, चलना पड़ता है मोहब्बत के साथ। अगर इसे गुजार लिया जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। इजाजत लेने का वक्त आ रहा है, थोड़ी देर में हम आपको समाचार संध्या के लिए दिल्ली ले चलेंगे और फिर 9 बजे लौटेंगे रेनबो कैफे के साथ, और 10 से 12 भी आपके साथ इस सफर को हम अंजाम देने वाले हैं जब बिखरेगी रजनीगंधा की खुशबू। फिलहाल इजाजत दीजिए अनवारुल हसन को, मिलते हैं थोड़ी देर में। शब्बा खैर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार विलीन निगम। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक संबंध में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच के लिए विशेष सीबीआई टीमें विभिन्न स्थानों पर भेजी गई हैं। नीट यूजी 2026 परीक्षा पेपर लीक मामले में राजस्थान पुलिस के विशेष अभियान दल ने अब तक 15 लोगों को हिरासत में लिया है। जांचकर्ता अब संदिग्ध नेटवर्क के विस्तार और परीक्षा से पहले प्रश्न पत्रों के प्रसार से जुड़े धन के लेन देन की जांच कर रहे हैं। दल ने कल जयपुर में मनीष नाम के कथित मुख्य साजिशकर्ता को हिरासत में लिया। सूत्रों के अनुसार इससे पहले राजस्थान पुलिस ने 7 मई को देहरादून से 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिनमें कथित मुख्य साजिशकर्ता सीकर का करियर काउंसलर राकेश कुमार भी शामिल था। अगले दिन 4 नीट परीक्षार्थियों को भी गिरफ्तार किया गया। उधर नासिक पुलिस ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में एक व्यक्ति को हिरासत में लिया है। इससे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी थी। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम

0: दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
1: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एदापड़ी के पलानीसामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न देने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। सरकार को अम्मा मक्कल मुनित्र कड़गम के एकमात्र विधायक एस कामराज का भी समर्थन प्राप्त है, जिन्हें आज ही उनकी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। मुख्यमंत्री जोसेफ विजय कल से ही विश्वास मत से पहले समर्थन जुटाने के लिए सहयोगी दलों के नेताओं से बैठकें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। डॉक्टर शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंत नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा सहित चारों मंत्रियों को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने कुशल प्रशासक के रूप में पहचान बनाई है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मामले की जांच के लिए पुलिस महानिदेशक पंकज सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस बीच पुलिस ने इस मामले में उत्तर प्रदेश और बिहार से 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय ने आरोपियों को 24 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहाँ पर भी ये देश में के नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की पुष्टि करती हैं।
2: ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का एक सटीक, लक्षित और नपातुला जवाब था। इसका उद्देश्य उन आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था जो न केवल पाकिस्तानी राज्य द्वारा प्रायोजित है बल्कि पाकिस्तान से और उनके इशारों पर चलता है। अब यह उन राष्ट्रों को ही तय करना है, उन पर ही निर्भर करता है जो स्वयं को जिम्मेदार मानते हैं कि वे इस बात पर आत्मचिंतन करें कि क्या आतंकवादी ढांचे को बचाने के प्रयासों का समर्थन करना उनकी प्रतिष्ठा और वैश्विक साख को प्रभावित करता है।

0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। श्री शाह ने कहा कि इस कदम से अवैध खातों का तेजी से पता लगाया जा सकेगा और उन्हें समाप्त किया जा सकेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आर्थिक, तकनीकी अथवा भू राजनीतिक हर तरह की बाधाओं का सामना करने में सक्षम है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि खंडित भू राजनीतिक और व्यवसायिक परिस्थितियों के कारण दुनिया हर दिन संकटों का सामना कर रही है, लेकिन भारत ने लगातार प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में परिवर्तित किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोने की खरीद टालने और विदेश यात्रा से बचने की अपील एक सकारात्मक कदम और एहतियाती उपाय है। उन्होंने कहा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि इस समय विपक्ष को सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए।
1: विपक्ष को चाहिए कि वो पैनिक ना फैलाए, भ्रम की राजनीति ना करे और आपदा में अवसर की खोज और आविष्कार ना करे। और जिस तरह से कोविड की महामारी में भी विपक्ष ने ऐसी ही भूमिका निभाई थी, लेकिन भारत कोविड की महामारी से उभर पाया और मजबूत होकर निकल के आया, वैसे ही ये जो वैश्विक संकट है, चुनौतियां हैं इसमें, लेकिन भारत में वो मजबूती है कि इन चुनौतियों के सामने मजबूती से खड़ा भी रहेगा और मजबूत होकर उभर के आएगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
2: आईसीएसईआर समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये आईसीएसईआर के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स चिकित्सा नवाचार और स्वास्थ्य सेवा उत्कृष्टता के क्षेत्र में देश का प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। आज नई दिल्ली में एम्स के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने किफायती दरों पर रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा के उच्चतम मानक स्थापित किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच बंबई शेयर बाजार में लगभग 2% की गिरावट आई है। अन्य आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं अमित गोयल।
3: बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 1.9% के नुकसान से 1456 अंक लुढ़ककर 74,559 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.8% की गिरावट से 436 अंक गिरकर 23,380 के स्तर पर रहा। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 32 पैसे की गिरावट से 95.63 रुपए प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर दर्ज हुआ।
0: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने 2025-26 में 1,98,000 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक शुद्ध लाभ दर्ज किया है। ये लगातार चौथा वर्ष है जब बैंक मुनाफे में रहे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह प्रदर्शन तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मजबूती और स्थिरता को दर्शाता है। गुजरात में जनगणना का पहला चरण 1 जून से शुरू होगा। लोगों को पहली बार भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वगणना पोर्टल se.census.gov.in के माध्यम से जनगणना में शामिल होने का अवसर मिलेगा। 17 से 31 मई तक लोग पोर्टल पर स्वगणना पूरी कर सकेंगे। 1 से 30 जून तक नामित जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए परिवारों की सूची तैयार करेंगे। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने आज रीभोई जिले के भोईरिम्बोग में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य राज्य के पारंपरिक रेशम उद्योग को मजबूत करना और बुनकरों के लिए बेहतर बाजार पहुंच बनाना है।

थाईलैंड बैडमिंटन ओपन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने इंडोनेशिया के पुत्र एरवियान सिहा और बगास मोलाना को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि हरिहरन अमसा कारुनन और एम आर अर्जुन तथा महिला डबल्स में ऋतुपर्णा श्वेतापर्णा पांडा को हार का सामना करना पड़ा। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि चार अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल मुकाबलों में कांस्य पदक हासिल किया। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 4 विकेट पर 124 रन बना लिए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 के लिए पंजीकरण जल्द ही समाप्त होने वाले हैं। इच्छुक उम्मीदवारों को 19 मई से पहले यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए के mygov.gin पर लॉगिन कर सकते हैं। सीबीआई अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीआई ने कथित नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में मामला दर्ज किया। देश भर से कई संदिग्धों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके पार्टी में फूट। 30 विधायकों का बड़ा गुट विजय की सरकार का समर्थन करेगा, विश्वास मत कल। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। भारत 2 दिन के ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी बृहस्पतिवार से करेगा। इसमें पारस्परिक हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। तेल की बढ़ती कीमतों और अमेरिका ईरान तनाव के बीच घरेलू बाजार में लगभग 2% की गिरावट। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

मन्नत अनंतमांग के वो निकल गई हैं और हम बिल्कुल मुस्तैद थे यहाँ पर पानी वानी पी के हम आ गए हैं। 9:23 भी हो चुके हैं, 19 सेकेंड भी, और आपके बहुत सारे और भी मेल हैं जो हम तक पहुँच चुके हैं। ये सन्नाटा फिर, अरे हम बजाओ इसे, बजाओ भैया ये। तो जब तक ये साथ में ना हो तब तक मज़ा नहीं आता है, और थोड़ा सा एक माहौल बना के रखते हैं इससे। शुरू करते हैं आपके इतनी देर में, आपके इतने सारे मेल और हम तक पहुंच चुके हैं। वकील अहमद साहब, आपका मेल आ चुका है, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ अच्छी लगती है। चलिए बहुत अच्छी बात है। रेडियो कैफे नहीं, रेनबो कैफे इस प्रोग्राम का नाम है, तो और ये रेडियो पे बज रहा है ना, तो गाने अच्छे बज रहे हैं और आपकी हंसी अच्छी लग रही है। वकील अहमद मंसूरी, कटका हतूरी, ज़िला सीतापुर। आया क्या बात है, क्या देखिए तुकबंदी है, वकील अहमद मंसूरी, कटका हथूरी, यानी देखिए ये जो रारा लगा हुआ है, साथ में अंसारी भी लगा हुआ है, तो बड़ी अच्छी शायरी हो सकती है आप सबके नाम को मिला के। सीतापुर से आपने ये हमें लिखा है, साहिबा अंसारी, साजिया अंसारी, शमा परवीन, रिंकी पिंकी, महक अंसारी, गुलफशां सिद्दीकी, अहमद, यानी सबको आपने लपेट दिया है इसमें, सबके नाम लिख दिए हैं, और जब उनका मेल आएगा तो वो आपको, भाई वाह वाह क्या तरीका है प्रचार का, बहुत अच्छी बात है। कितनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं देखिए जब हम लोग आपके पास आते हैं यहाँ पे, और यहीं से चीज़ें सीख ले जाते हैं, कहीं और बता देते हैं, कहीं और से सीख कर आते हैं, यहाँ पर बता जाते हैं। जैसे कि मैंने एक बार बताया था, रास्ते में मैं चला रहा था कोई, और सिर्फ ध्यान से सुनिए, कभी कभी आपने जो इर्द गिर्द जो बातें होती रहती हैं, मेरा मतलब ये नहीं है कि चुगली करने लगे कि यहाँ कान लगा के वो दीवारों के, लेकिन दीवारों के कान होते हैं तो दीवारें अपने आप सुन लेती हैं, हालांकि है ना, मतलब किसी ख़राब उससे नहीं, सीखने के लिए सुनना कभी कभी अच्छा लगता है। कि एक साथ चले जा रहे हैं रास्ते में, बात करते हैं मोबाइल से, कह रहे भाई तुम्हारा फ़ोन आया था तब हमारे उसमें पैसे ज़्यादा थे नहीं तो हम तुम्हें कॉल नहीं कर पाए, अभी अभी हमने जो है रिचार्ज करा लिया, अब जा रहे हैं घर, और जब घर पहुंचेंगे तो हपक के बातें करेंगे। तो ऐसे ही हम भी हपक के आपके मेल पढ़ेंगे, आप हमको भेजते रहिए, हम पढ़ते रहेंगे। अरे वाह वाह वाह, महन दीपन जी, आपका भी मेल आ चुका है। सर जी मेल थोड़ा बड़ा हो गया आपके हिसाब से, पढ़ लीजिएगा, आपके हिसाब से नहीं अपने हिसाब से कहिए। आज 100.7 रेनबो पर आपका प्रोग्राम रेनबो कैफे सुन रहा हूँ, सच कहूँ तो मन खुश हो गया है, आज के संगीत के चयन और आपके पेश करने के अंदाज ने वाकई धमाल मचा रखा है। आज सुबह सर जी जैसे ही आपकी, अच्छा अच्छा आपने पोस्ट देख ली थी, तो पूरा दिन आप इंतजार कर रहे थे, और साथ में देखिए अब गाने तो अच्छे अच्छे ऑलरेडी बने हुए हैं, इसमें मेरा कोई उसमें योगदान नहीं है कि आप कहें बड़े अच्छे गाने बजा रहे हैं, हम थोड़े बना रहे हैं, अरे इतने अच्छे अच्छे बने, बजाओ भैया पीछे पीछे बजाए रहो, ये बंद हो जाता है इनका, जाने खाना वाना खा के नहीं आए क्या, 9:26 हो गए हैं, खा के तो हम भी नहीं आए हैं, खैर। आगे आपने लिखा है कि आपकी आवाज़ में वो जादू है जो हर दिल को छू जाता है, रेनबो कैफे का हर नगमा समा खुशियों का बनाता है, और आपकी सादगी, आया सादगी कहाँ से देख लिया आपने, सफ़ेद शर्ट में देख लिया था क्या हमें कहीं पर। आपकी सादगी और अंदाजे बयां है सबसे जुदा, तभी तो आपकी बातों से रेडियो का हर लम्हा मुस्कुराता है। भाई कोशिश तो हम लोग यही करते हैं कि आप के साथ, आप सबके साथ एक खूबसूरत रिश्ता यूं ही कायम रहे, क्योंकि ये रिश्ता सिर्फ हमारा व्यक्तिगत नहीं है, ये रिश्ता हमारे रेनबो का है, ये रिश्ता हमारी आकाशवाणी का है ना, और ये हमेशा यूं ही कायम रहे। ऐसे शानदार प्रोग्राम कम सुनने को मिलते हैं जो श्रोताओं को शुरू से अंत तक बांधे रहे। इस बेहतरीन मनोरंजन के लिए आपका और FM रेनबो लखनऊ का बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी दो सिस्टर बबीता जी राव और रोशनी रावा जी का नाम ले लीजिएगा, अरे तो हमने तो पहले ही ले लिया, यानी हमने पढ़ा तो ऑटोमेटिक हो गया, भाई वाह क्या बात है, कि ऐसा भी होता है, हम चाहते कि ना लें तो भी लेना पड़ता अगर हम इसको एज इट इज़ पढ़ देते, पढ़ दिया है, और आपने फिर एक खूबसूरत सा एक पोस्टर बना के यहाँ पर भेज दिया है, तो ये पोस्टर अब आज कुछ नहीं कहेंगे, देखिए अब आप समझ लीजिए, इसको कहते हैं डैश डैश डैश डैश डैश, है ना, इसका मतलब आप समझ गए, और कुछ और लोग समझ गए जो समझदार हैं, है ना, कहते हैं कि समझने वाले समझ गए हैं, आगे कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि अनाड़ी तो हम खुद हैं। रोशनी रावा जी, आपका मेल आ चुका है, नमस्ते अनवारू सर जी, आप कैसे हैं, अरे हम तो बहुत बढ़िया हैं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, पॉप टाइम नहीं चल रहा है आज, आज चल रहा है रेनबो कैफे, अच्छा कन्फ्यूज़ हो गए होंगे थोड़ा सा, हम लोग खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हम आपको क्या कहें, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, हम लोगों का मतलब हम भी कभी कभी अपने अंदर बहुत सारे लोगों को रखते हैं, तो बस इसीलिए मैंने हम लोग कह दिया। मेरा नाम रोशनी रावत है, ग्राम व पोस्ट बहमना तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से चंडीगढ़ से प्रोग्राम सुन रही हूँ। डीलू शर्मा दीदी, बबीता राव को राधे राधे बोल दीजिएगा। चलिए भाई राधे राधे, जो जिनका भी आपने नाम लिखा है उन सबको भी, और प्रतिभा शर्मा जी आपका भी मेल पढ़ दें, और ये जो पीछे बजा रहे हैं इनसे कहें जरा जरा तेज़ बजाओ यार, बजाओ ये।
मैं प्रतिभा शर्मा जिला सीतापुर से ईमेल कर रही हूँ। चुलबुल सर जी को ये नया नाम रख दिया हमारा आपने, अभी किसी ने रखा था हसमुख सर जी, अब आपने चुलबुल सर जी। चुलबुल सर जी हाँ, चुलबुलाते तो हम बिल्कुल रहते हैं, कुछ नहीं समझ में आता तो ऐसे ऐसे खुजाते रहते हैं अपने हाथ को, इससे भी चुलबुलापन बढ़ता रहता है। चुलबुल सर जी को मेरा चुलबुला सा नमस्ते। सर जी प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मेरा पूरा परिवार सुन रहा है। वही वाह, क्या बात है। रेनबो की खासियत ही यही है कि पूरा परिवार इसे सुन सकता है और सुनता है। ये आकाशवाणी की मर्यादा है और आकाशवाणी की खासियत भी यही है। और अब बड़ा खूबसूरत सा एक मेल जिसमें कुछ चीज़ें बोल्ड कर दी गई हैं, कुछ चीज़ें सिंपल सी लिखी हुई हैं, कुछ सितारे भी हैं, बिल्कुल

श्रोताओं को मेरा प्यार भरे नमस्कार। जब भी आप इस प्रोग्राम को होस्ट करते हैं तो गाने तो जबरदस्त बजते ही हैं, साथ ही शेरो शायरी का जो तड़का बीच बीच पेश करते हैं लाजवाब लगता है। ऐसे ही स्वस्थ बेहतरीन मनोरंजन करते रहिए और हम सभी श्रोताओं का भरपूर प्यार और स्नेह आपको सदैव मिलता रहेगा। हाँ भाई, इसकी तो बहुत ज़रूरत है, ये स्नेह ये प्यार यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद प्रिय आरजे आपका, कृष्णकांत सिंह जी ने कैसरगंज बहराई से, वहीं जहाँ पर बड़ी अच्छी एक मिठाई मिलती है और ये खुद ही नहीं जानते, हमसे एक दिन पूछ रहे थे कौन सी मिठाई मिलती है तो हम ले आएंगे। हम इनको क्यों बताएं कि जब बस निकलती है वहां से तो एक जगह पर मिलती है मिठाई, भाई जाने ये जान कैसे नहीं पा रहे हैं, कैसरगंज में तो मिलती है। हाँ रामराज जी आपका मेल भी आ गया, इससे ज़्यादा बताएंगे नहीं, मिठाई लेकर मत आइएगा और मिठाई मेरी तरफ से खा लीजिएगा, अगर आपको वो वाली मिठाई मिल जाए हम तो फिर जब निकलेंगे तो फिर ले लेंगे, या कोई आएगा तो ले आएगा। हमारी एक बड़ों बहुत ख़ास रहती हैं वहाँ, तो वो जब आती हैं तो ले आती है मिठाई, और ये बताइएगा ना सबको, बदनामी ना हो जाए कहीं हमारी। हाँ रामराज जी ने क्या लिखा है, श्री गणेशाय नमो, पॉप टाइम रेनबो कैफे, जिला रायबरेली, गांव पहाड़ीपुर से रामराज, राजू, भानु, पप्पू पासी, मनीष, नीरज मिर्जा, इमरान बेग, रिजवान भाई, हमारी तरफ से आपको प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद के आपने हमारा मेल शामिल कर लिया। अरे भाई आपने लिखा ये बड़ी बात है, आप ना लिखते तो हम क्या पढ़ते, है ना। मेरे प्यारे अनवारुल भाई को सादर प्रणाम। अनवारुल भाई मैं आज बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैंने आपको दिल से याद किया और आप आ गया है, क्या बात है, ये तो दिल से दिल मिल जाता है ऐसे ही, और आप आ ही गए, आते ही मेरा मनपसंद गजल जो आपने पहले नंबर पर पेश किया, अच्छा जवाब कोई पसंद है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आप लिखते हैं कि पूरी रजनीगंधा तक आपका साथ निभाऊंगा। छत्तीसगढ़ से आपने ये मेल हमें किया है, जिला बलौदा बाजार, ग्राम तारा शिव से, चलिए मनोज विश्वकर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ रहने वाले हैं, तो हमें डर नहीं लगेगा, जैसे ही डर लगेगा तो हम एकदम से याद करेंगे कि मनोज जी बैठे हैं, मनोज जी से कह देंगे तो बस डर भाग जाएगा। भैया जी नमस्ते, कैसन हैं आप, उम्मीद आए हैं, बहुत नीक लिखना चाहिए, आपने लिख दिया बहुत नाक होएंगे, इतना हमें भी आता है, ऐसा नहीं कि सब अब क्या कहें, वैसे इस समय शादी पार्टी में और नाश्ता कर रहे हैं, दोस्त की बारात में आए हैं, ये मोनू शेर जी इतनी शादियां अटेंड करते हैं मुझे समझ में नहीं आता, बहुत ज़्यादा बुलाए जाते हैं भाई, ये बड़ी अच्छे इन्होंने अपने लोगों से बना के रखी है, हमें तो ज़माना हो गया कहीं शादी वादी में का खाना वाना खाए हुए। चलिए गाना बजा देते हैं, ये वाला, ये बुखार वाला गाना आ गया। 9:32 और 3 सेकंड हो चुके हैं और ये खूबसूरत सा प्रोग्राम रेनबो कैफे है जो 100.7 FM रेनबो पर अनवारुल के साथ सुन रहे हैं आप।

0: माजी के लम्हों में पिरोई कुछ दिलकश दास्तानें।
1: वो भूली दास्तां फिर याद आ गई
0: चांदनी से छिटा।

0: महकते हुए दिलकश तराने।
1: खोया खोया चांद, खुला आसमान।
0: रजनीगंधा हर रात 10 बजे सिर्फ रेनबो पर। धड़कन लखनऊ।

जी नौबजकर 36 मिनट हो चुके हैं। मैं सोच तो रहा था गाना प्ले कर दूं बिना कुछ बोले, लेकिन जब इस तरफ देखा अपने बाएं तरफ तो देखा कि यहाँ पे कंप्यूटर में इतने मेल आ गए कि मुझे लगता है कि ठीक से आपकी जो भागीदारी है वो सुनिश्चित मुझे भी करनी होगी कि आपने हमें मेल किए हैं तो हम उसको ज़रूर पढ़ें। कौन सा मेल पढ़ना है? ये आयुषी मौर्य जी आपका मेल है। गुड इवनिंग सर जी। सर आप ये अच्छा आप आए पॉप टाइम प्रोग्राम में, चार चांद लग गए और आपकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, आपकी आवाज़ मतलब हमारी आवाज़ इनको अच्छी लगती है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपका ये मेल करने का जो सिलसिला है ये हमें बहुत अच्छा लगता है। और ये विलेज मैनीपोस औरा ज़िला उन्नाव से आपने लिखा है, और न्यू अशोक नगर से सुन रही हूँ, यहीं रहकर पढ़ाई करती हूँ। तो चलिए अच्छी बात है कि पढ़ाई के साथ साथ आप सुनती भी रहती हैं, और जहाँ आपको लगे कि पढ़ाई में दिक्कत आ रही तो बिल्कुल मत सुनिएगा, पढ़ाई इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है आपकी। लेकिन बस जब वक्त मिले तो आप थोड़ा सा वक्त रेनबो को भी दीजिए, तो फिर इससे भी थोड़ा सा आपका मन हल्का रहेगा और थोड़ा सा आपका मनोरंजन हो जाएगा। अनुज जी का ये मेल आया है हमारे पास श्रीनगर लखीमपुर खीरी से। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और एफ एम रेनबो पे हमारे 2 RJ नहीं आ रहे हैं। अब 2 RJ के नाम आपने यहाँ पर लिख के भेज दिए भाई, कहीं व्यस्त होंगे, हमें अगर मिल गए तो हम ज़रूर बता देंगे। इसमें से एक तो एक दिन हमको एक प्रोग्राम में मिले थे जो पहले वाले हैं जो आपने नाम लिखा है, बाकी ये थोड़ा सा व्यक्तिगत हो जाती हैं चीज़ें, तो फिर हम लोगों ने चलिए पढ़ लिया है। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि अगर इस तरह की कोई भी बात आप जो प्रोग्राम से संबंधित करना चाहते हैं तो बुधवार को आप 11 बजे सुनते ही हैं एक ख़ास प्रोग्राम जो हमारे यहाँ से आता है, संदेश आपके गीत हमारे, और उसमें आप अपनी बात कह सकते हैं। अरविंद कुमार दुबे जी का ये मेल है, रेनबो कैफे मैसेज फ्रॉम अरविंद कुमार दुबे, ग्राम धर्मदेवा पोस्ट छठहा ज़िला मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से आपने लिखा है। लिखते हैं कि आपका फनी अंदाज कार्यक्रम प्रस्तुत करने का नया तरीका है, आप किस तरीके को अन्य एंकर अपना सकते हैं?

अब किसी पर कोई थोपिए मत, सबका अपना अपना अंदाज है और मेरा ये तरीका नया नहीं है, वैसे बड़ा पुराना है। भोजपुरी तड़का वाले गाने सुनने में अच्छे लगते हैं। वैसे तो ये फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है, फिर भी आया है, क्या बात है, आपने अपने आप ही वो बात कह दी जो मैं कह देता हूँ यहाँ से, लेकिन फिर भी आपने गाना लिख दिया है कि ये वाला चाहे तो सुना दें, प्ले कर दीजिए, तो देखें अगर उंगलियाँ हमारी भी मचल गई जैसे किसी ने अभी लिखा था कुछ खास मुझे, तो ऐसी अगर मचली तो हम क्या पता कौन सा बटन दब जाए, गाना बज जाए आपका। अरविंद गोविंद, प्रतिमा प्रतिष्ठा, तन्वीर, दीपा, श्याम कुमारी, आपने भी लिखा है कि ये सारे लोग भी मिर्ज़ापुर में प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। विवेक गौतम जी, आपने लिखा कि बस करिए सर सॉन्ग प्ले कर दीजिए, अच्छा चलिए हम कर देते हैं, लेकिन कौन सा सॉन्ग सुनेंगे आप, ये आपने लिखा नहीं और लिखते भी तो फिर हम यही कहते कि भाई फरमाइशी प्रोग्राम नहीं है ये, और बस हम क्यों करें, बस हम करें तो फिर आपका भी मेल क्यों पढ़ें, ये तो आपने बाकी जो श्रोता हैं जो लिसनर हैं हमारे जिन्होंने मेल किया है, अगर मैं बंद कर दूंगा तो उन्हें पढ़ नहीं पाऊंगा, तो सबकी मेहनत बेकार जाएगी, तो आपका तो मैंने मेल पढ़ दिया और बाकी लोगों का ना पढ़ें तो यह अन्याय होगा ना, थोड़ा सा ख्याल रखिए दूसरे लोगों का भी। और इसलिए गुड इवनिंग डियर सर जी, प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है, काश खुदा ने हमें SMS बनाया होता, मोबाइल के जरिए तुम्हारे पास आया होता, भले ही तुम पढ़कर डिलीट कर देते मगर कुछ पल तुम्हारे साथ तो बिताया होता, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ग्राम चक उमरी झरेखापुर जिला सीतापुर, बहुत अच्छा ये मैसेज है। अब और जब हमारी शादी वादी कब बात चल रही थी तो उस वक्त जो है SMS ही चला करते थे, तब ये मैसेज मिला नहीं तो हम भी समझ जाइए आप। आलोक कुमार खरे जी, आपका भी मेल पढ़ देता हूं। अनवारू सर नमस्ते, मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से आपने लिखा है, प्रोग्राम सुन रहे हैं, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, चलिए ऐसे ही सुनते रहिए, अब हम गाना बजा दे रहे हैं गुरु रंधावा वाला, ये लीजिए।

जी अचानक से सन्नाटा हो गया, क्योंकि वो जो गाना वाना बजा रहे थे एकदम से कुछ चाय पानी करने चले गए। भाई बजाओ भाई कुछ ना कुछ, ये जो पीछे बजता है ये बहुत जरूरी है। जी आलोक कुमार खरे जी, आपने लिखा है मंसूर नगर शाहबाद पिहानी हरदोई से हमें प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, चलिए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया भी। और एक और मेल लिखा है, अच्छा भाई जाके ढूंढ लीजिए सोशल मीडिया पे, आप नाम ढूंढिए तो आपको हमारे बहुत सारे आरजे मिल जाएंगे। आप कह रहे हैं कि बहुत सारे आरजे को आप देखना चाहते हैं, दीदार करना चाहते हैं, तो जाके वहाँ पे बस नाम लिखना पड़ेगा। नाम तो आपको पता ही है, मेरा नाम तो आपको जानते ही है ना। नाजिम उस्मानी साहब ने लिखा है हमें महमूदाबाद सीतापुर से, और लिख रहे हैं अनवारुल भाई अस्सलाम वालेकुम, गर्दा उड़ रहा है, ये गर्दा वर्दा देखिए फिर उड़ने लगा, ये हमारी आँख में चला गया तो बस रजनीगंधा रह जाएगी, हम आँख मलते रहेंगे बैठे। चलिए नाजिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। बाबू अंसारी साहब आपका मेल भी हमें अभी अभी प्रकट हुआ है यहाँ पर, अस्सलाम वालेकुम अनवारुल सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है और मेरा नाम शामिल कर लीजिए और साथ में फैज़ अंसारी, बाबू अंसारी और गौस मोहम्मद अंसारी, आपने ये तीन नाम लिखे भेजे हैं। क्या बढ़िया सा आपने एक पॉप गाता हुआ एक बढ़िया सा वो अपने आईडी में खूबसूरत सा एक लगा रखा है फोटो। ब्रजेश सिंह दीपू इटहुआ कैसरगंज बहराइच से, नमस्ते मेरे हंसमुख अनवर सर जी, 5 तारीख के बाद से आज जुड़ पाया हूँ अपने FM रेनबो से, कुछ दिक्कत चल रही थी लाइफ में। चलिए भाई हम रेनबो की तरफ से सारे लोग दुआ करेंगे कि कैसे भी दिक्कत कोई भी हो, चाहे वो आपको हो या किसी को भी, किसी को ना हो, ये सारी समस्याएं हल हों सबकी और खुशी खुशी सारे लोग अपनी ज़िंदगी बिताएं। हमारे साथ आपको शिवम भाई भी सुन रहे हैं, मोनू भैया ने एक फ़ोटो भेज दी है शिवम भैया की, और देखिए

फोटो थोड़ी सी तिरछी है, लग रहा है कि सर के बल लेटे टे हुए हैं, तो ऐसे को इसको ठीक कर लीजिएगा, हाँ वरना सर में दर्द हो जाएगा उनके। सर राम राम, मैं पवन पाल फ्रॉम बाजार शुक्ल अमेठी से। चलिए आपको भी राम राम, और आप हमें सुन रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने और कुछ नहीं लिखा है। विवेक कश्यप जी, आपका मेल भी आया है। गुड इवनिंग सर, प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। और विवेक कश्यप फ्रॉम सिसैया दरियाना पोस्ट कठौरा जिला सीतापुर से। चलिए बस इतना ही लिखा आपने। और जय ने हमें मेल किया है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल। प्रोग्राम जो है, आप कह रहे हैं कि सभी सॉन्ग बहुत अच्छे लग रहे हैं, बस इसीलिए आपने हमें ये मेल कर दिया। चलिए अच्छी बात है, छोटे छोटे से मेल भी अच्छे लगते हैं। और एक और मेल आ चुका है, नीलू शर्मा जी का मेल है। नवारू सर, हम क्या कहें जी, जी आपने किसी को याद किया है मेरे साथ, तो कि उनके साथ भी आने की कृपा करें जीएमएल में। तो भाई अब जैसा कहा जाएगा हम आ जाएंगे, हमने तो पहले भी कहा था, हम बिल्कुल तैयारी के साथ थे, अपनी चादर लेके आते हैं, यहीं बिछा लेंगे, यहीं लेट जाएंगे, और सुबह बस उठेंगे, यहाँ की कुंडी कर देंगे बंद, किसी को अंदर आने नहीं देंगे, बस जीएमएल शुरू कर देंगे। चलिए आप अपने प्रयास कीजिए, और हम लोग को जो आदेश मिलता है हम बिल्कुल उसका मन से पालन करते हैं। एम के राज जी, आपका मेल कर देते हैं। मुनेश कुमार राज, गांव भानपुर हसरवा जिला लखीमपुर खीरी से। सर सर जी को नमस्कार, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है, हर घंटे हम लाइव सुनते हैं। कार्यक्रम में सॉन्ग आपको कुछ अच्छे लग रहे हैं, कुछ आपको नहीं अच्छे लग रहे हैं, बल्कि ना आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम में सॉन्ग बहुत बढ़िया नहीं है, बल्कि बहुत बढ़िया से महा बढ़िया है, पांव धड़कने पर मजबूर कर रहे हैं, क्या करूं रुक ही नहीं रहे। चलिए अच्छी बात है, पाँव जो आपके थरथराते रहेंगे ना तो मच्छर नहीं काटेंगे आपको, आप रात भर ऐसे ही सोइए पाँव थोड़ा सा थरथराते हुए, तो बचे रहेंगे आप। और हम भी कोशिश करेंगे घर जाके, कल मच्छर बहुत लग रहे थे, हवा चल रही थी, मच्छर घुसाए थे कमरे के अंदर, अब हम क्या बताएं। पॉप एमन नवाब संदीला से लिख रही, हेलो अनवारुल सर कैसे हैं, आज आपसे पूछूं या ना पूछूं, चलो नहीं पूछूंगी, आप शर्मा जाएंगे, कहीं मेज के नीचे चले गए थे, प्रोग्राम कौन करेगा। हाँ अच्छा पकड़ लिया आपने, ये बिल्कुल सही बात है, हम चले जाते हैं भैया नीचे। लकीरों को कभी मामूली न समझें, ये माथे पर चिंता, हथेली पर तकदीर, जमीन पर बंटवारा, और रिश्तों में दरार बन जाती है। इतनी खूबसूरत सी बात, मतलब हंसी मजाक के बाद आपने बहुत चिंताजनक बात कह दी, और बहुत जाहिर है, बहुत ध्यान रखने वाली बात भी है कि ये लकीरें वाकई कहीं ना पड़े। उनकी तमन्ना में शामिल नहीं हम, सच तो ये है उनके काबिल नहीं हम, एहसान होगा भूल कर भी याद करें वो, जिनको एक पल के लिए भी भूले नहीं हम। आप हमारा एड्रेस बताओ प्लीज, आप हमारा एड्रेस बताओ प्लीज। रमाकांत सिंह जी ने ये मेल किया है हमको। अब देखिए एड्रेस हम इस समय भूल गए, हमने किसी और का बता दिया, तो जो लोग सुन रहे हैं पता नहीं किसके घर चले जाएं, है ना। आपने हो सकता खाना वाना तैयार करके रखा हो कि हमारे यहाँ ना यहाँ खाना, वो कहीं और चले जाए। तो चलिए कुछ नहीं, हम एक गाना बजा देंगे ऐसे। अब गाने को कहो तो ये अपना जो पिन पिन पिन बजाए रहते हैं, गाना ही नहीं बजाते, बजा दो भाई।

हाँ भैया, ये बिगड़ने करने वाली बात में हम साथ नहीं है। हाँ, ये इसमें हम कोई साथ नहीं देंगे। 9:55 हो चुके हैं, आपके जो मेल बचे हैं वो पढ़ देंगे हम, है ना। अतुल कुमार यादव जी ने लिखा है कि हेलो सर, मैं हमेशा की तरह फिर से लेट हो गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, मैंने खीरे की दावत के लिए बोला था तो सर ने मेरा पता पूछा था। मेरा पता है? अच्छा, अभी आप पूछ रहे थे हमारा पता, बताइए क्या। मेरा पता, अच्छा ये दूसरा है, दूसरा मेल है। मेरा पता है ग्राम खुरेहटा, पोस्ट धरेचा बाजार, खैराबाद, सीतापुर। जो टोल प्लाजा था मुझे मालूम है, यहाँ से जाने में वो सेकंड वाला जो टोल प्लाजा पड़ता है उसके बाद थोड़ा सा रास्ता बस आगे चलेंगे, राइट साइड जो कटा हुआ वो खैराबाद की तरफ चला जाता है। रास्ते बहुत पता है हमको, ये मत समझिए। हम रात में जब सो जाते हैं ना तो सपनों में जाने कहाँ कहाँ हो आते हैं, इसलिए पता है। रजनीश पासवान जी ने लिखा है कि रेनबो सुनने वाले सभी लिसनर्स को नमस्ते। श्री अनवारुल हसन सर जी आपको, अरे भाई चरण स्पर्श नहीं, खुश रहिए। आपकी मखमली आवाज़ जो जादू रजनीगंधा में सुनने को मजबूर कर देता, चलिए भैया ऐसे हमारे साथ रहिएगा। एक विनती आपसे कि आपने किसी और के बारे में कुछ भाई लिख दिया है तो भाई चलिए ये बात मैंने पढ़ लिया है, उनके लिए हम उनको भी बिल्कुल जो है बता। अच्छा, जमशेद जी की आपने तारीफ़ की है, उनको बताइए, मैं बिल्कुल मैं पहुंचा दूंगा। आप द्वारा 8 मई को प्रोग्राम लल्लन टॉप अच्छा प्रेजेंट किया गया था और रजनीगंधा में आपके साथ रहूँगा दर्द से लेकर खुशी तक। भाई क्या बात है, बुद्ध के शहर सिद्धार्थ नगर से आपने हमको ये मेल किया है। और जल्दी से शमशुल कमर साहब आपका भी मेल पढ़ देते हैं। आपने गंज डुंडवारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, अंजू खान और बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मेल का सिलसिला यहीं पर रोक दीजिए क्योंकि अब हम बस एक गाना बजा रहे हैं, उसके बाद समाचारों के बाद फिर रजनीकंधा की खुशबू महकाने आ रहे हैं। तो इजाज़त दीजिए अनवारुल हसन को, अभी रहेंगे काफ़ी देर आपके साथ। नमस्कार।

नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश को देश की स्किल कैपिटल बनाने की दिशा में सरकार कौशल विकास को आधुनिक तकनीक, उद्योगों की जरूरतों और डिजिटल नवाचार से जोड़ते हुए लगातार नए कदम उठा रही है। इसी क्रम में गोरखपुर में आज संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश कौशल विकास की ओर से आयोजित कार्यक्रम में सरकार, उद्योग जगत, निजी ITI संचालकों और प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को रोजगारोन्मुखी एवं भविष्य आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने को लेकर व्यापक मंथन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव की अग्रवाल ने की। इस दौरान विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. हरि ओम, मिशन निदेशक पुलकित खरे एवं संयुक्त निदेशक मयंक गंगवार सहित गोरखपुर, बस्ती एवं अयोध्या मंडल के निजी ITI संचालक, प्रशिक्षण प्रदाता मौजूद रहे। संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 6 जनपदों में वृहद परियोजनाएं प्रस्तावित की गई हैं। इसके अंतर्गत सार्वजनिक रामलीला मैदानों, स्थलों का विकास और विस्तार, जीर्णोद्वार एवं सौंदर्यीकरण कार्य आदि कराया जाएगा। ये जानकारी आज यहां प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज कृषि भवन में आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत रबी फसलों की खरीद, उर्वरक उपलब्धता, खरीफ बीज वितरण और सिंचाई योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में मंत्री जी ने रबी सीजन में क्रय एजेंसियों द्वारा खरीद की धीमी और लचर प्रगति पर खरीद एजेंसियों को कड़ी फटकार लगाई और खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। मूल्य समर्थन योजना 2026-27 की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि वर्तमान में 280 क्रय केंद्र संचालित हैं, जिनमें से अब तक 2,759 किसान लाभान्वित हुए हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत उत्तर प्रदेश द्वारा प्रीमेथियस स्कूल नोएडा में 11 मई से 20 मई तक राष्ट्रीय कोचिंग कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस 10 दिवसीय राष्ट्रीय कैंप का उद्घाटन मुख्य अतिथि गौतम बुद्ध नगर की पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह की उपस्थिति में हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्पेशल ओलंपिक्स भारत की अध्यक्ष डॉ. मल्लिका नड्डा ने किया। राष्ट्रीय कोचिंग कैंप में 15 से अधिक राज्यों से आए 70 से अधिक खिलाड़ी, प्रशिक्षक, कोच एवं अधिकारी भाग ले रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बनके पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर।

मंजर तो दिल फरेब है आजाद होके देख, दुनिया को देखना हो तो बर्बाद होके देख। कुछ खास अंदाज रेनबो का आप तक पहुंचने वाला है। पलकों की मुंडेरों पर चुपचाप कुछ परिंदे उतर आए हैं। कहते हैं कि पलकों की मुंडेरों पे उतर आते हैं चुपचाप गम ऐसे परिंदे हैं जो पाले नहीं जाते। जब था तो बहुत पुख्ता था एक शख्स से रिश्ता, टूटा है तो अब टुकड़े संभाले नहीं जाते। लेकिन इन टूटे हुए टुकड़ों की जो किरचे हैं, इन्हें भी हम सहजने का बटोरने का काम करेंगे 11 बजे के आसपास अगर आप रहेंगे हमारे साथ। फिलहाल तो मोहब्बत की वो जवां होती कहानियां जो हर खूबसूरत रात के साथ उतर आती हैं धरती पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज भी ये खूबसूरत सी रात उतरी है और मोहब्बत में प्यारा सा वक्त गुजारने रजनीगंधा के जरिए मैं आपका दोस्त अनवारुल हसन आपके पास आ गया हूं। स्वागत है सफर में। नमस्कार।

वक्त हो रहा है रात के 10:20 और 8 सेकेंड। जहन में उगे हुए हैं बहुत से ख्वाब और आंखों में टिमटिमाते हुए जुगनुओं की तरह जगमगाहट बिखेर रहे हैं, जिससे रोशन हो रही है एक और रात। रजनीगंधा में आज एक बार फिर अनवारुल हसन का साथ।

0: करें।
1: जज्बात तो यही कहते हैं कि बस साथ साथ दूर तक चलते रहें आपके साथ। रजनीकांता में जिंदगी की लंबी है राहें, कभी काले बादल हैं, कभी घटाएं हैं, कभी कुछ पहाड़ों की तरह आ जाती हैं ऐसी मुश्किलें जो लगता है बेताब होकर हमारी राह रोक रहे हैं। लेकिन दूर तक घटाओं के उस पार कुछ ऐसा भी है जहां आजादी है, खुशहाली है, खूबसूरती है। शायद कभी कभी हम ऐसा ही मानते हैं जब हमें वो नहीं मिलता जो हम पाना चाहते हैं। तो भी मैं कहता हूं कि इन ऊंची चोटियों की उस तरफ जहां सूरज की पहली किरणें चमक रही हैं, क्यों ना हम वहां आपके साथ चले। वो काली रातें, वो तूफानी हवाएं, इन सब को पीछे छोड़कर कदम मिलाकर, कदमों से कदम मिलाते हुए, आगे बढ़ते हुए, हाथ थाम कर, दिल से दिल को जोड़कर उस पार चले। उस पार पहुंचकर जब बादल छट जाएंगे तो क्या मिलेगा? खुशियां, अनगिनत ख्वाब, वो मुस्कान जो भूल गए थे हम, वो उमंगे जो सो गई थी कहीं। तो इसलिए रुकना नहीं है, थमना नहीं है, बढ़ते रहना है आगे आगे, बहुत आगे, अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। चलिए हमारे साथ, चलेंगे क्या?

खो सकया था मैं। जैसे बहारों का पहला फूल खिल उठा हो दिल ही दिल में, और ऐसे ही ये पहली मुलाकात यादगार बन जाती है। दिल ने पुकारा ये इश्क की शुरुआत है, अब हर लम्हा उसकी तस्वीर जो बस गई थी पहली बार आंखों में वही नजर आती है, क्योंकि ये मुलाकात पहली मुलाकात थी जो भूले नहीं भूलती। याद कीजिए ना आप, कैसे हुई थी उनसे मुलाकात पहली बार।

और चलते चलते जब आप इस सफर में जा रहे थे और अचानक से वो आपके सामने आ गई थी तो कैसा लगा था जब पहली मुलाकात हुई थी उनसे? आसमानों में चांदनी सी चमकती वो आंखें, दिल की धड़कनें जो रुक सी गई थी और पहले से ऐसा लगा था जैसे जब वो मिलेंगे तो शायद जिंदगी बदल जाएगी, ऐसा दिल कह रहा था। पर हकीकत में जब वो नजर मिलती है, सांसें थम सी जाती हैं, वक्त रुक सा जाता है और उनकी मुस्कान में

0: हुई, गुनगुनाती हुई,
1: हौले से जिंदगी को छूती हुई, जगाती हुई। जिंदगी के नए दिन के नए सफर पर निकलिए पुराने खूबसूरत गीतों का दामन थाम कर। सदाबहार गीत
0: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर हर सुबह 7 बजे।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10:90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

ए मेरे शब्द मेरे भेद महाधन मेरे। रात में खुशबू तेरी, नींद में बोसा तेरा, ठंड में आग तेरी तापूं, खिलूं, जी उठूं, अपने आंसू तेरे हाथों के कटोरे में रखूं, देर तक तुझसे लिपट कर यूं ही रोती जाऊं। ए मेरे शब्द तेरे माने की रात रंग गिरह कभी सुलझाऊं, कभी उंगली में उलझा बैठूं, गुम रहूं तुझ में कहीं खो जाऊं। ए मेरे शब्द मेरे इश्क मेरे अफसाने, शाम गुल रंग करे ख्वाब को दो चंद करे, तेरी बारिश में निखरता हुआ सब्जा मेरा, मांग आशाओं की भरती हुई इस दुनिया में और कोई भी नहीं, कोई नहीं, तू मेरा, बस तू मेरा।

0: आज़रीन महफिल मेरा साथ दीजिए। अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
1: खैरियत दो साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक जाम हो जाए।
0: जी मैं शराब नहीं छूता।
1: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
2: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
3: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
4: जिंदगी बहुत अजीब है, बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। खुशियों के नाम पर भी कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है जो शायद नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाद हमें ये जो पीने पिलाने वाला दौर है कभी भी आकाशवाणी इसका समर्थन नहीं करता, और हम हमेशा आपके सामने वही बात रखते हैं कि गम है तो थोड़े से अपने आंसू पी लीजिए, लेकिन इस तरह की चीज़ों से जो भी डायलॉग के रूप में आप तक पहुंचे, हम दूर रहें तो बेहतर है। जहन में बहुत सारे ख्वाब उगाते हैं कभी कभी, कभी कभी कुछ रास्ते अपने आप ही उन मंजिलों से दूर हो जाते हैं जिस रास्ते पे हम शायद चले थे किसी के साथ, और हमारे हाथ में थे किसी के हाथ। और इसीलिए कहते हैं कि हम अपने दुख को गाने लग गए हैं, मगर इसमें जमाने लग गए हैं, जिन्हें हम मंजिलों तक लेके आए वही रास्ता बताने लग गए हैं। होता है कभी कभी ऐसा।

जो भरोसा एक कायम होता है कुछ रिश्तों में, और हर रिश्ता एक भरोसे की बुनियाद पर ही चलता है, आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी दुनिया ऐसे ही चलती है, कभी कभी टूट जाते हैं कुछ अल्फाज, कुछ रिश्ते, कुछ दिल भी, और फिर क्या होता है। जी हाँ, समाचारों के बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। रात के 10:56 हो चुके हैं। अगर आपको नींद आ रही हो तो आप सो जाइए। रजनीगंधा का यह सफर जारी रहेगा आपके दोस्त अनवारुल हसन के साथ। हम लौटेंगे समाचारों के बाद।

नमस्कार, रात के 11 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़